मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57:13 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर

0: तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05:30 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखना। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ करना नहीं है, हर विचार, शब्द और कर्म में ईश्वर को महसूस करना ही भक्ति है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए पंडित राजन साजन मिश्र के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छे होते हैं वही इंसान ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाता है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कविता पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

ईश्वर की राह थोड़ी टेढ़ी जरूर है, पर मंजिल हमेशा सही होती है। तो श्रोताओं अब

0: देखते हैं आराधना कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल के लिए आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान भक्ति या दिखावा नहीं, बल्कि मनुष्य की साफ नीयत और अच्छे कर्म देखते हैं। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी साथ देगी, नीयत अच्छी होगी तो घर में ही आपको तीर्थ मिलेगा। श्रोताओं लीजिए सुनिए सोनू निगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, अभी आप सुखविंदर सिंह और सोनू निगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे गोविंद का नाम ही काफी है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ अब आराधना कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप पंडित गोविंद बल्लभ पंत के विचार सुनेंगे।
1: पंत जी को हिंदी से प्रेम था और उनका हिंदी से हार्दिक लगाव था। 2 सितंबर 1959 को पंत जी ने राजभाषा संबंधी संसदीय प्रतिवेदन के बारे में बोलते हुए कहा, हम ये बताना नहीं भूल सकते हैं कि जहाँ तक सामान्य भाषा का संबंध है, जिसे जनतंत्रीय स्तर दिया गया है, वहाँ केवल अपनी ही भाषा उसकी पूर्ति कर सकती है। अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। अंग्रेजी सीखने में मैंने कई वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितनी भूलें करता हूँ। मातृभाषा की बात ही दूसरी है, तथा एक विदेशी भाषा जो इस प्रकार सीखी जाए बहुत कठिन होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिक के लिए जो इसी प्रकार के अन्य विषयों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, प्रशासकीय तथा न्यायपालिका के प्रयोग की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे अधिक से अधिक संख्या में लोग सीख सकें और अंगीकार कर सकें। तथापि प्रादेशिक भाषाओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हिंदी पर। हमारे यहाँ विविधता है, यही हमारी एकता की जीवन शक्ति है। विविधता जारी रहेगी, हमें प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ाना है। विभिन्न प्रदेशों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अधिक से अधिक काम करना चाहिए। पंत जी ने भाषा से प्रेम होते हुए भी उसकी समस्या को सदैव एक प्रशासक के रूप में देखा। यद्यपि उनका यह निश्चित मत था कि भारत की सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी ही हो सकती है, तथापि अपने स्वभावानुसार उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे अहिंदी भाषा भाषियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता। पंत जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। इसका पता अस्पृश्यता निवारण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए 27 अप्रैल 1955 को उनके द्वारा दिए गए भाषण से लगता है। पंत जी ने इस अवसर पर कहा था, अस्पृश्यता का ये रोग हमारे समाज की रगों के अंदर तक समा गया है। ये केवल

0: हमारे धर्म पर ही कलंक नहीं है, अपितु इससे असहनशीलता, जातिवाद और विखंडनात्मक प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे समाज की अधिकांश बुराइयों का मूल इस निंदनीय कुरीति में है।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप पंडित गोविंद बल्लभ पंत के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रकृति ने कितना कुछ हमें उपहार स्वरूप दिया है, आइए हम भी प्रकृति का संरक्षण करें और एक पौधा अपने घर में जरूर लगाएं।

सफलता का मूल मंत्र है कि किसी भी कार्य को कल पर ना डालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी करना है आज और अभी करें।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे आलू और सरसों की सहफसली खेती विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत।
1: डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, आप विशेषज्ञ हैं। भैया, हम आपसे जानना चाहते थे कि जैसे जो हिसाब से जनसंख्या के वृद्धि भाई और खेत उतने है, बल्कि खेत कम है, भवा ज़्यादातर लोग मकान बना लिए जगह जगह पे, तो अगर हम कहते अलग अलग फसल खेती न करके अगर एक साथे खेती करे चाहें, तो जैसे भी आलू का समय बुआई का समय आवत बा, सरसों को बुआई का समय आवत बा, अगर आलू और सरसों का सह फसली खेती किसान भैया करे चाहते हैं तो कैसे कर सकते?
2: आलू और सरसों की सह फसली खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्योंकि खेत की जोत जो कम होती चली जा रही है, इस चीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए, और वैसे भी सरकार का कहना है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, और किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती है अगर सह फसली को अपनाएं हमारे किसान भाई। तो आलू के साथ सरसों की सह फसली खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, हम कहते डॉक्टर साहब, आलू और सरसों को अगर एक साथ बुआई करे के बाद सह फसली खेती करे के बाद, तो उनके लिए भूमि की तैयारी कैसे करें?
2: आलू व सरसों की अगर खेती तैयारी करनी है तो पहले हमें बस ये देखना है जो हमारी मुख्य फसल कौन सी है।
1: जी जी,
2: जैसे अगर सरसों को मुख्य फसल कर रहे हैं कि आलू को मुख्य फसल कर रहे हैं, अगर आलू को मुख्य फसल कर रहे हैं तो आलू के खेत के लिए तैयारी के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पीएच मान 6-7 होना चाहिए।
1: जी जी।
2: साथ में उसकी मिट्टी के लिए 2-3 बार गहरी जुताइयाँ करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, इस तरीके से करेंगे और सरसों की खेती भी फिर उसमें आसानी से हो जाएगी। तो इन खेत की तैयारी के लिए हमारे किसान भाइयों को यही देखना है कि खेत को समतलीकरण कर लेना चाहिए, ढालू नहीं होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, तो सरसों व आलू की सह फसली खेती आराम से की जा सकती है।
1: एक बात है डॉक्टर साहब कि जब अगर सह फसली खेती करेगा सरसों व आलू का, तो क्या माटी की जांच कराओ जरूरी है?
2: देखिए, किसान भाइयों को माटी की जांच कराने तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी लागत बढ़ती चली जा रही है, उर्वरकों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, तो इसलिए मिट्टी की अगर जांच हमारे किसान भाई करा लेते तो उनको ये पता पड़ जाएगा, हमारे किसान भाइयों को, कि कितनी मात्रा में हमको गोबर की खाद देना है, कितनी मात्रा में हमको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देनी है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक ना देना पड़े, और संतुलित मात्रा में अगर हमारे किसान भाई देंगे तो उनका जो इनपुट है वो कम लगे।

0: मिलेगा और आउटपुट उनको अच्छा मिलेगा।
1: जी, हम कहते डॉक्टर साहब, अगर सह फसली खेती करे के तो मन कौन प्रजाति के आलू और कौन प्रजाति के सरसों हो जोने से उनका अच्छा उत्पादन मिल सके?
0: आलू की अगर हम लोग बात करें, हमारे किसान भाई अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो आलू की खेती के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए जो अच्छी प्रजातियां हैं, कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी अलंकार है, कुफरी चमत्कार है, ये प्रजातियां जो है हमारे किसान भाई लें। और सरसों की प्रजातियों के लिए हमारे किसान भाई को मुख्यतः जो लें, अगर जैसे वरुणा है, क्रांति है, आपकी रोहिणी है, वरदान है, ये प्रजातियों को अगर हमारे किसान भाई लेंगे तो हमारे किसान भाई आलू के साथ सरसों की सह फसली खेती आसानी से करते चले जाएंगे।
1: अच्छा, हम कहते हैं एक बात है कि जो फसल बोवे के लिए बीज की मात्रा का हो के चाहिए, जैसे मान लें 4 बीघा में अगर बोवे के किसान भैया रहे हैं, कितनी आलू की मात्रा हो चाहिए और कितना बीज की मात्रा सरसों वाली हो चाहिए?
0: आलू के लिए देखिए, हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि आलू जो हमारे किसान भाई ले रहे हैं वो आलू के भार के ऊपर उनका क्या कहते हैं बीज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे किसान भाई 25 से 30 ग्राम भार वाला अगर आलू का ले रहे हैं और उसमें 2-3 आंखें हैं, तो हमारे किसान भाइयों को 20 से 30 क्विंटल जो है वो क्या कहते हैं आपको बीज की आवश्यकता पड़ जाएगी। सरसों की क्योंकि हम लोग सह फसली खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि वो जैसे कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी को बोनस के रूप मिलता है, वैसे हमारे किसान भाइयों को आलू के साथ सरसों जो है बोनस के रूप में तैयार हो जाएगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को जो उसके 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो लगता है सरसों का, उस बीज को कहीं हद तक हम लोग कम कर ले जाएंगे, आधे से भी कम बीज की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को सरसों की आवश्यकता पड़ेगी।
1: अच्छा, एक बात आओ भैया कि ये जो आलू और सरसों को बीज के बारे में विशेष जानकारी का हो चाहिए?
0: आलू व सरसों के बीजों के लिए देखिए, हमारे किसान भाइयों को आजकल ये है कि जब कोई रोग व्याधि लग जाता है हमारी फसलों में तो हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होगा।
1: जी,
0: क्योंकि एक बार रोग लगने से किसानों की जो भी फसल है उसकी पैदावार घट जाती है। अगर शुरुआती दौर में अगर हमारे किसान भाई अपने आलू के बीजों का बीज शोधन कर लें, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा पाउडर को ले लें, उसको 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर उसमें हमारे किसान भाई आलू के बीजों को 25 से 30 मिनट तक अगर डुबो के रखते हैं और उसके बाद निकाल के छाया में, और फिर उसके ऊपर हमारे किसान भाई अगर चाहें तो जैसे कि 2.5 ग्राम कार्बनडाइजिम दवा है उसको प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला के, और फिर अगर हमारे किसान भाई बुवाई कर देते हैं तो आलू की पैदावार अच्छी होगी। साथ ही वजह से अगर हमारे किसान भाई जो सरसों की सह फसली खेती की जो बात चल रही है अगर उसकी बात कर रहे हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सरसों के बीज का बीज शोधन करके हमारे किसान भाई उसकी बुवाई करते हैं। सरसों के बीज का बीज शोधन के लिए सरसों का 1 किलो बीज ले लें हमारे किसान भाई, उसके ऊपर 2.5 ग्राम कार्बन डाइजिंग दवा को छोड़ दे, हल्का सा पानी हाथ में लेके भिगो को उसके ऊपर छिटका मार के हाथ से अगर मिला देते हैं सरसों के बीज में, और उसके बाद अगर सरसों के बीज की बुवाई करते हैं तो उनकी पैदावार अच्छी होगी।
1: हम कहते हैं एक बात हो भैया कि सबसे जरूरी बात ये होती कि अगर कोनो काम समय से किया जाए तो ओकर लाभ ज़्यादा हो, तो बुवाई का समय का हो कि चाहिए सरसों आलू को जो सब फसली खेती बा?
0: अब देखिए, आलू और सरसों की बुवाई की जहाँ बात आ गई, क्योंकि वो सह फसली खेती में अगर हमारे किसान भाइयों को सरसों ले रहे हैं जैसे हम लोग शुरू में ही बात करते चले जा रहे हैं, तो आलू की जो है हमारे किसान भाइयों को सितंबर माह से लेके और अक्टूबर माह तक हमारे किसान भाई उसकी बुवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अक्टूबर से 25 अक्टूबर से लेके 10 नवम्बर तक भी हमारे किसान इसकी बुवाई कर सकते हैं सरसों की व आलू की। लेकिन विशेष बात ये है कि सह फसली की बात हम लोग कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को विशेष किन किन बातों को ध्यान में रखना है। किसान भाइयों को ये करना है कि जो हमारे किसान भाई मेड़ बना रहे हैं आलुओं की मेड़ बनाने के बाद 3 मेड़ जो है हमारे किसान भाई आलू की बनाएं, चौथी मेड़ जो है हमारे किसान भाई सरसों की डालें, फिर 3 मेड़ जो है हमारे किसान भाई जो है आपकी आलू की बनाएं, और फिर चौथी लाइन जो है सरसों की लाइन। इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई सह फसली में सरसों की खेती आलू के साथ करते ले जा रहे हैं तो कई फायदे हैं। एक तो क्योंकि हमारे किसान जब ये कर रहे हैं तो उनको खेत में एक तो बीज उन्होंने कम कर लिया, इधर उनको सरसों अलग से मिल जा रहा है, बीच में सरसों का साग लेके हमारे किसान भाई अपनी सब्जी की भी बचत कर ले जा रहे हैं, और साथ में हमारे किसान भाइयों को क्योंकि जो भी कीट रोग और जो पाला आला पड़ता है तो उसमें क्योंकि सरसों का पौधा जो है फैल जाता है और सरसों पहला फैल जाता है तो आलू का पौधा नीचे रह जाता है, तो हमारे किसान भाइयों का पौधा जो है पाले से बच जाता है।
1: अच्छा, हम कहते एक बात हो भैया कि बुवाई के समय कौन कौन बातन की सावधानी बरतें?
0: बुवाई के समय जो सावधानी रखनी हमारे किसान भाइयों

0: को का बीज का विशोधन अवश्य करें, और साथ में क्या हमारे किसान भाइयों को देखना है कि आपका जो आलू लगाया जा रहा है सही मेड़ों पर लगाए, कूड़ में लगा रहे हैं कि जो मेड़ पर लगा रहे हैं तो मिट्टी में सही से आलू दबाए या नहीं दबाए, ये इन चीज़ों को ध्यान में अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो आलू की पैदावार अच्छी होगी।
1: हम कहते हैं भैया ये सिंचाई के समय का हो के चाहिए।
0: सिंचाई देखिए आलू की और सरसों की फसल की सिंचाई का जो समय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैसे ही रबी सीजन की ये मुख्य फसलें हैं, और हमारे किसान भाइयों को ये देखना है कि आवश्यकता अनुसार अगर खेत में नमी है तो सिंचाई ना करें, अगर खेत की फसल या हमारी पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी को मांग रही है, उसके मांग के अनुसार अगर हमारे किसान भाई उसकी सिंचाई करें तो बहुत अच्छे। और साथ में ये ध्यान दें कि जो मेड़े बनी हैं आधी मेड़ों की ही सिंचाई करें, जिससे कि पानी कम लगेगा तो ऊपर खरपतवार भी कम निकलेगा, जब खरपतवार निकलेगा तो खरपतवार की भी बचत हो जाएगी और हमारे आलू की पैदावार अच्छी होगी।
1: अच्छा, एक बात और भैया कि ये आलू और सरसों को जो फसल खेती है, हमें उर्वरक का प्रयोग कैसे करें?
0: आलू और सरसों की फसल के लिए देखिए 25 से 30 टन जो है गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डाल दे, 120 किलो से 150 किलो जो नत्रजन है हमारी, और 80 से 100 किलो फास्फोरस, 80 से 100 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर आलू की फसल की खेती में। और इसी उर्वरकों के मानक के अनुसार ही हमारे किसान भाई जो है सरसों की फसल ले रहे हैं, एक ही साथ जा रही है, तो इससे क्या कि हमारे सरसों की फसल जो फ्री में तैयार हो जा रही है, यही तो सह फसली है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल
1: बिल्कुल,
0: सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी जानकारी दें, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे आलू और सरसों की सहफसली खेती विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर राधा मोहन मिश्र का मिश्र की वार्ता सुनवाएंगे, दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीकी।
1: विभिन्न क्षेत्रों की तरह दंत चिकित्सा में भी आधुनिक नवीन पद्धतियां आती रहती हैं। विज्ञान के इस क्षेत्र में कोई भी नवीन पद्धति तब तक साधारण रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती जब तक पूर्ण रूप से विभिन्न परीक्षण में पास ही नहीं, बल्कि इलाज के उपरांत किसी तरह का कोई दुष्परिणाम मनुष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि दूरगामी परिणाम सफल हों। परीक्षण विभिन्न स्तर से गुजरता है, इसलिए नवीन पद्धतियां हों या उपकरण, मनुष्य जाति का अंततोगत्वा लाभ ही होता है। दंत चिकित्सा में सटीक और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने हेतु नवीन उपकरण जनसाधारण के लिए उपलब्ध होते जा रहे हैं। साथ ही मुंह में प्रयोग होने वाले मटेरियल अब ज्यादा दिन तक मुंह में टिकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति और उपकरण की संक्षेप में बताना चाहूंगा। एक्सरे, अब हमें एक्सरे खींच के फिल्म सुखाने की जरूरत नहीं, बल्कि आरवीजी नामक मशीन के द्वारा तुरंत ही हम दांत का एक्सरे खींच सकते हैं। इसे न केवल समय बचता है बल्कि कई एंगल से एक्सरे जल्दी जल्दी लेकर इलाज की सटीकता का अनुमान लगा सकते हैं। एक्सरे साफ और सटीक आता है। कई बार दांत उखाड़ते वक्त जड़ अगर टूट जाए तो एक्सरे के माध्यम से जड़ को निकालना आसान हो जाता है, या किसी जटिल प्रक्रिया जैसे डेंटल इम्प्लांट आदि प्रक्रिया के दौरान जल्दी जल्दी सटीक एक्सरे प्राप्त करने से समय की बचत और इलाज अच्छा होता है। एक्सरे की दुनिया में अब 3D एक्सरे भी मौजूद हैं, जिससे हम बारीक से बारीक बातों को मुंह में अंदर दांत की जड़, इम्प्लांट के लिए कितनी और किस हड्डी कितनी का हड्डी उपलब्ध है, साइनस का भली भांति समस्या को जानना आदि सम्मिलित है। दांतों की बीमारी को सही तरह से समझने के लिए पल्प टेस्टर है, जिसे दांत की नसों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दांतों में जो कालापन है वो कीड़े हैं या किसी बदरंग दांत, इसके लिए कैरिस डिटेक्टर उपलब्ध है। पहले दांतों में चांदी फिलिंग की जाती थी, पर अब दांतों की कलर की ही फिलिंग होती है, जिसे पता है ही नहीं चलता कि दांत में कोई इलाज भी हुआ है। जब दांतों में कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं तो हम दांतों में फिलिंग नहीं कर सकते। अगर दांत बचाने लायक है तो दांतों के नसों का इलाज किया जाता है। दांतों की नसों के इलाज में जो सबसे ज़्यादा जरूरी प्रक्रिया है वो ये कि पता लगाना कि दांत की जड़ कितनी लंबी है, अर्थात हमें कितने अंदर तक जाकर दांतों की सफाई करनी है, जो कि एक्सरे के माध्यम से सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता,

0: क्योंकि साधारण रूप से RVG 2D होता है और 3D एक्सरे महंगा ही पड़ता है और सुविधाजनक भी नहीं। ऐसे में एपेक्स लोकेटर नाम की मशीन के द्वारा दांत की जड़ की लंबाई नापी जाती है, जिसकी वजह से दांत की नसों का इलाज या रूट किनाल ट्रीटमेंट का सफलतापूर्वक 95% तक चला जाता है। और भी नए मटेरियल के द्वारा सीलिंग आदि की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डेंटल माइक्रोस्कोप एक ऐसा आधुनिक उपकरण है जिसके माध्यम से दांत के अंदर की बारीक से भी बारीक जानकारी को प्राप्त किया जाता है और इलाज की सटीकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। डेंटल स्कैनर आज के समय की ऐसी आधुनिक मशीन है जो मुंह के अंदर का बारीक से बारीक एनाटॉमी का स्कैन कर लेती है। इसका उपयोग मुंह में नकली दांत लगाने के लिए नाप के लिए उपयोग किया जाता है। पहले दंत चिकित्सक को मुंह के नाप लेने के लिए ट्रे आदि के माध्यम से लेना पड़ता था। कई बार मरीज को मिचली या उल्टी होने की भी संभावना बनी रहती थी, मगर अब आसानी से एक पतला कैमरा के द्वारा पूरा मुंह स्कैन कर लिया जाता है और पहले से ज्यादा सटीक दांत का कैप आदि बनवाया जा सकता है। 3D डेंटल मिलिंग मशीन डेंटल स्कैनर द्वारा ली गई दांत के स्कैन को डेंटल मिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जिसकी मदद से अब और सटीक और कम समय में ही डेंटल कैप को प्राप्त किया जा सकता है। डेंटल इम्प्लांट जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसे में सटीक तरह से इम्प्लांट मरीज के हड्डी में जाए तो आजकल 3D एक्सरे आदि की मदद से हम प्री फैब्रिकेटेड स्प्लिंट मिलता है, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट को सही सटीक तरह से प्रत्यापित कर पाते हैं और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। डेंटल लेजर एक ऐसी आधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल सर्जरी, रूट किनाल आदि में किया जाता है। डेंटल लेजर के द्वारा सर्जरी आसानी से हो पाती है, जिसमें खून कम बहता है। साथ ही अगर मुंह में अल्सर हो, किसी तरह का प्री कैंसरस लीजन हो या किसी घाव को जल्दी सुखाना हो एवं मुंह की सर्जरी में भी किया जाता है। हार्ट टिश्यू लेजर भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा टूट कटिंग भी लेजर से की जा सकती है। रूट केनाल को डिसइन्फेक्ट करने के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आधुनिक समय में निरंतर नई नई मशीन और पद्धतियां सामने आती रहती हैं, जो दंत चिकित्सक और मरीज दोनों के लिए जरूरी हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीकी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 बजे, दोपहर 12:15 बजे आज आप शाहिद परवेज का सितार वादन सुनेंगे। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण सुबह के 8:45 पर किया जाएगा। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। साथ ही सुबह 9 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम का आज आप आनंद लेंगे। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अंशुला सिंह। लोक माधुरी कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर आज आप रश्मि टंडन और दुखीराम के स्वर में गाए लोकगीत सुनेंगे। और दोपहर 2:30 बजे लोकगीत कार्यक्रम में पंचमलाल यादव और शशिबाला जैन और मुकेश बेगाना और साथियों के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। आज आप परिचर्चा भारतीय चिंतन धारा और मानवीय मूल पर सुनेंगे। प्रतिभागी हैं सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। एक ही कलाकार कार्यक्रम दिन में 11 बजे सुनिएगा। प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा की है। आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके फरमाइश हम लेकर आएंगे दोपहर 12:30 बजे। प्रस्तुति मधु कुमारी की है। और दोपहर 1:15 बजे पनघट कार्यक्रम में बात माँ बनने के बाद महिलाओं की बदलती जिंदगी पर। और डॉक्टर शिप्रा से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनिएगा। विषय है कैसा हो धात्री।

का आहार। रसोई घर में पकेगी परवल की मिठाई और लोकगीत का आनंद लीजिएगा हेम श्रीवास्तव के स्वर में। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा वन्य जीव सप्ताह पर। प्रेरणा पुंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर होगी बात। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्वच्छता ही सेवा और पराली न जलाएं पर। लोकगीत कमला प्रसाद पाल के स्वर में। श्रम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है भारतीय ज्ञान के मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छता ही सेवा और पराली न जलाए पर। लोकगीत कमला प्रसाद पाल के स्वर में। श्रम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है भारतीय ज्ञान के मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः भारतीय विमानचालकेन कैप्टन स्मित मछार इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन संवादं कृतवान्। सः चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् अशीत्यधिकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृतविवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथासमयम् उचितनिर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका देश से मिलवौकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति।

0: यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरन तारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी वाणी जयराम और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं तेरे नाम फिल्म से, और इस भजन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है अलका याग्निक ने। समीर की रचना है, हिमेश रेशमिया का संगीत है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए बेला सिंध के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को। फिल्म का नाम है जोधा अकबर, जावेद अख्तर की रचना है, एआर रहमान का संगीत है और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सौंपी बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें। अनौपचारिक श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने के दिए सुझाव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी तक 25% की विशेष छूट। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। कल खिलाड़ियों ने देश के लिए जीते 6 स्वर्ण पदक। महिला हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी और शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GPO स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वह हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चरखा चलाया और खादी का वस्त्र खरीदकर स्वदेशी और स्वावलंबन के संकल्प को मजबूती दी। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की विशेष छूट की व्यवस्था की है।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की छूट भी उपलब्ध करवाई है। खादी भारत की स्वाधीनता का मंत्र है और मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों के हुनर को सम्मान दे। गांधी जी का ये आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का ये मंत्र ही विकसित भारत की आधारशिला बनेगा।
1: इसी क्रम में पूर्व

0: प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा स्वाधीन भारत के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायी मंत्र बना।
1: उनका जय जवान जय किसान का जो नारा था स्वाधीन भारत के अंदर, ये भारत का एक मंत्र बना। एक ओर जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत के दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था, दूसरी ओर हमारा परिश्रमी अन्नदाता किसान भारत की खाद्यान्न आपूर्ति को अपने परिश्रम से, अपने पसीने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। आज उसी का परिणाम है कि भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हमें सत्य, सादगी, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित समारोह में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 4,60,000 से अधिक मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों के खातों में 148 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अंतरित की जाएगी। विद्यार्थियों के खातों में शनिवार 2,250 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। यह दिशा निर्देश कल से लागू हो गए हैं। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा अनकही कहानियां पर आधारित नाट्य श्रृंखला मंचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। सेवा की इस यात्रा में उन्होंने विरासत और विकास के समन्वय के साथ बिना भेदभाव योजनाओं को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा की भावना से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू करके इस सोच को अमल में लाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म को देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
3: ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए GST रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा हो।
2: कानपुर के रहने वाले आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि पहले व्यापारियों के सामने काफी जटिल थी, लेकिन GST के बाद काफी सहूलियत मिल रही है।
4: GST आने के बाद से वन नेशन वन टैक्स ने एक साझा टैक्स प्रणाली का एक मजबूत आधार तैयार। इसका फायदा यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबार करना बहुत ही सरल अपेक्षाकृत आसान होता जा रहा है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। राजेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कानपुर।
0: कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में बदलाव करते हुए रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सांसद इमरान मसूद को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। जापान के आइची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में कल शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत

ने 6 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कल भारत के 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहाई, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अलग अलग भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने इस बार के एशियाई खेलों में देश के लिए कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाजों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रिकर्व वर्ग में अंकिता, कुमकुम और कीर्ति ने महिला टीम प्रतिस्पर्धा में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में कुल 76 पदकों के बाद भारत अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सौंपी बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें। अनौपचारिक श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने के दिए सुझाव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी तक 25% की विशेष छूट। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। कल खिलाड़ियों ने देश के लिए जीते 6 स्वर्ण पदक। महिला हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप शाहिद परवेज का सितार वादन सुनेंगे। राग है यमन। आपके साथ तबले पर संगत किया है विजय घाते ने।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप शाहिद परवेज का सितार वादन सुन रहे थे। राग था यमन, तबले पर संगत किया था विजय घाते ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। कहा, इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा।

0: वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के 3रे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3,00,000 लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं है।

0: आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
1: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-47 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।

0: India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mahor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों, अशिया की भरमार और इनकी इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने से निमटने के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल दरामद के लिए कहा है। G7 मुल्कों में 10 करोड़ बैरल्स डीजल और खाम तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है, क्योंकि अमेरिका में इनकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार तवानाई की भारत की राहदारी के तीसरे मरहले का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि इससे शमसी तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर भारत की साख को मजबूती हासिल होगी। इमदाद महामी के मरकजी वजीर अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें रोजाना 3 लाख लीटर दूध की सलाहियत होगी। और एशियन गेम्स में भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला फाइनल में मलेशिया से होगा। अब खबरें। भारत ने अमेरिका के शहर मिलवॉकी में G20 के वज़रा तिजारत की मीटिंग के आखिरी दिन आलमी सतह पर तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों की तस्हीह के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल करने के लिए कहा है। तिजारत और सनत के वजीर ने मांग में कमी की वजह से सलाहियत के बावजूद अशिया को मुनज़्ज़म तरीके से कम तादाद में तैयार करने के बारे में कहा कि कई रुकन मुल्कों की तरह भारत को भी यही तशवीश लाहक है कि कुछ मईशतों में तिजारत के बिगड़े हुए तौर तरीकों से अशिया की भरमार और इनकी कीमत इंतहाई कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तशवीश WTO के लगातार इकदाम से दूर की जा सकती है, जिनमें अशिया की भरमार की रोकथाम और दरामदात पर टैक्स लगाना भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने खास तौर पर कहा है कि G20 रुकन मुल्कों के साथ भारत की तिजारत का इन्हिसार एक शफाफ, बिला तफरीक और उसूलों पर मबनी तिजारती निज़ाम पर है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का तरीका इस निज़ाम की जमानत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यही शर्तें सबसे छोटे कारोबारी और सबसे बड़े कारोबारी पर भी लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में लोगों से जबरदस्ती काम लिए जाने के बारे में जनाब गोयल ने कहा कि इस बुराई के खात्मे के तहत भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वज़ीर मौसूफ ने उसूलों पर मबनी मुनसिफाना, मुसावियाना, बिला तफरीक, शफाफ, खुले, सबकी शमूलियत वाले और एक ऐसे कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई भारत के अज़्म को दोहराया जिसमें WTO को मरकजी हैसियत हासिल हो। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए पॉलिसी साजी की गुंजाइश की अहमियत पर जोर दिया ताकि वो इत्तेफाक राय के साथ किए गए फैसलों को बरकरार रखते हुए तरक्की कर सकें और आवाम की फलाह कर सकें। जनाब गोयल ने इससे अलग ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंग्स की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: सात मुल्कों के ग्रुप G7 ने 4 महीने में 10 करोड़ बैरल्स तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है, जो ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की एक कोशिश है, जिसके तहत इब्तदाई 20 दिन के दौरान डीजल की खातिर खास सप्लाई की जाएगी। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं, जिसे नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया है। जनाब ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों ने अपने जखीरों से बड़े पैमाने पर डीजल जारी करने और इस अमल को जल्द शुरू करने से इत्तेफाक किया था। यह ऐलान ट्रंप और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के दरमियान रात भर की गुफ्तगू के बाद किया गया है। मीटिंग के बाद फ्रांस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी IEA तेल जारी करने के अमल में

0: रखेगी। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार राहदारी के तीसरे मरहले जीईसी सोएम के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए की भारत की तरफ से दी गई मंजूरी का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि ग्रिड को मजबूत बनाना और बैटरी स्टोरेज एक बड़ा कदम है जिससे मुल्क के अवाम और मईशत को बड़ा फायदा फराहम होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आबोहवा की तब्दीली के उमूर से मुंसलिक अक़्वामे मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई की राहदारी के तीसरे मरहले से भारत को बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की अपनी बढ़ती हुई सलाहियत में इजाफा करने, बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने और तवानाई के शोबे में खुद की एक आलमी रहनुमा के तौर पर शनाख्त कायम करने में मजीद मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई को भारत के बिजली के निज़ाम से मरबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ इक्तसादी तरक्की को भी मदद हासिल होगी। जनाब स्टील ने ख़ास तौर पर तवानाई की यकीनी फराहमी और इक्तसादी तरक्की के ज़िम्न में भारत जैसी बड़ी मईशतों के लिए बैटरी स्टोरेज की दिफाई अहमियत को भी उजागर किया। मरकजी काबीना ने GEC सोएम को मंजूरी दे दी है जिसके लिए 1,86,405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 54,082 करोड़ रुपए मरकज की तरफ से हैं, जिसका मकसद बैन रियासती तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम बनाना और बैटरी तवानाई स्टोरेज निज़ाम की तैयारी में मदद फराहम करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स सभी तरह के तिब्बी इलाज में एक अहम आलाकार बन सकती है जिसे तशखीस, इलाज मुआलजे और थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी की सोसाइटी की बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, मसनूई जहानत, AI और नैनो साइंस से इंतहाई एहतियात से की जाने वाली सर्जरी और किसी एक शख्स के लिए खसूसी तौर पर किए जाने वाले इलाज मुआलजे का एक इको निज़ाम फराहम हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुस्तकबिल में रोबोटिक दवा, रोबोटिक एंड्रोक्रिनोलॉजी और दिल का रोबोटिक तरीके से इलाज किया जा सकेगा, जैसा कि AI मुख्तलिफ तरह के इलाज मुआलजे में अपनी अफादियत के मौके तलाश कर रही है। भारत की देही खवातीन अब महज रिवायती काश्तकारी के काम तक महदूद नहीं रह गई हैं, बल्कि वो तेजी से जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खिदमात फराहम कुनंदा बन रही हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम इस तब्दीली में अहम रोल अदा कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नवंबर 2023 में मरकजी काबीना की मंजूरी से शुरू की गई इस स्कीम का मकसद खवातीन को ड्रोन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। गुज़िश्ता 3 बरस में इस स्कीम के तहत 1,261 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस स्कीम के तहत हुकूमत का मुंतखब खवातीन को 15,000 ज़रई ड्रोन फराहम करने का इरादा है। इसका मकसद खवातीन को ड्रोन सर्विस का हामिल बनाकर उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। पूजा जो राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर की एक नमो ड्रोन दीदी हैं, कहती हैं कि इस तरबियत की वजह से उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई है।
3: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हज़ार रुपए तक की इनकम कर ली।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे के फरोग के लिए एक अहम प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह और वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव गौ पालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज रियासती सतह पर गौ पालक सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इज्तम से खिताब करेंगे। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह मवेशी परवरी के शोबे में नुमाया कारकर्दगी करने वाली खवातीन के इज्जत अफजाई करेंगे, जहां जनाब शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के मुस्तफिदीन को मंजूरी नामे भी तकसीम करेंगे। उम्मीद है कि इस तकरीब में 35,000 से ज़्यादा मवेशी परवर और डेयरी की इमदाद बाहमी अंजुमनों के अरकान शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा,

0: जहां अशोकनगर, विदिशा और दीगर जिलों के मवेशी परवरी से वाबस्ता काश्तकार शिरकत करेंगे। भोपाल और इंदौर की दूध की यूनिटों से वाबस्ता दूध की पैदावार करने वाले किसानों को बोनस रकम की अदायगी भी की जाएगी। इस मौके पर उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से एक डेयरी प्लांट और भोपाल में दूध की पैदावार से मुतालिक एक मरकज समेत कई डेयरी प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा खित्ते में बागबानी के आलमी मरकज से बागबानी के शोबे को इस्तेकाम हासिल होगा और किसानों के लिए बेहतर मौके पैदा होंगे। मोहतरमा सीतारमन ने कल अन्नामैया जिले के मदनापल्ले इलाके में रायलसीमा आलमी बागबानी मरकज के प्रोजेक्ट और जरात के भारतीय स्कूल का संगे बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर खजाना ने कहा कि मरकज और रियासत आंध्र प्रदेश को बागबानी के एक बड़े मरकज के तौर पर तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पानी के बेहतर बंदोबस्त, जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की जरूरत को उजागर किया ताकि किसानों की मदद की जा सके और उनकी आमदनी को बेहतर बनाया जा सके। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय जहाजरानी की कॉरपोरेशन से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को जहाज साजी और बहरी सलाहियत में आलमी मुसाबिकत पैदा करने और खुद कफील बनाने में कायदाना रोल अदा करे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फाल होने के 65 बरस मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने भारत के तवानाई और तिजारती सिक्योरिटी, खासतौर पर आबनाए हुरमुस के हालिया बहरान के हवाले से कॉरपोरेशन के नुमाया रोल को उजागर किया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत भारत के 2047 तक जहाज साजी और जहाजरानी में नुमाया ताकत बनने के लिए एक मजबूत तर कौमी बहरी बेड़ा मरकजी अहमियत का हामिल है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियाती महकमे ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ आंधी चलने के इम्कान जाहिर किए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और जेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने कोंकण और गोवा में आज गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। नौ उम्र भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहद ने एशियाई खेलों में खवातीन के इन्फरादी रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने जनूबी कोरिया की ओ ये जिन को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला 5-5 से बराबर रहा और कुमकुम ने शूट ऑफ में बेहतरीन 10 पॉइंट्स का निशाना हासिल किया, जबकि ओ ये जिन महज 8 पॉइंट हासिल कर सकें। इस कामयाबी के साथ कुमकुम इन्फरादी रिकर्व मुकाबले में एशियन गेम्स का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। इससे कबल कुमकुम ने सेमीफाइनल में चीन की जिंगजी जू को 6-2 से शिकस्त देकर 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स कोटा भी यकीनी बना लिया है। हॉकी में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। दोनों टीमें गिफो पर प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में सोने का तमगा जीतने और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स कोटा हासिल करने के मकसद से मैदान में उतरेंगी। इन शानदार कारकर्दगियों के साथ तमगों की मजमूई फहरिस्त में भारत 5वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। मुल्क के तमगों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है, जिनमें सोने के 17, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर ममनून कौम के जरिए उन्हें खराज अकीदत पेश किए जाने को अखबारात ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने इस खबर की सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया, वजीर आजम और कांग्रेस लीडरों ने राजघाट पर बाबू को श्रद्धांजलि दी। इसी अखबार ने दिवाली और छठ के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर खसूसी ट्रेनें चलाए जाने को भी अहमियत के साथ शाये किया है। वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR के अमल में छूट गए वोटरों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से खसूसी मुहिम चलाने के फैसले को भी अखबारात ने सफे अव्वल पर जगह दी है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने इलेक्शन कमीशन 20 रियासतों में खसूसी मुहिम चलाएगा की सुर्खी के साथ शाये किया है। इसके अलावा अखबारात ने वजीर आजम मोदी की 174 जाने बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मछार से वीडियो कॉल के जरिए बात किए जाने को भी अहमियत के साथ शाये किया है। एशियन गेम्स में जुमा के रोज मुक्केबाजी में सोने के तमगों की हैट्रिक समेत अलग अलग खेल मुकाबलों में कुल 6 सोने के तमगे जीतने की खबर को भी अखबारों ने

0: अहमियत के साथ शाये किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। भारत ने तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों, अशिया की भरमार और इनकी इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने से निमटने के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल दरामद के लिए कहा है। G7 मुल्कों ने 10 करोड़ बैरल्स डीजल और खाम तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है क्योंकि अमरीका में इनकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार तवानाई की भारत की राहदारी के तीसरे मरहले का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि इससे शमसी तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर भारत की साख को मजबूती हासिल होगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का संगे बुनियाद रखेंगे जिसमें रोजाना 3 लाख लीटर दूध की सलाहियत होगी। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, मैं आपकी वीडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई, आज का हमारा विषय बहुत ही ख़ास है कि हमारे पर्व और प्रकृति का संदेश, ये विषय है। लेकिन विषय पर हम थोड़ी देर बात करेंगे, है ना श्रोताओं? और सबसे पहले ले लेते हैं सुविचार। तो भाई, नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। वो लिखती हैं कि धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी है, बल्कि असल में धनवान वो होता है जिसकी जिंदगी में खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं होती। क्या बात है नीरा जी। चलते देखा है लोगों को अक्सर अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर के आगे कभी कोई नहीं निकल पाया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सुविचार है नीरा जी। और जो पॉजिटिव सोचते हैं उसे कोई जहर नहीं मार सकता और जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई दवा नहीं बचा सकती। और आप लिखती हैं, नीलम जी नमस्कार, सुप्रभात, तो वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं को बोल दिया और आपको भी नीरा जी। और एक सुविचार और बनता है, जीवन एक रंगमंच है, हम सब कलाकार हैं, यहाँ भूमिकाएं बदलती रोज, यहीं दर्शक भी कभी हम ही, कुछ पल हंसी कुछ आंसू, कभी तालियां कभी सन्नाटा, पर्दा गिरता है फिर उठता है, नया दृश्य फिर से शुरू होता है। क्या बात है नीरा जी, आपका सुविचार बहुत ही अच्छा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कार्यक्रम में इतना खूबसूरत सुविचार भेजा। थैंक यू सो मच। और अब हम बात करते हैं अपने विषय की, ठीक है श्रोताओं? यूं तो हम प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं, बहुत से पर्व त्यौहार मनाते हैं। आपको बताऊं, हमारे जो पर्व और तीज त्यौहार हैं ये प्रकृति से ही जुड़े हैं और प्रकृति भी इन सब को मनाने का एक अनूठा संदेश देती है। अब आप आज की ही बात ले लीजिए, आज है जीवतिया या जीवित पुत्र का व्रत, इसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। ये व्रत श्रोताओं बहुत कठिन माना जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखती हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, नेपाल में भी मनाए जाने वाला त्यौहार है। जानिए श्रोताओं, यह व्रत राजा जुमुतवाहन के त्याग और परोपकार की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि जुमुतवाहन ने नागों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। उनकी कृपा से नागों के संतानों की रक्षा हुई। तभी से माताएं अपनी संतान की

0: रक्षा के लिए इस कठोर व्रत का पालन करती हैं। इस दौरान महिलाएं, आपको बता दूं कि लाल पीले रंग का रक्षा सूत्र भी धारण करती हैं। इसे संतान की सुरक्षा का कवच माना जाता है। भाई, माँ तो माँ होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई एक दिन नहीं होता माँ की श्रद्धा के लिए। हर पल हर क्षण हम आभारी हों अपनी माँ के, उनकी वजह से ही आज हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख पा रहे हैं और इस प्रकृति का भी आनंद ले रहे हैं। भाई, अब एक ब्रेक बनता है और म्यूजिकल ब्रेक पर हम आपको ले चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो श्रोताओं, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। और भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पर्व और प्रकृति और माताओं का प्रेम, तो भाई माँ तो माँ होती है और अपने बच्चे के लिए माँ कठिन से कठिन व्रत रखती है और वो बच्चा उसे कितना अजीज है इस गीत में लीजिए सुनिए। तो चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पर।

तो श्रोताओं, हर माँ की आँख का तारा होता है उसका बच्चा, उसकी संतानें। तो भाई, अपनी माँ को खुश रखने का हर संभव प्रयास करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लाइए, कुछ वक्त ही दे दीजिए, ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। उनकी खुशी, उनके चेहरे की हंसी है आपकी एक छोटी सी कोशिश। तो भाई, इसी तरह प्रकृति भी हमारी माँ है, क्योंकि माँ ही वो शक्ति है जिसमें सृजन करने की शक्ति है। तो देखिए श्रोताओं, प्रकृति ने भी हमें बहुत कुछ उपहार स्वरूप दिया है, लेकिन हमने इसका सिर्फ और सिर्फ दोहन किया है, यानी सिर्फ अपनी प्रकृति को केवल कष्ट ही पहुँचाया है। क्या हम कुछ लौटा पा रहे हैं अपनी प्रकृति को? तो आप पाएंगे कि नहीं। फिर भी जैसे माँ अपने संतानों की रक्षा के लिए कठिन से कठिन व्रत रखती है, उसी तरह हमारी प्रकृति भी हमारी रक्षा कर रही है अपनी किसी भी कठिन परिस्थिति से। बहुत कोशिश करती है उन कठिन परिस्थितियों से हमें बचाने की। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पर्व भी प्रकृति से जुड़े हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिमूतवाहन ने अपने को गरुड़ के सामने रखा था, तो नाग वंश की रक्षा हुई थी। तो ये जो पशु पक्षी और बेजुबान प्राणी हैं ना, पेड़ पौधे हैं, वो हमारी प्रकृति माँ की संतानें हैं। इन बेजुबान प्राणियों की रक्षा हमें करनी चाहिए, पर क्या हम कर रहे हैं? नहीं। पेड़ पौधों की बेतहाशा कटाई, नदियों की साफ सफाई का ध्यान न रखना, इस वजह से जलवायु में आप भी देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ गया है। असमय बारिश, तीखी धूप और बाढ़, न जाने क्या क्या बहुत कुछ हो रहा है इस प्रकृति में। और आपको बताऊं, ये प्रकृति माँ का रौद्र रूप है, पर जैसे हमारी गलतियों पर माँ गुस्सा हो जाती है ना, वैसे ही ये भी माँ गुस्सा हो रही है। और जब हम उन गलतियों से अपनी माँ को माफ़ी मांगते हैं, माँ के सामने जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि माँ अब ऐसा नहीं होगा, तो वो खुश भी हो जाती है। तो ठीक इसी तरह आप सभी अपनी प्रकृति माँ से माफ़ी मांगें और उनका संरक्षण करने का वादा करें, तो ये माँ भी बहुत खुश हो जाएगी और प्रकृति का आंगन जो है ना, फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो प्रकृति के आंगन में आप सभी अपने हर पर्व को खुशी और आनंद के साथ मनाइए, प्रकृति का भी ध्यान रखिए। और अब ले चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पर, जहाँ हो रही है बातें प्रकृति की।

0: करने की आज्ञा दें। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। तो भाई नमस्कार प्रयागराज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
8: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं सुबह के 9 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पगला कहीं का फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। तो भाई 28 सितंबर को हम लता दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर रेडियो लता दीदी के बारे में कुछ कहता तो क्या कहता। तो भाई श्रोताओं, लता दीदी के बारे में रेडियो ये कहता कि आपके गानों को हमने केवल प्रसारित नहीं किया, लोगों के दिमाग से दिल में उतरते देखा है, चेहरों के मुस्कानों में आपके गीतों के हर लफ्ज़ को उभरते हुए देखा है, हर आंसू में देखा है आपके गीतों, गाए हुए गीतों के शब्दों को। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, लता जी को भूलना इतना आसान नहीं है। वो यकीनन सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी फिजाओं में यूं ही गूंज रही है, हमारे साथ है, हमारे रूबरू खड़ी हैं लता दी। और आपको बताऊं कि रेडियो जब अपनी तरह से सोचता तो क्या सोचता, वो ये कहता है कि लता जी, आपके गीत इस तरह से लोगों के जीवन में शामिल हैं जैसे लगता था कि ये गीत बस उनके लिए ही गाया जा रहा है। और आपको बताऊं, इनकी जो जुगलबंदी थी, क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई, कि इनकी जो जुगलबंदी थी ना, वो मोहम्मद रफ़ी जी के साथ बहुत ही उम्दा थी। मतलब मोहम्मद रफ़ी जी और लता दीदी जब गीत गाती थी तो रेडियो भी खुश हो जाता था और लोगों के घरों के कोने कोने गूंजने लगती थी उनकी आवाज़ें। और चलिए अब यकीन फिल्म का हम आपको गीत सुनवाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, तो ऐसा नहीं कि लता दीदी ने केवल गम के गीत गाए, वो उन्होंने हर मूड के गीत गाए हैं और शोक और चुलबुली आवाज़ भी उनकी बहुत पसंद की जाती थी और हर जवां दिल की धड़कन बन जाती थी लता दीदी की आवाज़। तो जब बात धड़कन की है तो आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत की रचना की है मजरू सुल्तानपुरी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। तो भाई ये गीत उस मूड का है जिसमें एक मोहब्बत करने वाली लड़की जो है वो बताती है कि मुझे आपके दिलविल से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है आपकी मोहब्बत से। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर, आनंद लीजिए।

लता जी कहीं नहीं गई, वो हमारे साथ हैं। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, कुछ ही

0: में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बलरामपुर और चंदौली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
3: बलरामपुर जिले में विकास, शिक्षा, जन कल्याण, आपदा प्रबंधन, कृषि, राजस्व और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक किया। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में लगातार समीक्षा बैठकों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर संबंधित अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में 8 सितंबर को जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर और बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स में लगातार सुधार जरूरी है। वहीं विकास खंड गड़ाच बुजुर्ग की सभी 42 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। ब्लॉक संरक्षण समिति की बैठक में 6 हॉट स्पॉट और 36 नॉन हॉट स्पॉट ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता और विभागीय समन्वय के जरिए अभियान चलाया जाएगा। सितंबर माह के वर्तमान मौसम और धान की फसल की अवस्था को देखते हुए फॉल्स स्मट यानी हल्दिया रोग और गंधी बंग जैसे कीट एवं रोगों को संभावित प्रकोप को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को नियमित निगरानी और समय से उचित प्रबंधन की सलाह दी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान किसी भी समस्या पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। जिले के तुलसीपुर स्थित माँ पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को पहली बैठक हुई। मंदिर के महंत योगी मिथिलेश नाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण, चिकित्सा, बिजली, सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिले में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रमुख गतिविधि चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे इस अभियान के माध्यम से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव से शहर तक सेवा शिविर, जन संवाद और डिजिटल अभियान जैसे गतिविधि आयोजित की जा रही है। मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग की समन्वित कार्य योजना की समीक्षा की गई। वन क्षेत्र से सटे 120 संवेदनशील गांव में जागरूकता अभियान चलाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। 18 सितंबर को जनपद में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में अगस्त 2026 तक की राजस्व प्राप्ति और लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाले विभागों को कार्य योजना बनाकर राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अतिवृष्टि और तेज आंधी ने जिले में मुश्किलें बढ़ाई। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुए, विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, आम जनजीवन पर असर पड़ा। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुनर्स्थापना कार्यों के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें क्षेत्र में लगाई गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने बताया कि
4: हमारा पहला फोकस है कि सारे रोड्स में कहीं भी ऐसी दिक्कत ना हो कि आने जाने में दिक्कत हो। रोड अब तक क्लियर हो चुके हैं। बड़े बड़े पोटहोल जहां हुए हैं उनको भरने का कार्य अभी तत्काल शुरू कराया जा रहा है। विद्युत की लाइनें बहुत ज्यादा रोड्स पे गिरी हुई हैं, उसके लिए हम बार बार अपील कर रहे हैं। अभी जो परिस्थितियां बनी, एक्सीडेंटल कोई और डेथ ना हो, ये हमारा पहला फोकस है।
3: जनपद प्रभारी मंत्री सतीश चंद शर्मा ने कलेक्टर सभागार में अतिवृष्टि और आंधी से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की। जनहानि, मकान क्षति, पशु हानि, विद्युत व्यवस्था और क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी लेते हुए उन्होंने राहत और पुनर्स्थापना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आपदा सहायता भी प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री ने कोटरी घाट पहुंचकर राप्ती नदी के जलस्तर और आसपास की स्थिति का जायजा लिया। जनपद बलरामपुर में 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयुष्मान गोल्डन कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसमें छूटे हुए पात्र लाभार्थियों, जीरो पॉवर्टी श्रेणी के परिवारों, BOCW श्रमिकों, 70 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों सहित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के

0: कार्ड बनाए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ निर्धारित केंद्र पर पहुंचकर कार्ड बनवाने की अपील की गई। सितंबर माह में बलरामपुर में विकास और जन कल्याण से जुड़े अभियानों के साथ आपदा के समय राहत एवं पुनर्स्थापना कार्य प्रशासन की प्राथमिकता में रहे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि से लेकर राजस्व और सुरक्षा से लेकर जन कल्याण तक विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को गति देने की कवायद जारी रही।
1: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
2: गत दिनों चंदौली के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन एवं संग्रहालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं स्कूली बच्चों ने भी पंडित जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर डीडीयू जंक्शन के कानकोर्स एरिया में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों ने भी उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया। विगत दिनों चंदौली के सैयद राजा स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 4 दिवसीय 70वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश के 10 मंडलों के बालक व बालिका वर्ग के अंडर 17 एवं अंडर 19 के लगभग 220 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने तावली और सांडा फाइटिंग स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में मेरठ मंडल ने 92 अंक हासिल कर बालक और बालिका वर्ग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि 35 अंक हासिल कर मिर्जापुर मंडल बालक व बालिका वर्ग में रनर अप का खिताब अपने नाम किया। वहीं वाराणसी मंडल बालक व बालिका वर्ग में ओवरऑल तीसरे स्थान पर रहा। विधायक सैयद राजा सुशील सिंह ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामना दी और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं बल्कि इससे अनुशासन, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि वुशु जैसे खेल युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की सीख भी देते हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हरेंद्र राय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही, उसका प्रदेश में रुझान भी दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहले की तुलना में अब ज्यादा मेडल आने लगे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेल खेलना चाहिए और हार के कारणों से सीख लेकर आगे प्रतियोगिता में विजेता बनने की शुभकामना दी। समापन समारोह में मेरठ से आई वुशु की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रेया को विधायक ने सम्मानित कर उसका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में चंदौली के प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार केसरी, वाराणसी मंडल के माध्यमिक विद्यालय के प्रधान आचार्य, खेल में भाग ले रहे 10 मंडल के खिलाड़ी व उनके कोच के साथ ही गणमान्य लोग और स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं व विद्यालय के अध्यापक और छात्र मौजूद रहे। गत दिनों चंदौली के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी और केवीके के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी ने मधुमक्खी कॉलोनी प्रबंधन, शहद की गुणवत्ता और रोग कीट नियंत्रण पर जानकारी दी। बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर एके नेमा ने मधुमक्खी पालन में आधुनिक मशीनों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। वहीं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रबंधक सुमित शुक्ला, जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे और योग दत्त मौर्य ने विभागीय योजनाओं, सरकारी सुविधाओं और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में बीएचयू के कृषि वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय कैसे अर्जित करें के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विगत दिनों चंदौली के रामगढ़ स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम मठ में बाबा का 427वां जन्मोत्सव समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हो। तीनों दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा का दर्शन पूजन के लिए कतारबद्ध नजर आए। अल सुबह से शुरू हुए दर्शन पूजन का सिलसिला देर शाम तक थमता नजर नहीं आया। हर हर महादेव और जय बाबा कीनाराम के गगन भेदी जय घोष से जन्मस्थली गुंजायमान रही। 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व भजनों की प्रस्तुति से कार्यक्रम स्थल गुलजार रहा। राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने भी अंतिम दिन बाबा के दरबार में अपना शीश नवाया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह के 9:30 होने वाले हैं।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, हमारे उर्दू प्रोग्राम में मुख्तलिफ अकसाम के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, जिन्हें आप हजरात बेपनाह मोहब्बतों से नवाजते हैं, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आप हजरात की शुक्रगुजार है। सामईन, आज का प्रोग्राम बेहद दिलचस्प और अनोखा होने वाला है, क्योंकि आज से हम अपने प्रोग्राम की नई थीम का आगाज कर रहे हैं, जिसका उन्वान है सुखनवर तलबा, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात अपने किसी खास हुनर के साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ चार तालिबात शिरकत कर रही हैं, जिनके इसमें ग्रामी हैं डॉक्टर सना खान साहिबा, मोहतरमा साफिया खान साहिबा, मोहतरमा जैनब रुखसार साहिबा और मोहतरमा बुशरा अकील साहिबा। चलिए हम सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए दावत देते हैं मोहतरमा साफिया खान साहिबा से कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना क्या हुनर पेश करने वाली हैं। साफिया खान साहिबा, माइक पर।
2: बहुत शुक्रिया सर।
1: वैसे साफिया, क्या आज पेश करने वाली हैं और क्या लेकर आई हैं आप?
2: मैं एक हम्द पेश करने जा रही
1: हूं। अच्छा, हम्द मींस तरन्नुम से?
2: जी जी।
1: ओके, चलिए शुरू करिए आप।
2: ना

0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब।
1: वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा,
0: बहुत खूब। मोहतरमा साफिया खान साहिबा जो पेश कर रही थी, वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा, यकीनन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ, बेहद उम्दा कलाम था। और जिस शायर ने जिस तरह से लिखा है वो यकीनन बहुत उम्दा है, और उससे भी अच्छे अंदाज में मोहतरमा साफिया खान साहिबा ने इसको पेश किया।

0: साफिया, आप क्या करती हैं?
1: मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा, ग्रेजुएशन?
1: यस
0: फाइनल ईयर?
1: जी।
0: सब्जेक्ट क्या है आपके?
1: मेरा सब्जेक्ट उर्दू, अरब कल्चर और पर्शियन।
0: पर्शियन है, बहुत अच्छे अंदाज में। आपने सिंगिंग का एक जो नमूना पेश किया हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत ही जबरदस्त और बहुत उम्दा है। वैसे सामिन, हम आपको बता दें, हमारे साथ चार तालिबात इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ने तो अपनी सिंगिंग का जलवा हमारे सामने पेश किया और यकीनन आप हजरात लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। आप देखते हैं अगली जो हमारी कंटेस्टेंट हैं, हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या पेश करती हैं। और इनका नाम है मोहतरमा ज़ैनब रुखसार साहिबा। ज़ैनब रुखसार साहिबा माइक पर हैं, जो भी पेश करना चाहती हैं वो हमारे साथ हैं।
2: शुक्रिया सर।
0: ज़ैनब, आप हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में क्या लेकर आई हैं?
2: गजल
0: है। गजल? मतलब आप अपनी लिखी हुई?
2: नहीं नहीं सर,
0: सिंगिंग करेंगे? अरे वाह, मतलब दूसरी बार भी, पहली ने भी सिंगिंग की, दूसरी भी सिंगिंग करने जा रही। जी आप पढ़ें।
2: यस,

0: बहुत खूब सामईन, ये थी मोहतरमा जैनब रुखसार साहिबा। जैनब साहिबा, आप क्या करती हैं?
1: अभी पढ़ाई कर रही हैं, स्टूडेंट हैं।
0: अच्छा, क्या पढ़ाई पढ़
1: रही हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर है।
0: अच्छा, आपका भी फाइनल ईयर है?
1: जी सर।
0: पहली का भी फाइनल ईयर, दूसरी का भी फाइनल ईयर, क्या करना चाहती हैं आप आगे?
1: आगे सर में एडमिशन कराएंगे, बाकी कोशिश अल्लाह ताला है आगे आप
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्रोफेसर
0: वो तो
1: बनाए।
0: अरे बहुत अच्छा, आमीन। वैसे आपके अंदाज में और आपकी सिंगिंग में जो रिदम था बहुत ही शानदार था।
1: शुक्रिया सर।
0: सामीन आप भी महसूस हो रहे हैं। चलिए सामीन, अब हम आपको एक और स्टूडेंट से रूबरू कराते हैं। वो अपना कौन सा हुनर आपके सामने पेश करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। ये हमारे साथ हैं मोहतरमा बुशरा अकील साहिबा, आप माइक पर तशरीफ लाइए। बुशरा साहिबा, क्या आज पेश करना चाहती हैं?
2: गजल।
0: आप भी गजल, मतलब अपनी लिखेंगी या सिंगिंग करेंगी?
2: सर सिंगिंग।
0: तीसरी कंटेस्टेंट, तीसरी ऐसी हैं जो गजल और सिंगिंग। चलिए अच्छा है, हमारे सामाइन भी महसूस हो रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या क्या हुनर है और कितनी आवाज अच्छी है। चलिए अब डायरेक्ट हम बिना तमहीद में मोहतरमा बुशरा अकील साहिबा से चाहता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें और जिसका भी कलाम है वो अपनी आवाज में पेश करें।
2: शुक्रिया सर।

0: क्या अंदाज है भाई, बहुत
1: रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई।
0: बहुत खूब।

0: गई।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, जबरदस्त भाई। ये थी मोहतरमा बुशरा अकील साहिबा, जिनके अंदाज से और जिनके तरन्नुम से और जिनकी आवाज से आप हजरात लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबसे ज्यादा तो मैं लुत्फानंदोज हो रहा हूँ, बैठा बैठा सबका सुन रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। और ये तीनों स्टूडेंट थे। चलिए हम एक और स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे, और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या पेश करना चाहती है हमारे इस लिस्ट में, हमारी इस फहरिस्त में, और हमारे स्टूडियो में एक और खास मेहमान मोहतरमा सना खान साहिबा तशरीफ रखती हैं। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है, माइक पर आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया शमशुल साहब।
1: सना खान साहिबा, आप क्या पेश करना चाहती हैं?
2: मैं गजल गाना चाहती हूँ।
1: आप भी गजल?
2: जी जी,
1: मतलब आज गजल की हुक्मरानी कायम हो रही है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज इस स्टूडियो में खास तौर से। जी, आप गजल किसकी है वैसे?
2: ये सबा अकबर आबादी की है।
1: जी जी जी,
2: तो मैं वो पेश करना चाहती हूँ। सादगी तो जरा हमारी देखिए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पता करें मोहतरमा।
2: सादगी तो हमारी जरा देखिए।
1: वाह।

0: बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र
1: उम्र भर
0: भर
1: कर
0: कर
1: लिया। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।

0: बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत
0: लिया।
1: खूब।
0: इश्क में उलझने पहले ही कम न थी,
1: यकीनन
0: इश्क में उलझने पहले ही कम न थी,

0: लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर
1: वाह,
0: इंतजार आपका उम्र
1: उम्र
0: भर
1: भर
0: कर
1: लिया। वाह
0: लिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक
1: हाँ।

0: दें इजाज़त। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
6: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अंशुला सिंह। आज आप इनके स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे, तो आइए सुनते हैं अंशुला सिंह के स्वर में गाया कबीरदास की रचना है। लीजिए सुनिए ये भजन।

0: डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईची नायोगया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10

0: इसी भजन के साथ अब सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं

बजकर 5 मिनट हो रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोकमाधुरी। लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आप रश्मि टंडन और दुखीराम के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं रश्मि टंडन के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोक माधुरी, और अब हम आपको सुनवाते हैं दुखी राम के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोतों, इसी के साथ लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोकमाधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

सुबह के 10:30 बज रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा भारतीय चिंतन धारा और मानवीय मूल पर। प्रतिभागी हैं सुमित्रा नंदन पंत, डॉ

0: डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से।
1: जैनेन्द्र जी, आपकी विचारधारा से तो मैं परिचित हूँ, लेकिन फिर भी मन में बार बार ये शंका उठती है कि क्या सांस्कृतिक मूल्यों को राजनीतिक और तथाकथित सामाजिक मूल्य दबा देंगे? आज की जैसी परिस्थितियां हैं और हमारा जैसा देश है जो कि अनेक प्रकार की विषमताओं से पीड़ित है, उसमें आप क्या सोचते हैं कि नैतिक मूल्यों के स्थान पर अगर हम राजनीतिक आर्थिक मूल्यों की स्थापना करें तो उससे देश की अधिक समृद्धि होगी, या हमको मनुष्य को पहले मंच पर स्थापित करके मानवीय जो मूल्य हैं उनको सामने रखकर राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को उनके साथ किसी तरह मिलाना हो चाहिए? गांधी जी की जैसी विचारधारा थी कि वो तो राजनीति को भी एक संस्कृत का क्षेत्र बनाना चाहते थे, और उन्होंने तो जिस प्रकार का युद्ध किया वो कोई राजनीतिक युद्ध न होकर सांस्कृतिक युद्ध रहा है। लेकिन आज तो युग बदल गया है, और फिर देश विदेशों के जीवन को सामने रखकर हमारे देश को भी सोचना पड़ रहा है, और स्वयं हमारे जो चारों ओर की परिस्थितियाँ हैं उनको सामने रख के हमें सोचना पड़ रहा है। इसलिए मन में अनेक प्रकार की शंकाएँ उठती हैं। आप क्या सोचते हैं, इनका क्या समाधान होगा?
2: इसके साथ ही एक बात और विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि जैनेन्द्र जी, आप न केवल विचारक हैं लेकिन उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं, और जितने साहित्यकार हैं और आपके साहित्य के पाठक हैं वो लोग आपसे यही आशा रखते हैं कि आप अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से उस सांस्कृतिक विचारधारा का प्रणयन करते अथवा उसके द्वारा उनकी ऐसी अभिव्यक्ति करते जिससे कि आज के युग में जो सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है और जिन पर राजनीतिक दृष्टिकोण अधिक हावी हो रहा है, उनके पर्याय हम उन सांस्कृतिक मूल्यों का पुनरुद्धार करते जिनके माध्यम से इस देश ने अनेक संघर्षों से विजय प्राप्त की है, अनेक संघर्षों में विजय प्राप्त की है, और जिनके द्वारा हम इस देश की तस्वीर फिर वैसी ही उपस्थित कर सकते हैं जिसका मूल्य और जिसका आदर अन्य देशों में भी हो सके। तो हम लोग ये चाहते थे कि आप इस विषय में अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते कि कहाँ किस सीमा तक हम इन सांस्कृतिक मूल्यों का उत्थापन पुनः साहित्य के माध्यम से और सामाजिक जीवन के माध्यम से कर सकते हैं।
3: बहुत कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि हम मनुष्य को किस रूप में देखते हैं। मनुष्य केवल शरीर तो है नहीं, और शुद्ध आत्मा ही अगर हम मान लें तो भी ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंश से बचा रह जाता है। शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं से जो प्रश्न और समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका निदान और उनका समाधान देने के लिए राजनीति अग्रसर होती है। वो ज़्यादातर वस्तु का कितना उत्पादन है जिसको आर्थिक इत्यादि कहते हैं प्रश्न, उस पहलू को लेती है, और मनुष्य मनुष्य के बीच में जो विषमताएं हैं और उसके कारण कुछ हिंसा की भावना को उद्रेक मिलता है उसकी व्यवस्था के लिए राजतंत्र बना लिया जाता है, समाज बना दिया। किंतु इतने से मालूम होता है कि शरीर संबंधी प्रश्न को हम छूते हैं लेकिन शरीर अपने आप में आत्मनिरपेक्ष तो वस्तु है नहीं। मनुष्य के भीतर जो एक आभ्यंतर जगत है उससे मुक्त कोई हो सकता नहीं है, और मैं मानता हूँ कि लोगों ने उस रूप में देखा है मनुष्य को जिसकी की आवश्यकताएं हैं, और सबसे पहले जो उसकी प्राथमिक और शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा तो होना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने उस प्रश्न को महत्व देकर रोटी और रोजी के प्रश्न को मुख्य माना है। किंतु उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि आदमी सिर्फ रोटी पर नहीं जीता है, कुछ उसकी आंतरिक आवश्यकताएं भी हैं जिसको हम नैतिक सांस्कृतिक इत्यादि शब्दों से इंगित करते हैं। मैं मानता हूँ कि केवल राजनीति जिसमें कि आजकल जो हमारे पास राजनीति का स्वरूप है जिसमें प्रतिद्वंदिता अनिवार्य है,

0: उसके लिए हमने एक लोकतंत्र का स्वरूप का निर्माण किया और हमने सोचा कि भाई दो अगर लगभग समतुल्य दल बन जाते हैं तो उनमें परस्पर युद्ध और विग्रह और हिंसा तो हो नहीं सकती क्योंकि समतुल्य हैं। इसलिए शायद प्रतिद्वंद्वता को एक सांस्कृतिक रूप दिया जा सकता है। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के रूप में जो जाएगा पावर पर, और एक सामने प्रतिपक्ष रह जाएगा और उससे एक संतुलन बना रहेगा समाज का। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस का, शरीर धारण का, निर्वाह का जो प्रश्न है, यही अगर प्रभुत्व बना रहता है तो राजनीति को जो स्थान जीवन में मिलना चाहिए उससे बहुत अधिक विस्तृत व्यापक स्थान मिल जाता है और हमारे मूल्यों की, सांस्कृतिक मूल्यों की हानि होती
1: है। महादेव जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आज के युग के संघर्ष और समस्याओं के बारे में?
2: मैं इस संबंध में सोचती हूँ कि कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता का संग्राम केवल सत्ता के लिए नहीं लड़ता, उसके मूल में नैतिक मूल्य ही होते हैं जीवन के। अन्यथा ये एक देश ये कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि हम साहब निर्बल हैं इसलिए सबल हम पर शासन नहीं करेगा। तो प्रकृति का जैसा नियम है उससे सबल निर्बल पर शासन कर सकता है। नैतिक मूल्य ही हमारे संघर्ष के आधार थे और जब हम स्वतंत्र हुए तो नैतिक मूल्य ही हमारी दृष्टि से ओझल हो गए और हम केवल सत्ता या शासन पर बल देने लगे। तो पिछले 70 वर्ष में जो निरंतर साहित्यिक आंदोलन हो रहे हैं, एक के उपरांत एक, मैं समझती हूँ कि वो इसी कारण हो रहे हैं कि शासन या सत्ता शक्ति और साहित्य या नैतिक मूल्य कहीं संगति नहीं बैठा सकते, उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। इसीलिए निरंतर नए आंदोलन साहित्य में हो रहे हैं, जैसे राजनीति में हो रहे हैं। राजनीति के दलों की तरह ही हमारा साहित्य भी बटा है और संभवतः जब तक संगति नहीं होती तब तक व्यवस्था भी नहीं आ सकती। केवल आर्थिक मूल्य जीवन को नहीं चला सकते।
1: वैसे तो शासन और आर्थिक मूल्य भी लोकहित के ही लिए होते हैं और शासन चाहता है कि इससे लोकहित हो, लेकिन उसको राजनीति के ही दायरे में सीमित कर देना शायद ठीक नहीं होगा, अहितकर भी हो सकता है एक तरह से लोगों के लिए। आप क्या सोचते हैं डॉक्टर रामकुमार?
3: देखिए, मैं समझता हूँ कि केवल राजनीति ही सक्षम नहीं है कि वह नैतिक मूल्यों को स्थिर कर सके। मेरी दृष्टि में जब तक कि साहित्य आगे बढ़कर उन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं करेगा और जनमानस में वह उन मूल्यों को फिर से एक बार नहीं जगाएगा जिनके द्वारा मानव अपने भिन्न भिन्न वर्गों में एक समता स्थापित कर सके, तब तक इन मूल्यों की स्थापना होना कठिन है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि राजनीति में सबसे पहले वर्गत स्वार्थ प्रायः जल जमा लेता है और सत्ता का लालच या सत्ता का लोभ मानव को एक होने से रोकने में, भले ही हम नारेबाजी करें या हम इस बात का बहुत बड़ा एक वितंडावाद खड़ा कर दें कि नहीं हम एक समता चाहते हैं या मानव के सभी वर्गों में समता चाहते हैं, लेकिन जब तक कि मानव का नैतिक धरातल या सामाजिक धरातल एक नहीं होगा तब तक केवल मात्र ये कहने से कि हम एक हैं ये बात चरितार्थ नहीं होगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि साहित्य को सामने आना चाहिए कि वो नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करे जिसके द्वारा मानव समझ सके कि उसका अधिकार क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और वह अपने सहयोगियों के प्रति उसका व्यवहार क्या होना चाहिए।
1: ये तो आप ठीक कहते हैं डॉक्टर रामकुमार, लेकिन दुर्भाग्यवश आज साहित्य की भी बड़ी सीमाएं हैं। हमारे जैसे देश में जहाँ की 60-80% लोग निरक्षर हैं, साहित्य कहाँ तक उनके पास पहुँचता है, किसके पास पहुँचता है? और आज तो जैसा मुझे मालूम है कि साहित्य को लोग एक तरह से मजाक या हंसी की दृष्टि से देखते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक ऐसा संतुलन लोगों में स्थापित कर पाएंगे, कुछ अपने बल के द्वारा, कुछ अपने सत्ता के आग्रह के द्वारा,

0: कि लोग सहज ही मान जाएंगे, लेकिन मुझे इसमें कोई सार्थकता नहीं दिखती। अब जैनेन्द्र जी जो कुछ सुन दें।
1: राजनीति में तो प्रमुख राज है, और राज को रखने और अपने हाथ से न जाने देने की नीति राजनीति में आवश्यकता मैं समझता हूँ है नीति राज की। अब राज्य का बल है शक्ति, और शक्ति ही अगर नीति का निर्माण करती है तो उसमें से नीति राज तो कभी आएगा नहीं।
0: ठीक बात।
1: अधिकांश ये होता है कि शक्ति ने जो नीति का निर्धारण कर दिया है, साहित्य प्रचलित साहित्य उसका अनुगमन करता है।
2: देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कहना चाहता था, क्षमा करें, कि साहित्य उतना न हो, जैसे पंत जी ने अभी कहा कि साहित्य जनता के बीच में प्रचलित नहीं हो सकता क्योंकि वो उपेक्षणीय है इस समय। लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि यदि साहित्य सरल से सरल विषयों पर सरल से सरल भाषा में देकर जनता की को उद्बुद्ध किया जाए या उसको जागृत किया जाए, जैसे कहानी साहित्य है जैसा आप लिखते हैं, उपन्यास साहित्य है जिनके द्वारा हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो यदि हम नाटक साहित्य के द्वारा, रेडियो जिसका माध्यम है, कहानी जिसका रेडियो जिसका माध्यम है, अगर इसके द्वारा जन साधारण में भले ही वो अशिक्षित है, यदि हम कहानी के द्वारा या नाटक के द्वारा या सामान्य लेखों के द्वारा हम ऐसे विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं जिसको सामान्य मानव भी समझ सकता है भले ही वो शिक्षित ना हो, तब भी साहित्य आगे आकर अपना दायित्व निर्वाह कर सकता है।
1: एक प्रश्न है जिसको कि शायद आप ओझल कर जाते हैं, नैतिक शब्द का तो हम उपयोग करते हैं। अब साहित्य नैतिक मान्यताएं जो समाज में प्रचलित
2: सही है
1: और जिसके ऊपर राज्य है उसका अनुगमन करता है या नीतियों का निर्माण करता है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी साहित्य ऐसा है जो हमको नीति प्राप्त हो गई है उसका पोषण और पालन करता है, उसका पुष्टिकरण करता है। अगर साहित्य यही काम करता है तो मैं मानता हूँ कि सच्ची नैतिकता प्रतिष्ठित उसके द्वारा नहीं हो।
0: हाँ, राज्य का दबाव तो बहुत बड़ा,
1: नीति कार्यशील है, और मैं समझता हूँ कि नीति एक ओर जुड़ी हुई है समाज से और दूसरी ओर जुड़ी हुई है जिसको आत्म कहिए, चित केंद्र से। अगर आप समाज के प्रति नैतिकता को दायित्वशील बनाएंगे सर्वथा और चित केंद्र से वो विच्युत हो जाएगी, तो मैं मानता हूँ कि वो नैतिकता हमारी राजनीति को पुष्ट करेगी, उसको चुनौती नहीं दे सकेगी, उसको दिशा नहीं दे सकेगी। नैतिक वो नैतिक जो साहित्य के द्वारा अभिव्यक्त हो, यदि ये जो चित केंद्र है, आत्म केंद्र, प्राण केंद्र, उससे नैतिकता को जोड़ती है, तो मैं मानता हूँ कि अवश्य नई शक्ति का प्रस्फुटन हो सकता है। वो शक्ति जो दो को मिलाती है, दो में प्रतिद्वंदिता के संबंध को पुष्ट नहीं करती। इस समय राजनीति के साथ नीति जो शब्द लगा हुआ है, वो भी तो कहते हैं कि हम तो नैतिक हैं और हम बताना चाहते हैं कि नीति क्या है, और वो उस नीति के पालन के लिए उन्होंने दंड यंत्र बना रखा है कि जो नीति का उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलेगा। समाज राज सत्ता के पास और कोई शक्ति है नहीं। मैं मानता हूँ कि दुष्ट को समाप्त कर देने से समाज का लाभ नहीं है, दुष्ट का दोष समाप्त हो जाता है और वो सज्जन बनता है, सही नागरिक बनता है। ये काम शक्ति द्वारा नहीं हो सकता, राज्य द्वारा नहीं हो सकता, वो उसी साहित्य के द्वारा और उसी व्यक्तित्व के द्वारा हो सकता है कि जो दूसरी शक्ति में विश्वास करता है,
2: यही मेरा
1: जिसमें से कि हृदय परिवर्तन आता
2: है।
1: जी, आप शायद कुछ कह रहे हैं।
0: मैं जरा महादेवी जी से भी इस विषय में पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या आशय है।
3: नहीं, हम साहित्य को केवल विद्वानों की सीमा में सीमित करके देखते हैं और अपने पूरे देश का जो लोक है, साधारण जन है, उसे हम अशिक्षित मान लेते हैं। मैं समझती हूँ कि वो अधिक संस्कृत है हमसे,
0: सांस्कृतिक दृष्टि,
3: और उसके पास बहुत विशाल लोक साहित्य है। यदि हम उसके निकट जाएं तो वास्तव में हमें कुछ और प्राप्त हो सकता है। और जब वो अपना तेज संभालता है तो आप देखिए कि सिंहासन उलट जाते हैं, व्यक्ति कहीं कुछ नहीं रहते।

0: कौन समझाने गया था उनको कि आप एकदम बदल दीजिए, तो देश का मानचित्र ही बदल सकता है यदि वो
1: हाँ,
0: अपने
1: इसमें भी
0: तेज
1: बहुत
0: का
1: कुछ सत्य
0: संवरण
1: है,
0: करे।
1: इसमें संदेह नहीं। लेकिन एक और पहलू भी आज सामने है। बात यह है, भौतिकता का विकास जिसे हम कहते हैं, मैटर जिसे हम कहते हैं, भूत तत्व, इतने बड़ी बाधा थी मनुष्य के विकास में कि उत्तर पूर्व पश्चिम में कोई एक दूसरे में कोई सम्मिलन नहीं हो सकता था, कोई उनमें संतुलन नहीं स्थापित हो सकता था। आज विज्ञान ने बाहर की तो परिस्थितियां बदल दी। आप 6 घंटे में सारी दुनिया में घूम लेंगे कल, जबकि स्पेसशिप जिसे ये कहते हैं दिशायान हो जाएंगे, और यहाँ से दिल्ली जाने में अभी 12 घंटे लगते हैं।
0: पण जी, कुछ व्यक्ति हैं जो घूम लेंगे, ना वहां का साधारण जन यहाँ आता है, ना यहाँ का साधारण जन वहां
1: ये
0: जाता है।
1: ठीक है, मैं लेकिन इस नई परिस्थिति की बात कह रहा हूँ जो कि एक भूत विज्ञान ने पैदा कर दी है। उसने बाहरी परिवेश तो बदल दिया है, लेकिन भीतरी मन मनुष्य का नहीं बदला है। नहीं तो इतने सशक्त देश थे, वो आज एक दूसरे की से आर्थिक स्पर्धा या मानसिक स्पर्धा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को सहयोग देकर आज जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जो कि गरीबों की दुनिया है, उसको बनाने में सहायता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हमारे मन में कहीं दूर आशंका रहती है, कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए।
2: इसीलिए इतनी अशांत
1: हाँ, एक
2: है। और
1: शब्द
2: मैं ये
1: कहने
2: समझता
1: की
2: हूँ जैरीन जी, कि जिसे डिसिप्लिन आप कहते हैं, अनुशासन, वो बाहर से नहीं लादा जा सकता, वो तो मनुष्य के हृदय से ही हो सकता है। और ये तब हो सकेगा जब उसी उसकी चेतना को आप प्रबुद्ध करेंगे। और चेतना राजनीति के द्वारा चेतना प्रबुद्ध नहीं हो सकती। उससे आर्थिक लाभ भले ही हो जाए, उसे शरीर का सुख भले ही हो जाए, लेकिन जिसे आप चित्त का सुख कहते हैं, वो किसके माध्यम से हो सकता है, इसका समाधान आप स्वयं करें।
1: आप
0: ये
1: क्या कह रहे
0: तो
1: थे, एक और
0: मैं,
1: बात।
0: हाँ, ये कहा जाता था कि साहित्य की सृष्टि में जिसको विचार तत्व कहते हैं,
2: जी
0: सामग्री के रूप में उसका उपयोग होता ही है, किंतु मैं समझता हूँ कि मात्र वैचारिक साहित्य हमारी राजनीतिक समस्याओं को धार देगा, संस्कार नहीं दे सकेगा। इसलिए साहित्य के संबंध में भी हमको इस बारे में सावधान और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मात्र वैचारिक विश्लेषण प्रधान प्रखरता जिसमें है, नकार का स्वर, निषेध का स्वर, वो साहित्य हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थ नहीं हो सकेगा, सक्षम नहीं हो सकेगा। जिसको हृदय तत्व कहते हैं, विचार के साथ जब तक उसका सम्मिश्रण नहीं होता है, उसका स्पर्श नहीं होता है, तब तक मैं समझता हूँ कि सुचारू साहित्य, जिसको स्थायी साहित्य कह सकें, वो उत्पन्न नहीं होगा।
1: ये तो है जैनेन्द्र जी, लेकिन देखिए, हृदय का परिवर्तन तो एक ऐसी सूक्ष्म बात है कि आज तो इंद्रियों का दबाव, बाहर के जीवन का दबाव मनुष्य पर इतना हावी है, जगह जगह आप सुन रहे हैं कि वो वहाँ हत्या हो रही, वहाँ लूटपाट हो रहा है, एक देश दूसरे के सामने खड़ा हो रहा है। तो इन परिस्थितियों को, इनको किस तरह साहित्य रोके
0: मैं यही
1: इस।
0: कहा चाहता
1: हाँ
0: हूं कि विचार प्रधान होने की चेष्टा करके साहित्य इन परिस्थितियों का निराकरण नहीं कर सकता है, इन परिस्थितियों को और तीव्र कर सकता है।
1: हाँ
2: तो क्या उपाय हो सकता है, आप
0: तो
2: ये बताइए।
0: उपाय यह है कि विचारकता जब पुष्ट हो, परिपक्व हो लेखक में, तब हृदय तत्व उसका जागृत हो, और दो व्यक्तियों के बीच में जो अनैक है और वैषम्य है, और जिसका निराकरण इस रूप में सोचा जाता है कि एक दूसरे को जेर कर दे या एक दूसरे को समाप्त कर दे, इस रास्ते से हम अपनी समस्याएं नहीं, और उसमें से युद्ध निकला है कि प्रतिपक्ष है, उसको समाप्त कर दो। अब मैं मानता हूं कि दूसरी पद्धति निकालनी पड़ेगी, इस अनैक्य से कैसे जूझें। संघर्ष तो रहेगा, अनैक्य रहेगा जब तक अनेकता है। गांधी जी ने वो पद्धति निकाली कि हम अनेकता को नष्ट नहीं करेंगे, एक रूपता लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो अंतर्व्याप्त एक ऐक्य है अब भी, उसको जगाने की कोशिश करेंगे। अर्थात मेरा जो प्रतिपक्षी है, मैं कहूँगा कि तुम्हें जिलाए रखने का, तुम्हें जीते रहने का हक है, और मैं उस हक की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं मरने को तैयार हूँ।
2: जैनेन्द्र जी,
0: तो
2: यही
0: ये
2: भारतीय संस्कृति है जो आप कह रहे
0: मैं
2: हैं,
0: मानता हूं कि
2: उसमें
0: भारतीय संस्कृति,
2: अनेकता में एकता की भावना
0: भारतीय
2: है।
0: संस्कृति यदि पूरी तरह मूर्त होती है, तो शायद गांधी में मूर्त,
2: इसी बात
0: ये
2: में
0: मैं कहना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति के हवाले तो चढ़

0: तरफ से आ रही हैं।
1: आपके विचार भी सुनने जरूरी है हमारे लिए।
2: मैं समझती हूँ कि केवल चिंतक और विचारक ये कार्य नहीं कर सकेंगे। साहित्य में रागात्मक संबंध विशेष महत्व रखते हैं, तो जब तक हम तादात्म्य नहीं करते उस दुख से, तब तक हम कितना ही विचार करें, बुद्धि की प्रक्रिया हमें अकेला कर सकती है, ऊंचा कर सकती है, हिमालय का शिखर बना सकती है। लेकिन जब तक हम समुद्र की उस गहराई विस्तार को नहीं पा लेंगे, अर्थात रागात्मक संबंध हमारा समष्टि से नहीं होगा, तब तक हम उसके निकट नहीं पहुंचेंगे। साहित्य तो भावना का ही उद्गीत है, राग का ही उद्गीत है।
0: डॉक्टर राम कुमार जी तो प्राध्यापक हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य को यदि विषय बनाया जाएगा तो हमारा उसके साथ संबंध वस्तुगत हो जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि साहित्य हमें आत्मगत, इतना आत्मीय हो कि वो विषय न बने, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में से जो विज्ञान पैदा होता है, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, उससे समस्याएं तीखी बनती हैं।
3: ये समस्याओं को दूर करना ही साहित्य का धर्म है।
0: साहित्य सृजनात्मक साहित्य,
3: सृजनात्मक साहित्य का
0: वही मैं कहना था। और सृजनात्मक साहित्य की संभावना कम हो जाती है यदि साहित्य को एक विषय के रूप में हम उसको अधिकृत किया चाहते।
1: जीवन तत्व वाक्य इतना रहस्यमय, इतना गूढ़ है कि सभी कुछ ज्ञात नहीं है। मनुष्य सोचता है सब उसको मालूम है, उसके आधार पर वो अपने नियम, चेष्टाएं और कार्य व्यापार वो कर निर्धारित करता है। लेकिन बहुत सारा अज्ञेय तत्व भी, मनुष्य बहुत बेचारा कहते हैं भीतर से बदल गया है धीरे धीरे, लेकिन वो बदलाव उसके बाहर के स्तरों में नहीं आया है। हो सकता है कि ये भविष्य के वसंत के लिए आज का जो ये संघर्ष का युग है और जो ये उत्क्रांति का युग है, ये एक पतझर सा हो, क्योंकि पुराने विचारों का विघटन होना, पुराने मनुष्य का विघटन होना, पुराने सामाजिक का विघटन होना अवश्यंभावी है कि हम एक नए विचारों को ग्रहण कर सकें, नए मूल्यों को ग्रहण कर सकें, नए मानव का निर्माण कर सकें, नई मानव एकता विश्व पर स्थापित कर सकें। आज तो धरती अनेक देशों में बटी हुई है, बटी तो तब भी रहेगी, जैसे कि आपने अभी कहा, अनेकता को हम दूर नहीं कर सकते, ना करना भी नहीं चाहिए। अनेकता में एकता, एकता में अनेकता सिद्धांत है जीवन का। लेकिन अब ऐसा है कि उसमें एक ऐसी व्यापक मानवीय एकता उसमें स्थापित की जा सकती है, मनुष्यत्व के ऐसे मूल्य उनमें स्थापित किए जा सकते हैं कि मनुष्य एक दूसरे का मुख देखे तो उसको अपरिचित न लगे, वो देखे कि हाँ ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ।
3: अब पंडित जी ये देखिए कि हमारे कवि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सूर है, तुलसी है, कबीर है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनमें मानवता की प्रेरणा इतनी अधिक थी, भावात्मकता इतनी अधिक थी, रागात्मा इतनी अधिक थी कि उन्होंने उस अपने विचार दर्शन से, जो मस्तिष्क का नहीं था, हृदय का था, उन्होंने सारे संसार को एक रूप में देखा और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझा।
0: क्या हम ये माने पंत जी कि हम लोग सब इस बात में तो सहमत हैं कि राजनीति अपने आप में पर्याप्त नहीं है। राजसत्ता और राजशक्ति के द्वारा जीवन की समस्याएं हल होने वाली हैं नहीं, इसलिए राजनीति को स्पर्श नैतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का होगा, तभी सच्चे अर्थों में उसे विधायक हम कह सकेंगे। अन्यथा इनसे विहीन होकर वो विघातक ही है।
1: वह केवल शक्तिमद है,
0: शक्ति तो उसमें एक को उभारने और दूसरे को गिराने के द्वारा ही वो अपना काम कर सकती है, उसमें से सर्वोदय जैसी स्थिति नहीं आ सकती।
1: ठीक बात है। महादेव जी, आप क्या सोचते हैं सर्वोदय को लाने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए?
2: साहित्यकार को अपना जीवन भी उसी के अनुरूप ढालना चाहिए।
3: सही है,
2: जो वो लिखता है
1: वैसा ही कार्य करे, वैसा
2: उसका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए।
1: क्या आप सोचते हैं कि राजनीतिज्ञों के ऊपर एक प्राज्ञों की कोई एक सभा या संगठन हो जो कि राजनीतिज्ञों को उन मानवीय मूल्यों को दे या उन विचारधाराओं को दे जिससे कि वो देश को शासित करें और जिससे कि वो अपनी आत्मतृष्णा को संयमित रखें और देश के कल्याण को अपने सामने लाएं? क्या आप ऐसा सोचते हैं?
2: देने वाले के हाथ में ये नहीं रहता है कि लेने वाला
3: ले
2: कितना ले या वाद्य कर सके हम उसे।
0: ऊपर संगठन हो तो क्या इसका मतलब कि उस संविधान के अंग के रूप में
2: उसे लोग नहीं कर सकते,
0: उससे तो काम नहीं चलेगा।
1: स्वतंत्र
2: उसे हम नहीं कर सकते, लोग कर सकता है।

0: हम अपने आप ये विश्वास लेके चले, नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित
1: किंचित,
0: बस सवार ऊपर
2: मानवता की।
3: वैसे हमारे यहाँ संस्कृत का जो स्वरूप है,
0: और अगर हम
3: एक तो सीधे निर्वाचन के द्वारा आते हैं, लेकिन एक राज्यसभा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह वगैरह कहते हैं,
1: नॉमिनेटेड भी होते हैं,
3: वो ऐसे होते हैं कि जिसको माना जा सकता है कि वो द्वंद्ववाद के समर्थक नहीं है, उस रास्ते से नहीं आते, वो विवेक के प्रतीक है
1: एल्डर्स। हाँ,
3: तो वो एल्डर्स के माने ये है कि विवेक जैसा अंकुश वहाँ से आना चाहिए, लेकिन अब जो पार्टी सिस्टम चल रहा है उसमें तो संभव नहीं रहेगी।
1: इसलिए मैं सोचता हूँ एक स्वतंत्र, एक सांस्कृतिक, एक ऐसा संगठन प्राज्ञों का होना चाहिए, है ना। अगर वो अपनी विचारधाराओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को लोगों को देना शुरू कर दे तो लोग उससे जरूर ही प्रभावित होंगे, और जो आज हमारी सत्ता जिनके हाथ में वो भी उनसे जरूर ही प्रभावित होगी। इसकी तो बहुत कमी है, क्योंकि आज विकास की जो स्थिति है उसमें मनुष्य बाहरी दबाव से बहुत दब गया है, भीतर का दबाव अभी उसे अनुभव नहीं होता। तो भीतर का दबाव अनुभव जिन प्राज्ञों को हो वो एक

0: को लोगों को देना शुरू कर दे तो लोग उससे जरूर ही प्रभावित होंगे, और जो आज हमारी सत्ता जिनके हाथ में वो भी उनसे जरूर ही प्रभावित होगी। इसकी तो बहुत कमी है, क्योंकि आज विकास की जो स्थिति है उसमें मनुष्य बाहरी दबाव से बहुत दब गया है, भीतर का दबाव अभी उसे अनुभव नहीं होता। तो ये भीतर का दबाव अनुभव जिन प्राज्ञों को हो वो एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि इन बाहरी स्थितियों में जो अपूर्णता है, बाहरी सत्ता की नीति में जो अपूर्णता है, उसकी पूर्ति कर सके। मैं सोचता हूँ ये भी आने वाले निकट भविष्य में संभव हो सकेगा, और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।
1: इसके माने यह है, साहित्यकार को अपना विवेक संतुलित करके इस प्रकार के पथ प्रदर्शन या दिशा दर्शन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
0: अवश्य, मैं भी ये मानता हूँ, साहित्यकार है, विचारक है, राजनीतिज्ञ है, लोक कर्म में जो लोक कर्म करते हैं, लोगों के साथ जो जिनकी संवेदना है, वो सब मिलकर दिशा और काल के इस
2: पंत जी का सुझाव है कि कोई प्राज्ञ परिषद जैसी चीज हो पंत जी संबंध में।
1: और मैं समझता हूँ इसमें लोक साहित्य को अवश्य स्थान दिया जाए।
2: पंत जी इस संबंध में कुछ करने का विचार भी रखते हैं आगे बढ़कर?
1: हम लोग
2: मैं समझता हूँ कि हम आशा करें कि उस संबंध में कुछ आगे बढ़ेंगे।
1: हम लोग सब सहयोग देने के लिए तैयार हैं।
0: तो मैं आपसे अपने नक्कू नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं इसकी आवश्यकता अवश्य अनुभव करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस एक गहन गूढ़ एक अनेक पहलुओं पर इस विषय के गहन गूढ़ विषय के विचार किया, और मैं सोचता हूँ लोगों को उससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। और बहुत कुछ तो अभी छिपा हुआ है, आगे सामने आएगा, उसके लिए हमें आशान्वित रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना परिचर्चा भारतीय चिंतन धारा और मानवीय मूल्य। प्रतिभागी थे सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक ही कलाकार श्रोताओं प्रस्तुत है ये कार्यक्रम और ये कार्यक्रम केंद्रित है अपनी भावनाओं, संघर्ष और देशभक्ति को पर्दे पर जीवंत करने की कला को अपनी अलग पहचान देने वाले फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता पर।

माता जेपी दत्ता की, जिनका जन्म 3 अक्टूबर यानी आज के दिन 1949 में मुंबई में हुआ। पूरा नाम ज्योति प्रकाश दत्ता, जिनकी खासियत रही बड़ी कहानियां, मजबूत किरदार और देश के प्रति समर्पण की भावना। उनका फिल्मी सफर इस तरह शुरू हुआ श्रोताओं, जब उन्होंने 1972 में आरके स्टूडियो में सहायक के रूप में काम किया और रणधीर कपूर के साथ काम किया। ये बेहद ज़रूरी बात थी कि रणधीर कपूर के साथ काम करना। इसके बाद अपनी पहली स्वतंत्र फिल्म गुलामी 1985 में निर्देशित की, जो उनके निर्देशन में डेब्यू हुई। श्रोताओं, कहानियां बहुत लोग कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल में उतर जाती है। फिल्में बहुत बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में इतिहास में अपनी जगह बनाती हैं। ऐसे ही फिल्मकार हैं जेपी दत्ता। जब 1971 के युद्ध लोगेवाला की लड़ाई से प्रेरित कहानी बॉर्डर फिल्म 1997 में दर्शकों के सामने आई, तो हर सैनिक के घर की भावना और अपने दिल की भावना मन में उतर गई। सिनेमा घरों में दर्शकों को भावुक होने पर मजबूर कर दिया और ये गाना उन्हें याद

सिनेमाघरों में दर्शकों के भावुक होने के साथ साथ गाने भी ऐसे होते हैं जो अपनी जगह अपनी यादें छोड़ जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता की फिल्मों में केवल कहानियों की नहीं बल्कि रिश्ते की, संघर्ष की, समाज की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। 2000 में आई रिफ्यूजी की बात करें तो इसमें बिछड़ाव, रिश्तों और इंसानी भावनाओं की कहानी से जुड़ी बहुत ढेर सारी और गहरी रिश्ते हैं

वर्ष 2006 में उमराव जान के माध्यम से उन्होंने साहित्य, संगीत, प्रेम और भावनाओं से जुड़ी एक अलग दुनिया को पर्दे पर प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों की बात करें तो गुलामी, यतीम, बंटवारा, क्षत्रिय, एलओसी का कारगिल, पलटन जैसी बेहतरीन फिल्मों को प्रस्तुत किया और लोगों ने बेहद सराहा, बेहद पसंद किया।

जेपी दत्ता का फिल्मी सफर चार दशकों से अधिक समय से भारतीय सिनेमा से जुड़ा हुआ है। गुलामी से शुरू हुआ और आज भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं। 2026 में आई बॉर्डर 2 में उन्होंने निर्माता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। आज भी जेपी दत्ता का फिल्मी सफर सिनेमा से जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, कहानी वही खास होती है जो दिल को छू जाए और फिल्म वही याद रहती है जो पर्दा खत्म होने के बाद भी दिल में चलता रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निदेशक जेपी दत्ता पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज से, बोल कैफी आजमी के, संगीत जगजीत सिंह का और फिल्म का नाम

अगला गीत सुनिए राहत फतेह अली खां और प्रतिभा सिंह की आवाज में, जमीला अहमद के बोल हैं, संगीत सुहेल सेन के, फिल्म का नाम बाजार।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जुबिन नौटियाल की आवाज में, बोल और संगीत ऋषभ कांत का, फिल्म का नाम सैयारा।

एक बार फिर सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में नीलेश मिश्रा के बोल, संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद इरफान की आवाज में, संगीत और बोल मिथुन का, फिल्म का नाम एक विलेन।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए बाबुल सुप्रियो की आवाज में बोल समीर के संगीत हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम वादा।

वादा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूर

0: मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
3: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gopalak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will also address the gathering. A state-level Gopalak Sammelan is being held at the Bhel Dashehra Maidan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana.

आज रात 9:30 पर साहित्य भारती और 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए शाहिद परवेज का सितार वादन। 12:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हेम श्रीवास्तव के गाए लोकगीत के साथ सुनिए डॉक्टर शिप्रा से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय है कैसा हो धात्री का आहार। दोपहर 2:30 पर पंचम लाल यादव और साथी के गाए लोकगीत सुन सकेंगे। शाम 5 धरती के गीत कार्यक्रम होगा और 5:15 पर युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम यौवाड़ी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनिए कमला प्रसाद पाल और साथी के गाए लोकगीत के साथ परिवार कल्याण की बातचीत। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनी पंकज श्रीवास्तव के गाए गीत 7:45 पर। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना।

सुनीता वर्मा, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंगे हुआ, चेहरा गोल है। इन्होंने गुलाबी रंग का सूट, काले व सफ़ेद रंग की चप्पल पहनी है। ये दिनांक 1 अगस्त 2026 से कहीं लापता हैं। इनके बारे में सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है, प्रेम प्रकाश वर्मा, पुत्र राम आधार वर्मा, वर्मा निवास, ग्राम आसाव, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 9112581838। इसी क्रम में उमा देवी, उम्र 32 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गहरा, चेहरा गोल, आंखें काली व बड़ी हैं। इन्होंने नीले बूटेदार रंग की साड़ी पहनी है। ये दिनांक 4 अगस्त 2026 से कहीं लापता है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है, अजय कुमार गौतम, खलासी कपूरवा, बद्री कुंडा, प्रतापगढ़। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए शाहिद परवेज का सितार वादन राग देशकार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार वादन राग देशकार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला केरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: पाकीजा फिल्म, फिल्म का नाम है पाकीजा और
0: जी।
1: गीत बोले मौसम है आशी पानी, गायिका लता होगी इसको।
0: जी जी हम पाकीजा फिल्म का ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैडम, संगम
0: नमस्कार।
1: नगरी प्रयागराज हवेलिया झूंसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम धरती का फिल्म जो है
0: जी,
1: लेना गाने का बोल है, खुदा भी जब आसमां से जमी पर देखता होगा, सोचता होगा मेरे महबूब को।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये
1: हाँ,
0: गाना है।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में मैडम जो है बहुत बढ़िया गाना है।
0: जी जी महेंद्र जी, तो चलिए। हाँ जी बोलिए।
1: हाँ
0: हाँ बिल्कुल, नाम ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपका कुशवाहा, रीवा मौर्या, सुनीता कुशवाहा।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं धरती फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश, और ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मैं माही यादव है, धमकियात मेरा पति बोल रहे हैं।
0: जी माही जी, बताइए।
1: सैनिक पिक्चर का गाना सुनना है। हाय मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया।
0: अच्छा माही, आप करती क्या है, अपने बारे में थोड़ा बताएंगी?
1: कुछ नहीं, बस घर का काम करती है।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है
1: जी।
0: अच्छा, और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं हम लोग, फरमाने ये सब ज्यादा।
0: अच्छा, फिल्म के जो गाने होते हैं, फिल्मों के गानों पर आधारित कार्यक्रम आपको ज़्यादा पसंद है।
1: जी।
0: तो माही जी, आपने फरमाइश की है सैनिक फिल्म के इस गीत की, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती?
1: नाम बिटिया का है राखी साक्षी सोनाक्षी।
0: अच्छा जी, तो सुनिए अपनी पसंद का सैनिक फिल्म का ये गाना।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं
1: जी। हृदय से धन्यवाद। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से परम आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।

0: जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब पितृपक्ष श्राद्ध पर्व प्रारंभ हो चुका है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें अभिनंदित करते हैं, आमंत्रित करते हैं और श्रद्धा के अनुसार उनका सम्मान करते हैं, तर्पण करते हैं।
1: जी
0: तो ऐसे मौके पे मैं अपने दिवंगत पूर्वजों को शत शत नमन वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है पुष्पांजलि
1: जी
0: और गीत के बोल हैं, दुनिया सी जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आकाशवाणी प्रयागराज से।
1: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: संगम नगरी प्रयागराज में पवन बोल रहा है मैम। नमस्ते।
0: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: प्रेम रोग का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: भंवरे ने खिलाया बोल बोल कर ले गया रात में।
0: ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना पसंद किया है पवन जी ने। तो पवन जी, आपकी फरमाइश को पूरा करें।
1: जी मैम,
0: लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदल

0: बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said, democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
1: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabav Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said that Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में मुनक्कद एक तकरीब में स्कॉलरशिप और फीस की वापसी के तकसीम के अमल का आगाज़ किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हम तलबा के खातों में बराए रास्त रकम भेज रहे हैं, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि 9 साल में 4 करोड़ से जायद बच्चे मुस्तफीद हुए हैं।
1: आज हम 4,60,000 छात्रों के अकाउंट में सीधे धनराशि भेज रहे हैं। जैसे हमने बटन दबाया, उन छात्रों के अकाउंट में पैसा चला गया। ये राशि है 148 करोड़ की, लेकिन यहीं पे सीमित नहीं होनी है। हमने जो वर्ष बीता है उसमें 69 लाख छात्रों को 6,200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया है, और अगर आप देखेंगे पिछले 9 वर्ष में तो ये संख्या बढ़ती है लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को। ये छात्रवृत्ति भी है और शुल्क प्रतिपूर्ति की शुरुआत भी है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मन की बात की पहली किस्त 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी पर नशर हुई थी। हाल ही में वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम की 138वीं किस्त में कौम से खिताब किया। मन की बात में वज़ीर आज़म मुल्क के लोगों से बराए रास्त बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल होने वाली कामयाबियों और समाजी तब्दीलियों की कहानी पर रोशनी डाली जाती है। मन की बात ने बहुत से समाजी मसाइल को आवाम तक पहुँचाने और उन्हें अवामी शराकत से जोड़ने में भी अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफ़र अवामी खिदमत के ज़रिए कौम की खिदमत के जज्बे से मुतासिर है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के विज़न के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ की सिमत में काम कर रही है। आज हम इस खसूसी सीरीज़ में बात करेंगे गुड एंड सर्विसेज टैक्स GST के निफाज के ज़रिए इस विज़न को कैसे अमली जामा पहनाया गया।
2: वस्त्र एवं सेवा

0: कर यानी जीएसटी को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
1: ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा हो।
0: कानपुर के रहने वाले आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि
2: जीएसटी आने के बाद से वन नेशन वन टैक्स ने एक साझा टैक्स प्रणाली का एक मजबूत आधार तैयार किया। इसका फायदा यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबार करना बहुत ही सरल अपेक्षाकृत आसान होता जा रहा है।
0: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। राजेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कानपुर।
3: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर कल लखनऊ में नमो सेवा अनकही कहानियां पर मबनी ड्रामा सीरीज के प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर-ए-आला और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 7 अक्टूबर को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल करेंगे। खिदमत के इस सफर के दौरान उन्होंने विरासत और तरक्की को मरबूत किया और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात तक बिला तफरीक स्कीमों को पहुंचाया। इसी सिलसिले में नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत की और रियासती हुकूमत के काबीना वजीर मनोज पांडे वाराणसी प्रोग्राम में शरीक हुए। वहीं अमरोहा में माजूर अफराद को मुआविन आलात तकसीम किए गए। रुकने पार्लियामेंट कंवर सिंह तंवर ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। खवातीन के कौमी कमीशन ने मरकजी हुकूमत को बच्चों की देखभाल की छुट्टियों से मुतालिक सिफारिशात पेश की है। इनमें प्राइवेट सेक्टर में बच्चों की देखभाल की छुट्टी को सनफी तौर पर गैर जानिबदार बनाया। 2030 तक बच्चों की निगाहदाश्त की 5 लाख मराकज का कायम लाजमी तौर पर अदा करना शामिल है। कमीशन ने पाया कि 90% से ज्यादा खवातीन वर्कर्स को मौसर कवरेज से महरूम रखा गया है। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिन के बच्चों की देखभाल की छुट्टी के फ्रेमवर्क को दोनों काम करने वाले वालदेन के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम करने हैं। हर 365 दिन या एक मुश्तरका पुल बनाने की तजवीज पेश की गई है, जहां दोनों वालदेन एक ही तंजीम में काम करते हैं। रियासत में स्वच्छता सेवा को वसत देते हुए 17 अक्टूबर 2026 तक एक खसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत ऐसी जगहों की सफाई की जा रही है जहां जरूरी सफाई बाकायदगी से नहीं की जाती है। तकरीबन 1.22 लाख सैनिटेशन टारगेट यूनिट्स की निशानदेही की गई है, जिनमें तकरीबन 1.10 लाख को शहरियों की शिरकत से खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम पनघट।

0: अरे आस्था, अरे गंगा बहनी,
1: देखा तू
0: देखा
1: भुलाए
0: मैं
1: के का
0: भुलाए के
1: हाँ
0: नहीं जाना तू हमरे घरे में आई रहीन, मिली रहीन बहनी,
1: अच्छा
0: और 3 दिन रहीन और आजे सवेरे गईन।
1: हाँ
0: हमरे दिमाग में बस उन्हीं का नाम चलता, अब हाँ
1: चला
0: पूरा
1: कोनो
0: घर
1: बात
0: सुन करके चली गईन।
1: कोनो बात ना है ना, तो हम ही शुरू कर दिए थे सत्या बहनी राम राम
0: और
1: और
0: पनघट
1: पनघट
0: कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी हरिन के राम
1: गंगा और
0: राम
1: सत्या के राम
0: राम राम।
1: राम। और बताओ सत्या बहनी का हाल चाल बा? आजकल तू बहुत देखा व्यस्त रहत हो, काव करत हो बहनी? पहले तो देखा कितना हम सबे बतियात रहे, घूमत फिरत रहे।
0: देखा तुहार तो शिकायत एकदम सही बाटे गंगा बहनी, काहे से कि जानत हूँ कि हम लोग घूमत रहे, टहरत रहे, जात रहे खेते खलियाने, समय निकाल के
1: हाँ
0: उही मिल जाई बत कही। लेकिन जब घरे में लड़का गदेल, खास तौर पे जब लड़कवन स्कूल जाए लाया हो

0: जाती हूँ।
1: हाँ
0: तो भैया जानत तो है ये हो कि घरे में खेती किसानी के काम ओकरे साथे साथे लड़िकन लड़िका गदेल जब हो जाती तो आदमी एकदम व्यस्त हो जाता,
1: बिल्कुल
0: ओन्हा अपने आसपास के लोगन का सुध बुध फिर नहीं रह जाते।
1: बिल्कुल सही बात कहूँ। देखा उस तो खूब फुर्सत रात मने इनके, लेकिन महतारी बने के बाद जिंदगी एकदम बदल जात है।
0: बिल्कुल
1: तब
0: सही
1: तब
0: कहती
1: पहले
0: हो,
1: उन्हें सब बदे सोचे खो थे, बाद में अपने अपने विदा सोचा थे मने।
0: बिल्कुल सही कहती हो बनी। अस तो बहुत ही फुर्सत रहत है, मुना जब आदमी महतारी बन जाता ना तो समझ ले कि उनकर जीवन पूर्ण रूप से बच्चन के लिए समर्पित हो जाता है ना।
1: बिल्कुल। तो हम सोचा आज हम घरे रहे तो सोचे किसने पनघटे पे आज यही पे हम सभी बत कही कह लेन जाए कि माँ बनने के बाद बदलती जिंदगी एकरे बारे में कि देखा बहनी हरन माई बने के बाद सही में देखा सबकर जिंदगी कैसे एकदम से बदल जाता है।
0: बिल्कुल सही कहती हो गंगा बहनी। और जानत हो जब हम ये सोचत रहे पहले, जब जैसे हमारे घरे जो लड़का है हमारा बेटा रहन, तो हम यही पहले सोची कि हे भगवान दूसरे के लड़का जब तक मन रहत रहा खिलाई लेत रहे, और अपन तब दिन भर लिए पड़े रही,
1: लेख पड़ी
0: तो यही
1: बिल्कुल।
0: सोचत हम इतने परेशान रहत रहे। मुने देखा ईश्वर की माया कुदरत ऐसन दिमाग बदल देथिन कि जब वो थोड़ी दूर नजर से ओझल केहू और के पास रहथिन तो चिंता होए लगत है
1: हाँ
0: कि
1: मन
0: कहाँ
1: छटपटाए
0: है।
1: लागत है कि
0: हाँ
1: कहाँ गए हमार
0: बिल्कुल
1: गदेला।
0: सही कहती हो।
1: एकदम सही कहो। देखा बहनी और एक औरत की जिंदगी में ना देखा बहुत सारे रिश्ते आवत है। वो बेटी भी बनत है, बहन भी बनत है, दोस्त भी बनत है और पत्नी भी बनत है। लेकिन जब वो माँ बनत है तो जैसे ओके पहचान में एक नया रंग जुड़ जाता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहती हो। कहती ना कि ये सारे रिश्ते तो जो है बहुत खास होबे करथिन बहनी, लेकिन ये ऐसा खास होता है ये माँ और बच्चन का रिश्ता ऐसा होता है कि दुनिया एक तरफ
1: हाँ
0: और बच्चे एक तरफ। अगर
1: बच्चे एक
0: हमन से
1: तरफ
0: कोनो भी स्त्री के चुने के मिल जाए, अगर ये अधिकार कहा जाता है ना, देखे बहनी जब कोनो के बच्चा पैदा होता है तो जो छठी वाला दिन होता है
1: हाँ
0: कहथिन ना कि माँ जगत रहे अगर, तो कहथिन कि ब्रह्मा जी उही दिन जो है बच्चे का किस्मत लिखथिन। हाँ
1: हाँ
0: तो अगर
1: हाँ
0: माँ जगत रहता तो ईश्वर के भी हिम्मत नहीं पड़त बच्चे की किस्मत में कुछ इधर उधर की चीज लिखे के लिए, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही बात है। देखा एक छोटी सी नन्ही सी किलकारी, दो छोट छोट आँख और एकदम दो छोट छोट हाथ, ओका देखे के बाद कितना अच्छा लागत है। पूरी दुनिया लागत है कि मिल गए
0: वो
1: वह
0: बिल्कुल सही
1: औरत के।
0: कहते। वो मासूमियत जो है माँ जब अपने बच्चे के देखा था ना तो समझ ले वाकई में हमारे पास जैसे अब शब्द ही नहीं ना वो चीज बतावे के लिए।
1: बिल्कुल। अच्छा देखा पहले हमरे सब सोवत रहे तो अलार्म लगाए के उठे पड़त रहा है ना, लेकिन जब से गदेलन हो गया है तब से खुद ही अपने आप रात में कई दिन आँख खुलत है
0: जीवन
1: कि
0: में,
1: देखा पता ही नहीं
0: हाँ
1: चलत।
0: जीवन में कई तरह का बदलाव होता बहनी, जे मन सबसे पहले आवत है बदलाव भावनात्मक बदलाव। भावनाओं में ऐसा फेर बदल हो जाता है, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: बदलाव हो जाता है। एक माँ जब बन जा कोई स्त्री एक जब माँ बन जाती है तो उनकी भावनाएं ऐसे बदल जाती हैं कि बच्चे की चिंता खुशी उनके प्रति जो भी जिम्मेदारी होता है सब कुछ हुए यह तरीके से अपने जीवन में ढाल लेती हैं। कहती ना कि हर चीज़ के तो सीखे सिखाए पड़ता है, मुना बच्चे का चिंता करब उनका देखभाल करब अपने आप आ जाता है।
1: अपने आप आ जाते बहनी। और माँ बने के देखा अनुभव जौन बा हर महिला के लिए अलग होते हैं। केहू के लिए ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत पड़ाव होते हैं तो केहू के लिए एकरे साथे कई चुनौती भी आवत है।
0: बिल्कुल बहनी।
1: तो देखा बच्चा पैदा होए के बाद घर में सिर्फ एक नया सदस्य नहीं आवत, एक नई दिनचर्या आवत है। जैसे अभी के कहूँ तो नई जिम्मेदारी आवत है, नई चिंता भी आवत है, और हाँ एक ऐसा मोहब्बत आवत है जेके शायद कोनो हिसाब ना हो।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ। वो सही बात है, हिसाब से परे है, मतलब कहा जाए सकत है कि आप केहू और से अगर नाराज होथिन तो आप दिखा सकथिन उनसे गुस्सा भी दिखा सकथिन, कहो सालों ना बात करो महीनों ना बात करो, लेकिन ये ऐसा रिश्ता होता है
1: कि
0: और
1: 2 मिनट ना बात करे तो दिल के चैन ना मिले।
0: हाँ चैन नहीं पड़ता। अच्छा ये दोनों तरफ से होता
1: दोनों
0: बहनी।
1: तरफ से
0: हाँ
1: होता। अब
0: आप
1: है देखा महतारी लड़कियन के अगर मारू देथिन
0: हाँ
1: तो थोड़ी देर में आए कि उन्हीं के आंचल में मुंह पोछ के रो वो करिए ओकरे बच्ची पक
0: हाँ
1: जाइए।
0: चिपक जाइए, मतलब देखो अगर यही आप केहू और के दुई बात सुनाए दे तो आपके 100 बातों सुनाई हैं और जिंदगी भर का द्वेष भी रख ले हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये
1: बिल्कुल
0: इतना प्यारा रिश्ता होता कि मन डांट भी होता फटकार भी होता
1: बिल्कुल।
0: स्नेह भी होता। मुना ये रिश्ता सबसे ही पवित्र कहा जाता है ना कि ऐसा रिश्ता है कि जेमन नफरत द्वेष और ईर्ष्या ये सब चीज जैसे हो बे नहीं कर, अगर माँ अपने

0: बच्चे के डांटत भी है ना, तो उनके पीछे बहुत बड़ा बच्चे का हित छुपा होता है।
1: बहुत बड़ा हित छुपा होता है। और देखा कुछ छोटी छोटी चीजें बदले थे, जैसे पहले आदमी सोचा था कि अपने लिए काऊ बने काऊ खा ली, ई मन कहा बे का बने ली, लेकिन माई बने के बाद आदमी सोचा था कि हमारे बच्चा के काऊ पसंद आए। कपड़ा ले जाते हैं तो पहले सोचा थे हमारे गदेला के ऊपर कौन कपड़ा निकला गया, हम अपने
0: हाँ
1: गदेला बिदल नहीं
0: बिल्कुल
1: ली। तो अपने में अपने के लिए सोचे से पहले वो अपने गदेलन के बारे में सोचा थी,
0: बिल्कुल सही कहती हूँ। मतलब उनके पसंद के आपन पसंद बना
1: आपन
0: लेते हैं,
1: पसंद बना
0: है ना,
1: ले
0: वो
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल भी फिर अपने पसंद नापसंद के भूल जाती ना, बच्चे की खुशी में ही आपन खुशी ढूंढने लगतीन। देखा एकरे साथ साथ रिश्तों में बदलाव भी आवत है बहुत, है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: वो क्या तरीके से सामंजस्य अन्य रिश्तों के साथ बनावत थीन कि जेहमन अपने बच्चे के लिए भी अपने आप के अच्छे तरीके से श्रेष्ठ दिखावत थीन, और वही तरह अन्य रिश्तों के जो होता बदलाव होता ओहमन भी बड़े खूबी ढंग से मतलब बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेतीन।
1: बिल्कुल। देखा एक चीज़ और देखी कि तू अगर परेशान बैठी हो घर में, किसी से भी थोड़ा बहस होएगी वह या कुछ भी होएगी वह, परेशान हो के बैठी हो तो देखा बिटुआ बिटिया जे भी हैं पास आए के बैठी हैं कि माई काहे उदास हो, मम्मी काहे उदास हो। वो जो पूछो बहुत है उतना ना, वो जैसे एक मरहम के जैसे काम करत है।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ, बस इतना सा पूछना ही मरहम के जैसे काम करत है। और देखा माँ जब बनत ही ना तो जिंदगी में शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक जोन चारों तरह से बदलाव होता ना, उमन शारीरिक देखा बदलाव तो बहुत होता जेकर जो है काफ़ी दिनों तक शरीर पे अगर बहनियर न ध्यान दें तो ओकर असर भी दिखे लगत
1: असर
0: है
1: भी
0: ना।
1: दिखे लगा तो
0: और
1: बिल्कुल
0: एहमन देखा बच्चों की जिम्मेदारी जब बढ़त है तो हम तो कही थे जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से बहनियर निभावें, मुना अपने शरीर का भी ध्यान
1: बिल्कुल। देखा
0: रखें।
1: आपन पहचान खोए के ना, आपन पहचान बनाए रख के।
0: बिल्कुल
1: देखा एक बहुत खूबसूरत बात है कि माँ बने के बाद महिला के पास एक नया रिश्ता जरूर आवत है, लेकिन ओकर पुरान सपना जो होते हैं वो खत्म ना होते हैं। अगर उन्हें गाना पसंद बा तो उन्हें गावे के चाहिए, अगर पढ़ा पसंद बा तो पढ़े के चाहिए, अगर वो नौकरी करे चाहते हैं तो नौकरी करे। बस ये है कि थोड़ा सा समय के उनका मतलब उपयोग करे पड़ी कि इतने समय में हमें ही करेगा बा, इतने समय में हमें ही करेगा, तो वो
0: हाँ
1: अपनी
0: हाँ
1: जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
0: कहे का मतलब आपका ये है कि मानसिक रूप से अपने आप के तैयार रखें कि
1: हाँ
0: हमें ये काम करे के है, ओकरे साथ बच्चे की जिम्मेदारी बढ़त है, जे मन देखे नींद भी जो है पूरी अच्छे से नहीं हो पाते हैं,
1: बिल्कुल
0: समय भी
1: बिल्कुल
0: बदल जाता है। कई बहनी जैसे वहीं बताओ कि नौकरी रहते हैं और परिवार के साथ संतुलन भी बनाओ बहुत जरूरी हो जाता है, काहे कि जब एक महिला पूर्ण रूप से बच्चे की ओर मुड़ जाती तो घर में और सदस्य जो रहती उनके लगत है कि हमार उपेक्षा हो रही बा, है
1: बिल्कुल।
0: ना,
1: लेकिन देखा यही समय रहा था कि जब एक दूसरे के समझ बहुत जरूरी हो
0: बहुत
1: जाते।
0: जरूरी हो जाता है। काहे से कि देखा ऐसा नहीं ना, बच्चन जब छोटे हैं तो वो हम ही लोगों के प्रति आश्रित हैं, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो कहे के मतलब कि बच्चे स्कूल जाए लगे भले बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी आदतें जब तक माँ कोई चीज़ कह के ना दे उनकर काम होत नहीं, है ना,
1: बिल्कुल
0: यहाँ तक कि अगर स्कूल जाए के है तो उनके उ दिन कौने विषय का कापी ले जाए के किताब ले जाए टाइम
1: बिल्कुल
0: टेबल के जो उन बने दिन समय सारणी ओके अनुसार बहनी हरे बनाए के उनके बस्ता में जब तक रख न दें तो पता चला एक थीनी गृह कार्य का कापी घरें छूट जाती।
1: घरन छूट जाते। तो यही नाते महतारी के तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो रहबे करे थे, लेकिन अगर परिवार के साथ भी वही में मिल जाए तो देखा महतारी के भी हल्का हो जाता है काम, है ना। जैसे पति है कबो पूछ लिए कि चलो तू थक गए हो आज बच्चे का हम संभाल लें, कबो दादा दादी हैं नाना नानी हैं वो सब अगर संभाल लिए तो एक सहयोग मिल जाता है महतारी के। वो तब अपने बारे में भी सोच सकते हैं, परिवार के बारे में भी सोच सकते हैं और अपन जीवन के आगे बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल गंगा, और जाना तू कि जब इस तरह से बच्चा पलत है इस माहौल में ना तो बच्चे में भी सामाजिक विकास बड़े अच्छे ढंग से हो जाता है, लोगन से तालमेल बिठा लेते हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: और देखो
1: बिल्कुल
0: बात कही तो इतनी अच्छी रही कि इस विषय पे कितना ज़्यादा चर्चा कैल कम नहीं
1: कम
0: लगते।
1: कम कम पड़े बात, मतलब कम न पड़े समय, कम बने
0: हाँ
1: पड़े जाए।
0: तो देखो अब बात कही के साथ साथ अपने पनघटे पर गीत गाना ये भी बहुत जरूरी बाटे,
1: बहुत
0: है ना।
1: जरूरी है तो चला सुना जाए। हेम श्रीवास्तव बहनी से कहरवा बहनी हरे।

0: गंगा बहनी,
1: हाँ बहनी,
0: ये बात तो सही है कि अकेले घर में मन नहीं लगते है ना। और चाहे
1: बिल्कुल
0: दोपहरिया तो और खलत है, बाकी और चाहे दिन हो चाहे रात, घर में सूनापन अच्छा नहीं लगते।
1: अच्छा राय लागत बिल्कुल। तो देखा कहो नहीं, इतनी नीक के सुन ली गए। अब अपने पनघटे पे बाई एक बातचीत, कैसा हो धात्री का आहार? डॉक्टर शिप्रा से नेहा गुप्ता बहनी बतिया नहीं, तो चला सुना जाए, बहनी हरे भी सुने।
2: बिल्कुल सखियो, माँ बनना

0: बड़े गर्व की बात होती है और एक महिला के लिए खुशी की अनुभूति होती है। और पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि चलो एक नन्हा सा मेहमान आएगा और घर में कुछ नई हलचल होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब ये खबर पता चलती है कि आपके घर में कोई बिटिया बहू कोई प्रेग्नेंट है, तो उसके खान पान का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर होने वाली माँ खाती है तो बच्चा बड़ा सेहतमंद और सुंदर होता है। क्या कुछ खाएं, ये थोड़ी असमंजस की स्थिति होती है ना। तो चलिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शिप्रा जुड़ चुकी हैं। आप आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: नमस्कार मैडम, धन्यवाद,
0: डॉक्टर
1: बहुत बहुत
0: शिप्रा
1: धन्यवाद आपको। जी
0: जी,
1: मैम,
0: डॉक्टर शिप्रा, जब आपके पास कोई गर्भवती महिला आती है, उसको पता चलता है कि हाँ भाई वो अब प्रेग्नेंट है, तो आप क्या कुछ सलाह देती हैं पहली तिमाही में?
1: जी, क्योंकि गर्भावस्था स्त्रियों के लिए एक विशेष, जैसा आपने बताया कि एक अवसर होता है और इसमें बहुत सारे शरीर के बदलाव होते हैं,
0: जी
1: तो चूंकि गर्भ को भी देखना है और गर्भवती को अपना भी ध्यान देना है, तो उस हिसाब से सबसे पहले जो भी भोजन हम बताते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर हो, क्योंकि गर्भ को भी न्यूट्रिशन मिले और गर्भिणी को भी मिले। क्योंकि
0: जी
1: फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में होता क्या है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं गर्भ को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन बीटा एचसीजी बढ़ा रहता है, उसके कारण गर्भिणी को मिचली आती है, उल्टी होती है,
0: जी
1: मॉर्निंग सिकनेस जो कॉमन टर्म होता है,
0: जी
1: तो ऐसे में उनको बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं लेना चाहिए। इस
0: जी
1: समय में स्पेशली हल्के भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बार बार लें, तो इससे क्या होगा कि पेट बहुत ज्यादा भरा नहीं रहेगा, तो वॉमिटिंग की टेंडेंसी कम होगी, और
0: जी
1: मॉर्निंग सिकनेस वाली जो स्थिति होती है, जो ज्यादातर गर्भिणियों को उठते के जो मिचली आती है,
0: जी
1: वैसे में उठते के साथ तरल पदार्थ ना लें, बहुत ज्यादा पानी ना पी लें, चाय खाली पेट ना पी लें, उठ
0: जी
1: के साथ थोड़ा फाइबर वाला डाइट लें, बिस्किट लें, ठीक है, और ग्लूकोज बिस्किट ले लें, तो उससे उनकी मॉर्निंग सिकनेस कम होती है। अब बात आती है कि तरल पदार्थ जो है शुरू में तो नहीं लेनी है, लेकिन दिन भर में हल्के भोजन लेना है,
0: जी
1: तो हल्के
0: जी
1: भोजन में क्या क्या हम दे सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो इसमें हम दलिया एडवाइज करते हैं, जो नमकीन या मीठी, जैसा मरीज जो गर्भिणी होती है उसको जैसा पसंद हो, और सूजी की खीर ले सकती है, फ्रूट जूस ले सकती हैं सुबह और शाम को अवॉइड करके, क्योंकि खांसी ना हो पाए, फ्रूट्स लेते हैं, खिचड़ी लें, सब्जियों का सूप लें, गुनगुना दूध, और अगर गर्मी का दिन है तो शरबत वगैरह जो नींबू शिकंजी बनाते हैं वो
0: जी
1: लें, और स्पेशली इस समय होता है कि गर्भ के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है,
0: जी
1: तो सब्जियां जो हैं या जो पदार्थ फॉलिक एसिड की अधिक मात्रा हो जिसमें, वैसा लेना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां लें, बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, ग्रेप्स, स्प्राउट्स,
0: खट्टे खट्टे फल जो है मैम,
1: हाँ खट्टे फल,
0: हाँ
1: खट्टे फल जो होते हैं उससे क्या होता है कि उसमें फॉलिक एसिड ज्यादा होती है, और फॉलिक
0: जी
1: एसिड जो होता है वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में काम आता है, तो
0: जी
1: इसलिए केला आप ले सकते हैं, तो ये सब हम उनको एडवाइस करते हैं, और
0: जी
1: साथ में चूंकि यूरिन की समस्या बढ़ जाती है ऐसे में, बार बार यूरिन होता है, तो ऐसे केस में प्रचुर मात्रा में पानी लेना चाहिए, बार
0: जी
1: बार पानी लेंगे तो शरीर में हाइड्रेशन बना रहेगा, और अगर उल्टी ज्यादा हो या पेट में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श ले, कोई भी अपने से मेडिसिन न ले,
0: अच्छा, ये
1: तो
0: तो
1: ये
0: बात आपने,
1: विशेषकर।
0: हाँ, फॉलिक एसिड की कही। क्या कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है इस समय?
1: हाँ, अभी अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि
0: जी
1: बॉडी अभी डाइजेस्ट करने के फेज में नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए शुरू शुरू में हम लोग नहीं कहते हैं, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम शुरू करते हैं, जो
0: अच्छा
1: द्वितीय तिमाही है जो
0: जी
1: 13 हफ्ते के बाद की होती है, तो
0: जी
1: उसमें स्पेशली गर्भ की वृद्धि होती है,
0: अच्छा, अब
1: तो उस
0: पहली
1: समय
0: तिमाही में किस तरह के चेकअप बहुत ज़रूरी हैं जो कि करवाने ही चाहिए, और ज़रूरी सिर्फ प्राथमिक हो, क्योंकि कई बार इतने टेस्ट हो जाते हैं कि जो गर्भिणी है उसके घर वाले इतने पैसे नहीं होते कि वो हजारों रुपए, हाँ, तो उस संबंध
1: नहीं,
0: में बताएं सखियों को।
1: जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो
0: जी
1: कहती हैं कि मेरा महीना नहीं आया, कई ऐसी महिलाएं होती हैं, तो उनको सबसे पहले हम उनके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, अंतिम महीना जब आता है, उस
0: जी
1: हिसाब से उनका काउंट करके हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है प्रेगनेंसी है,
0: जी
1: प्रेगनेंसी हो जाती है तो एटलीस्ट 2 महीना बीत जाए, तो सेकेंड मंथ के लास्ट में या हम थर्ड मंथ में उनको मिनिमम जो जांच है हीमोग्लोबिन की करानी चाहिए, और फास्टिंग ब्लड शुगर करा लेना चाहिए, और कुछ इन्फेक्शन की जांच जैसे HIV, HBsAg, क्योंकि ये डिजीजेज जो है अगर गर्भ होता है तो उनको भी प्रॉब्लम कर सकती है, एक
0: जी

0: इनका रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराते हैं और गर्भ की स्टेबिलिटी सही है या नहीं है, तो इसके लिए यूएसजी एक एडवाइस करते हैं इनिशियल में।
1: अच्छा मैम, एक कुछ ये भी बात सामने आई कि शायद बच्चा जब पहली तिमाही में ही गर्भ में है तो कोई एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे की जो मानसिक हालत है वो अच्छी है,
0: हाँ,
1: सुखद है।
0: यूएसजी जो होता है, जो अल्ट्रासाउंड एनटी स्कैन करके होता है
1: जी,
0: नकल ट्रांसलूसेंसी होती है वो, तो यूएसजी जब हम कहते हैं वो 11 वीक या 12 वीक के आसपास में जब हम डॉक्टर से अपना एडवाइस कराते हैं
1: जी,
0: तो उस समय ये करा लेते हैं तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट और ये सब पता चल जाता है इनिशियल में, इनिशियल स्टेज।
1: ये जरूरी होता है ताकि ये पता चले कि जो आने वाला शिशु है वो सेहतमंद है,
0: हाँ, ये तो
1: मानसिक
0: जरूरी
1: और
0: होता है ना,
1: शारीरिक दोनों रूप से। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा,
0: बिल्कुल।
1: अब दूसरी तिमाही जब आती है तो आपने कहा कि कैल्शियम और प्रोटीन की जो जरूरत होती है वो दूसरी तिमाही में ज्यादा होती है, तो
0: हाँ,
1: फिर
0: और
1: क्या
0: क्या
1: कुछ
0: होता है
1: खाया
0: कि
1: जाए? हाँ
0: होता क्या है कि जो 13 वीक से 28 वीक का समय है
1: जी,
0: ये स्पेशली गर्भ वृद्धि का होता है, तो इस समय प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होनी चाहिए, आयरन और कैल्शियम विशेषकर, क्योंकि जो भारत का एरिया है इंडिया में ये एनीमिया कॉमन होता है, महिलाएं जो होती हैं,
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: जी
0: महिलाएं जो होती हैं वो आयरन की कमी से जूझती रहती हैं, तो
1: हाँ
0: आयरन रिच डाइट होना चाहिए उनको तो।
1: हाँ
0: और इसके लिए गवर्नमेंट में बहुत सारे प्लान भी चलाए गए हैं एनीमिया को दूर करने के लिए, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं खाने के लिए,
1: जी
0: कैल्शियम की भी टैबलेट दी जाती है, और खाने के लिए जो है विशेषकर भोजन में दूध की मात्रा बढ़ा दें
1: जी
0: और पनीर, चीज, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले सकती हैं, मछली या मीट का सूप, ये सब चीजें तेल मसाला के साथ नहीं लेनी है, सादा ले सकते हैं, क्योंकि
1: जी
0: तेल मसाला कुछ भी कर लेंगे तो वो हार्ट बर्न करेगा, एसिडिटी कर देगा,
1: अच्छा
0: स्प्राउट्स। जी
1: हाँ मैम, ये जो बातें हैं जैसे कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहेंगे कि भाई अंडा, पनीर या सूप या बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट हमारी जेब अलाउ नहीं करती, वो इतना कमा नहीं
0: हाँ,
1: पाते, तो
0: कोई बात
1: फिर
0: नहीं,
1: कैसे कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन कैसी चीज खाई जाए कि वो पूरा भी हो जाए, आने वाला बच्चा भी सेहतमंद हो और
0: हरी
1: इंसान
0: सब्जियां
1: खरीद
0: लेंगे
1: पाए?
0: तो गांव में सभी लोगों के पास अवेलेबल होती है, पालक लें, आयरन रिच होता है, थोड़ा सा धूप का सेवन करें तो विटामिन डी और कैल्शियम का ऐसे अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। दूध तो अमूमन हर जगह ही अवेलेबल हो जाता है, तो दूध
1: जी
0: रेगुलर लें और जो गवर्नमेंट प्लान चल रही है उसके
1: जी
0: अनुरूप वहां से सहायता लें।
1: ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ से
0: हाँ,
1: गर्भवतियों को भोज्य पदार्थ मिल सकता है कुछ
0: भोज्य
1: खाने के लिए?
0: पदार्थ खाने पीने के लिए तो है ही, साथ में आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं।
1: जी, और ये भुना हुआ
0: हाँ
1: चना जो कि गांव के लोगों को अक्सर मिल जाता है, उनके घर अरेंज हो
0: हाँ
1: जाता है, तो गुड़ चना खाने से भी कोई बात
0: गुड़
1: बनेगी क्या?
0: चना एकदम सुबह सुबह गुड़ चना हम एडवाइस करते हैं जिनको स्पेशली इनकी कमी होती है, आयरन की कमी होती है, और खट्टी चीजें, लेमन, दाल में जो होता है
1: हाँ
0: लेमन
1: हाँ
0: गार लें थोड़ा
1: हाँ
0: सा,
1: हाँ नींबू
0: तो
1: जो है, हाँ
0: उस, हाँ, नींबू, नींबू,
1: हाँ
0: नींबू से जो है उनका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, दूसरी तिमाही में किस तरह के टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए?
0: दूसरी तिमाही में चूंकि ब्लड टेस्ट एक जरूरी होता है हर ट्राइमेस्टर में, तो हीमोग्लोबिन तो कराना ही है, और उसके अलावा एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराते हैं जिससे कि यूरिन में प्रोटीन वगैरह की कमी या पैरों में सूजन जो विशेषकर होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो
1: जी
0: ये पता चले कि गर्भिणी जो है किसी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रही है, इसलिए रूटीन माइक्रोस्कोपिक एक यूरिन का टेस्ट कराते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड होता है जो लेवल 2 होता है,
1: बिल्कुल
0: लेवल
1: जी
0: टू, हाँ, तो इससे भी गर्भ के अंग का विकास पता चल जाता है, पूरा हेड टू टो टेस्ट जो होता है ये इसमें हो जाता है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसमें पता चल जाता
1: जी
0: है।
1: अब जब तीसरी तिमाही, अब लगता है कि भाई वो समय आने वाला है जब कोई नन्हा मेहमान सच में फिजिकली हमारे साथ होगा, तो कैसे और ध्यान रखा जाए ताकि जो प्रसव है वो सामान्य हो?
0: देखिए, भोजन तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे थे वही लगभग लेना है,
1: हाँ
0: थोड़ा सा नींद की मात्रा बढ़ा देना है, क्योंकि गर्भ बढ़ता है तो रात का नींद डिस्टर्ब होता है, इसलिए दोपहर में 1 घंटा सोएं, वो ज्यादा जरूरी होता है, और खाने में तेल मसाले की चीजें बिल्कुल कम कर देनी है, क्योंकि हार्ट बर्न जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है वैसे वैसे ऊपर स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, तो हार्ट बर्न के चांसेस होते हैं, तो इस समय तकिए का सोते समय जो है ध्यान देना है कि तकिया लगाए प्रॉपर तरीके से, लेफ्ट करवट में, बाएं करवट में सोए,
1: जी
0: ठीक है।
1: जी
0: और एक जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो फीमेल को स्पेशली फील होने लगता है, जैसे उनको
1: हाँ
0: लगेगा कि हमको प्रसव पीड़ा होने लगी, तो
1: जी
0: उसमें भी 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक फॉल्स पेन होता है, एक ट्रू पेन होता है, ट्रू पेन तो लेबर पेन हो जाता है, लेकिन कभी कभी अपने से फॉल्स पेन

0: होता है जिसमें कि बेबी अगर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुआ है या कोई ऐसा भोजन कर लिए है जो गरिष्ठ है तो उसके कारण बेबी का मूवमेंट रुक जाता है तो थोड़ा सा फॉल्स पेन फील होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा पानी पिए, ग्लूकोज वाटर या शरबत ले लें और लेफ्ट करवट में लेते हैं। अगर इसके बाद उनका पेन सबसाइड कर जाता है तो ये फॉल्स पेन हो सकता है, और अगर इसके बाद भी ना सबसाइड करे तो चिकित्सक के परामर्श ले जाकर के दिखाएं।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभ्रा, आपने हमारी सखियों को, श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
2: देखा गंगा बहनी, कितने अच्छे से बताएं कि एक जो न स्त्री जो कि धात्री हुए तो न कह तरह का आहार लेके चाहिए, और हम तो कही था कि ये जो बताएं ना ये बात हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक ऐसे हुई कि हमारे धनिया काकी के बहुरिया भी धात्री हैं, है ना, तो वो जो है खाए में अगर कमी करी है तो आगे चल के उनके जो है दिक्कत हुई। ए तरीके से अगर ये सब जाए के बताओ तो उन्हों को लाभ मिली है ना।
3: बिल्कुल बनी, देखा अगर वो सुने हुई हैं तो एक अपने ऊपर लागू भी करी है तो डॉक्टर शिप्रा बहनी से नेहा बहनी कितना बढ़िया
2: फरियाए फरियाए के पूछी है ना। देखा जब बतकही इतनी नीक भय तो हमार मन करता टे कि अपनी बहनी हरन के और तो हो के है ना। हेम श्रीवास्तव बहनी का एक नीक नीक झूमर सुनाए दीन जाए,
3: नेकी और पूछ पूछ चलो सुना जाए।

0: गंगा बहनी,
1: हाँ बहनी,
0: इतना जब नीक नीक झूमर सुन लीन गुआ तो मन इतना प्रसन्न हो गुआ कि कस न आज अपने बहनी हरिन के अपने रसोई घर से कुछ मीठ मीठ वाली चीज बताई जाए, है ना।
1: अरे वाह, सही बात है। तो देखा आज अपने पनघटे के रसोईया में बा परवल की मिठाई।
0: अरे वाह,
1: है ना।
0: हाँ
1: तो देखा परवल के मिठाई के बनावे के बारे में हम बतावत है, बहनी हरिन सुने तो हूँ सुना,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो इमें पहले सामग्री लिख लें बहनी हरिन। परवल जौन बा 8-10 परवल ले लें, और चीनी 1 कप, मावा या खोआ 200 ग्राम,
0: अच्छा,
1: और इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, कटे हुए काजू बादाम, ठीक है, 2-3 बड़े चम्मच ले लें,
0: हाँ हाँ
1: और केसर थोड़ा सा ले लें, ये वैकल्पिक है, अगर बात तो ले लें, नाए बात तब कोनो बात
0: कौनो
1: ना है।
0: बात नहीं।
1: और साफ पानी के इस्तेमाल करिए, सब में धुल, जैसे परवल धुले एक बार या चाशनी बनावे एक बार, तो सब में साफ पानी के इस्तेमाल करे एक बार। अब देखा विधि हम बतावत है कि परवल छील के बीच से हल्का चीरा लगा लें, और बीज जोन बा ओकर निकाल दें, ठीक बा। अब पानी खूब उबाल लें, पानी उबाले के बाद उनमें परवल डाल दें, 5-7 मिनट तक हल्का नरम हो तक उबालें, हाँ,
0: हाँ।
1: फिर पानी निकाल दें ओकर। अब एक कढ़ाई में चीनी और लगभग 1/2 कप पानी डाल के एक तार के चाशनी बना लें,
0: अच्छा,
1: ठीक बा। अब परवल के चाशनी में डाल के धीमी आँच पे 8-10 मिनट पकाएं, फिर निकाल के ओकर ठंडा हो दें। दूसरी कढ़ाई में जो खोए रखे रहो ओका हल्का से भून ला, और एमा इलायची और कटा मेवा जोन रखे हो का मिलाए दा, ठीक बा। अब ठंडा परवल में खोआ के भरावन जोन बा रखे हो ओका भरी दा, ऊपर से पिस्ता बादाम जोन हो
0: मेवा
1: अगर,
0: जो भी
1: हाँ,
0: है।
1: थोड़ा सा केसर लगाए दें अगर केसर बात हो, बस परवल की मिठाई बन के तैयार, इतना फटाफट। और लेकिन
0: बिल्कुल
1: एक चीज और करें,
0: हाँ
1: मतलब परवल के बहुत ज्यादा ना उबालें, वरना मिठाई नरम होए के डर हो सकता है,
0: हाँ बहुत
1: हाँ,
0: ज्यादा मुलायम हो जाए पे फटे लगत
1: फट,
0: है,
1: हाँ,
0: टूटे
1: टूटे
0: लगत है।
1: लगत है।
0: हाँ
1: तो देखा कितना जल्दी एकर मिठाई बन के तैयार होते है, देखा मुंह में पानी आएगा,
0: बिल्कुल
1: बतावत
0: बहनी। और देखा
1: बता।
0: हम तो कहे थे अपने बहनी हरिन के हर घर में जो है दूध वगैरह रहा था, जल्दी से खोआ आउट लें ओका जल्दी से। और देखा
1: होता
0: परवल औरवल का सब्जी तो घर में हर जगह होते रहता है, और
1: हाँ,
0: हम तो कहे थे कि बड़े जल्दी तैयार भी हो
1: जल्दी
0: जाता।
1: भी। और देखा गदेलन परवल के सब्जी खाए में कतरा थे ना, कि हम परवल के परवल सब्जी बनी वह हम ना खाओ,
0: हाँ।
1: तो अगर ये तरीके से बनाए दी तो उन्हों को अच्छा लगे और स्वादिष्ट चीज मिलू
0: अब
1: जाए।
0: बिल्कुल सही कहते हो, रसोई घर में भोजन के बाद मीठा भी हो जाए ये बहाने, है ना।
1: बिल्कुल, अब मीठा होएगी तो मीठे के बाद फिर कुछ बढ़िया से गीत गवनी हो जाए। तो
0: बिल्कुल
1: देखा मिलन फिल्म से चला तो हमें सुनवाई दे, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बढ़िया से गीत।
0: सुनाओ बनी।

0: देखा गीत गौनाई तो बहुत अच्छी रही बहनी। और
1: बिल्कुल बहनी सत्या, देखा गीत गाओ नहीं होत रहा थे, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पनघटे पे होते है ना, और इतना बढ़िया लागत है, इतने रसोई घर से कितना बढ़िया बढ़िया मतलब वो आवत है, तो इतना मन खुश हो जाता है कि
0: हाँ।
1: पूछा जी।
0: और देखा गंगा, हम लोग जब यह तरीके बतकही करी था तो बड़ा ये सोच के अच्छा लगा था कि माँ बहनी भरे सुनत हुई हैं।
1: और सखियन के देखा मेल मिलाप भी हो जाते ये
0: हाँ बिल्कुल
1: बहाने।
0: सही कहती हो। और बहनी अरे सुनत हिन तो वो लोग चार लोगन से बतियात हिन ये सब विषय पे, तो हमार लोग का मनोबल बढ़ा था। मुना मनोबल और अच्छे से तब बढ़े जब बहनी अरे अपन विचार हम लोगन तक
1: पहुंचाई
0: भेजी है
1: हैं
0: ना,
1: बिल्कुल।
0: तो पहुँचावे के जो माध्यम है वो बहनी हरिन का संदेश जरूर सुनाई दिन जाए।
1: चलो सुनाई दिया जाए ईमेल संदेश।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800 49

0: 26250। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
1: बेसब्री से इंतजार रही।
2: गंगा बहनी,
0: हाँ बहनी,
2: देखा इंतजार तो रही है ना, और कहे से कि हर बहनी बहनी से अगर कुछ कहत है ना तो बड़ा नीक लागत हो। अब ऐसा बहनी अरे इतना प्रचलित है कि बहनी अरे बड़ा बतियात है ना।
0: देखा तारीफ सुके का ना है, अच्छा लागत, तारीफ भी अच्छा लागत है, अगर कुछ खराब लागत है तो मतलब
2: बता
0: दे तो हम सब का सुधार ले।
2: हाँ, और देखा गंगा अब जैसे कि समय होइन रहा बटे चले के, मुने ओकरे जात जात बहनी हरन से यही कहब कि इतनी समय बहनी हरे सजग रहे मच्छरन से, है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
2: कहे कि इतनी समय घर घर में कुछ न कुछ समस्या समझ में आ रही बाटे कि क्योंकि डेंगू हो रहा बात कुछ है ना।
0: बिल्कुल, तो सब अपन ध्यान रखें,
2: ध्यान रखें,
0: इशारा करत।
2: अरे

0: अब जैसे कि समय होइन रहा बटे चलै के मुने ओकरे जात जात बहनी हरन से यही कहब कि इतनी समय बहनी हरे सजग रहे मच्छरन से, है ना?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कहे कि इतनी समय घर घर में कुछ न कुछ समस्या समझ में आ रही बाटे कि क्यों के डेंगू हो रहा बात कुछ, है ना?
1: बिल्कुल, तो सब अपन ध्यान रखे,
0: ध्यान रखे,
1: घड़ी इशारा करत वा।
0: अरे घड़ी तो कहत युवा बहनी चले के लिए, मुना जब तुसे तो मिल जाई थे ना हम गंगा, तो हम समय भी भूल जाई थे। ऐसे जरूरी है घड़ी तक तो, घड़ी का काम है चलब और हमार काम है तुसे तो मिल के बतियाब, है ना?
1: बिल्कुल, हमसे और बहनी हरन से कितनी निक निक बात करे में अच्छा तो लगबे करत हाँ। है ना? फिर अब बहनी हरन से मिला जाए, अब ही चला उनसे राम राम किया जाए।
0: राम राम, राम, राम बहनी हरन।

बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम बनगट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: in Japan today. India won the final by 19 runs, chasing India's target of 212 runs. Pakistan managed to score only 196 for 6 in their stipulated 20 overs. Earlier, India posted 211 for 6 after opting to bat first. Opener Abhishek Sharma scored 61 of 28 balls, while Tilak Varma remained unbeaten on 51 of 22 balls. Shivam Dubey added 27 of 14 balls to take India past the 200-run mark. With this, India has secured its 81st Asian Games medal, including 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. In men's cricket, India were 3-for-1 in 2.3 overs against West Indies in the third and final ODI in Mulanpur, New Chandigarh, when reports last came in. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बना

0: जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफ़ी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
2: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो
1: जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और पब्लिक पर एट AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं।

0: यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
1: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं है पूछा था, हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSI कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSI है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरम जोनल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
2: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy, from there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई

0: खिलाड़ियों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टी20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम बीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंचमलाल यादव और साथी, शशिबाला जैन, मुकेश बेगाना और साथी के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए पंचमलाल यादव और साथी के गाए लोकगीत। इनके स्वर में सुनिए पचरा।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंचम लाल यादव और साथी के स्वर में ये गंगा गीत। लीजिए सुनिए शशि बाला जैन के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना शशिबाला जैन के स्वर में ये झूमर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में मुकेश बेगाना और साथी के स्वर में देवी गीत।

मुकेश बेगाना और साथी के गाए विकास गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सुनते रहिए विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सूरज कुशवाहा के गाए लोकगीत। तो सबसे पहले इनके स्वर में लीजिए सुनिए कहरवा।

0: 294 यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार साथियों, युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट उन्नति,
1: और मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या।
0: और आज फिर हम लेकर आए हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे आसपास हर दिन मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर नोटिस करना भूल जाते हैं।
1: उन्नति, आज हमारी लाइफ कितनी तेज हो गई है ना।
0: बिल्कुल,
1: सुबह आँख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन मैसेजेस, सोशल मीडिया, और फिर शुरू हो जाती है भागदौड़। किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस, किसी को परीक्षा की तैयारी करनी है, तो कोई अपने सपनों को नई दिशा देने की ओर लगा हुआ है।
0: बिल्कुल, आज की जिंदगी में चुनौतियां भी कम नहीं है। समय की कमी, लगातार तनाव बढ़ना, काम, पढ़ाई और मतलब इन पढ़ाई का दबाव, और सबसे बड़ी बात, हम कई बार इतना आगे देखने लगते हैं कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी खूबसूरत चीजों को देखना ही भूल जाते हैं।
1: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारी इस तेज रफ्तार में उन्नति, जिंदगी कुछ अलग ही खूबसूरत बातें हमें जो दिखाना चाहती है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे पास सीखने के इतने सारे साधन हैं जितने शायद पहले के लोगों के पास थे ही नहीं। दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी हम कुछ सेकेंड्स में ले सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, किसी नए विषय को समझ सकते हैं, किसी दूर बैठे व्यक्ति से जो हमारा अपना हो उससे बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो हमारे बीच आ चुकी है, हमारे समाज में आ चुकी है, इसने जो बहुत मीलों का फासला था हम लोगों के बीच में, वो कम कर दिया है।
0: बिल्कुल, और शायद आज की पीढ़ी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम सवाल पूछते हैं। हम ये भी पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी कैसी होनी चाहिए।
1: क्योंकि दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो सिर्फ इंसानों की दुनिया तो नहीं है।
0: बिल्कुल, हमारे आसपास पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकौड़े हैं, जानवर हैं, और इन सब का मिलकर बनाया हुआ एक पूरा संसार है।
1: हम सुबह उठते हैं तो शायद हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हमारे जीवन की कितनी सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हमारी सांसों से लेकर हमारे भोजन तक, पानी से लेकर मौसम तक, प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का आधार है।
0: बिल्कुल, और इसी प्रकृति की एक उसका एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है वन्य जीव। जंगल में घूमता हुआ बाघ, खुले आसमान में उड़ता हुआ बाज, पेड़ों के बीच छलांग लगाता हुआ बंदर, नदी में तैरता हुआ मगरमच्छ, या सुबह सुबह हमारे आसपास चहचहाती पक्षी, इन सब को देखकर शायद हमें सिर्फ खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस छिपा हुआ है।
1: ये बात तो तुमने बहुत सही बोला। हर जीव प्रकृति की कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि कहानी वैसी ही है जैसे पहले थी क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा हम

0: नहीं कह सकते, अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं, प्राकृतिक आवास बदल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्लास्टिक और कचरा वन्य जीवों के लिए खतरा बन रहा है और कई प्रजातियां आज अस्तित्व के संकट का सामना कर रही हैं।
1: तो क्या हम सिर्फ ये कहकर रुक जाएं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, या ये जंगल की समस्या हम क्यों देखें?
0: या फिर हमें ये समझना चाहिए कि जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा का जो टॉपिक है, ये सिर्फ जंगल पर नहीं निर्भर करता है, ये हम पर भी डिपेंड करता है कि
1: बिल्कुल
0: हम उन चीज़ों का, उन सोर्सेज का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको साथ में बचा कैसे सकते हैं।
1: वही तो, नेचर जो होता है वो सिर्फ हमसे नहीं बना है, हम इंसानों से नहीं बना है उन्नति, ये एक सर्कल है जिस सर्कल के चेन में हर प्रकृति से जुड़ा हुआ, हर जीव जुड़ा हुआ है, वो
0: बिल्कुल।
1: जीवित जीव हो या पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, यहाँ के जानवर हो, यहाँ की नदियाँ हों, पहाड़ हों, पेड़ पौधे हों, सभी इसी सर्कल में आते, सभी इसी चेन से जुड़े हैं। तो अगर सोचो, चेन की अगर एक कड़ी अगर टूटी तो पूरी चेन टूट जाएगी।
0: बिल्कुल। और इन सब का रिलेशन, इन सब का रिश्ता कहीं ना कहीं हम सब के साथ, हम इंसानों के साथ है, तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसी सवाल को लेकर आज युवाणी में हम बात करेंगे विश्व वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर।
1: जानेंगे कि वन्य जीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किन खतरों का सामना कर रहे हैं, और एक आम इंसान, खास एक युवा, खासकर एक युवा, उसके संरक्षण में आखिर क्या भूमिका निभा सकता है।
0: फिलहाल इसी खूबसूरत विचार के साथ चलते हैं एक गीत की ओर, गीत के बाद इसी पर आगे चर्चा करेंगे।

0: तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद अब हम वापस आ गए अपने चर्चा पर, और चर्चा थी वन्य जीव सप्ताह। तो उन्नति, धरती सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं मिली है हमें, ये उन सभी जीवों का घर है जिनके साथ हम इस दुनिया को साझा करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। और हम बात कर रहे थे विश्व वन्य जीव सप्ताह की। तो वन्य जीव सप्ताह, सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा सा औपचारिक लगता है, लेकिन इसके पीछे की बात बहुत सरल है। हमारे जंगलों और उनमें रहने वाले जीवों को समझना, उनके महत्व को पहचानना और उनके संरक्षण के लिए जागरूक होना।
0: क्योंकि जब हम वन्य जीव की बात करते हैं ना दोस्तों, तब बात सिर्फ बाघ, हाथी, हिरण या शेर की नहीं होती है। इसमें वो छोटे छोटे जीव भी शामिल हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, पक्षी, मेंढक, कीड़े मकोड़े। हर जीव किसी न किसी रूप में इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। जरा सोचिए, अगर किसी जंगल से अचानक एक महत्वपूर्ण प्रजाति गायब हो जाए तो क्या होगा?
1: प्रकृति का संतुलन प्रभावित हो सकता है। कोई प्रजाति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, किसी दूसरी प्रजाति का भोजन कम हो सकता है, और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है।
0: यानी प्रकृति में हर जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बना है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि कई वन्य जीवों का एंडेंजर्ड होना सिर्फ उस प्रजाति की समस्या नहीं है, ये उस पूरे प्राकृतिक तंत्र के लिए चिंता की बात है जिससे जिससे इंसान भी जुड़ा हुआ है।
0: अब सवाल ये आता है दोस्तों कि वन्य जीव के सामने आखिर इतना बड़ा खतरा है क्या?
1: सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवास का कम होना।
0: जंगल में सड़कें, निर्माण, शहरी विस्तार और अलग-अलग जगहों पे मानवीय गतिविधियों के कारण कई बार वन्य जीव के प्राकृतिक हैबिटेट को प्रभावित होना पड़ता है। जब उनका घर ही छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो इंसानों और वन्य जीव के बीच का जो संपर्क है वो कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल, और यही से मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार हम खबरों में सुनते हैं कि कोई जंगली जानवर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि जानवर यहाँ क्यों आया, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि उसके प्राकृतिक हैबिटेट में क्या बदलाव आया होगा।
0: इसके अलावा शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार कई बार प्रजातियों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, और ये खतरा भी है। किसी जानवर की खाल, दांत, सींग, हड्डियां या दूसरे अंगों की मांग के कारण अवैध शिकार होता है। ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी प्रजाति का अस्तित्व भी असर डालता है, इस चीज़ पर प्रभावित होता है।
1: बिल्कुल, और एक और बड़ी समस्या है प्लास्टिक और प्रदूषण। हमारे लिए सड़क किनारे फेंकी गई प्लास्टिक की बोतल या पॉलिथीन शायद एक छोटा सा कचरा हो, लेकिन किसी जानवर या पक्षी के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है।
0: कई बार जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं। समुद्री जीव प्लास्टिक के कचरे में फंसे जा सकते हैं। पक्षी और दूसरे छोटे जीव कचरे से प्रभावित हो सकते हैं।
1: इसीलिए जब हम कहते हैं कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, तो ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की भी एक छोटी सी शुरुआत है।
0: और अब बात करेंगे दोस्तों जंगलों की। हमारे लिए जंगल सिर्फ शायद पेड़ों का एक समूह है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ वो पेड़ों का समूह नहीं है, जंगल असंख्य जीवों का घर भी है। वे जल चक्र, मिट्टी, हवा और स्थानीय जलवायु से जुड़े हुए हैं।
1: इसीलिए जंगल बचाना मतलब सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, बल्कि पूरा जीवन तंत्र बचाना है।
0: और यहाँ जो युवाओं की भूमिका है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: आज हमारे पास सोशल मीडिया है, एक अच्छी जानकारी कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। हम वन्य जीव संरक्षण से जुड़े अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और विश्वसनीय संस्थानों की जानकारी को

0: आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोस्ट शेयर करना ही काफी नहीं है।
1: असल बदलाव हमारी रोजमर्रा की आदतों से आएगा। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कचरा खुले में नहीं फेंक सकते हैं, जंगल या किसी प्राकृतिक क्षेत्र में जाते समय वहाँ कचरा वापस ला सकते हैं, जानवरों को परेशान नहीं कर सकते हैं, वन्य जीवों को खाना खिलाने या उन्हें बहुत करीब जाकर फोटो लेने जैसी गतिविधियों से बच सकते हैं।
0: और सबसे ज़रूरी, अगर हमें किसी वन्य जीव से जुड़ी गलत गतिविधि दिखाई देती है तो खुद जोखिम लेने के बजाय संबंधित वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना देना चाहिए।
1: और एक बात और दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार पर्यटन नहीं है, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है। जब हम ऐसे किसी जगह घूमने जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं और कोई बिना पूछे अगर हमारे घर में आ जाता है तो हम डर जाते हैं, तो वैसे वो भी डरे होंगे। इंसानों से हर जीव को डर लगता है,
0: बिल्कुल
1: वो डर जाते हैं, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो डरें और हम पर अपना प्रहार करें या फिर हमें नुकसान पहुंचाएं। तो हम अगर उन्हें देखने भी जाते हैं तो सुरक्षित तरीके से जाएं, उनसे एक दूरी बनाकर रखें और उन्हें देखने के बाद वहां कचरा ना फैलाएं और चुपचाप अपने घर को वापस लौट आएं।
0: बिल्कुल। और आजकल जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी चलन बढ़ा हुआ है। ये प्रकृति को करीब से समझने का अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन जंगल घूमने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जंगल हमारे मनोरंजन की जगह बन जाए। जंगल में हमारी मौजूदगी जितनी कम हस्तक्षेप वाली होगी उतना ही बेहतर हो।
1: जानवरों के करीब जाने की कोशिश नहीं, तेज़ आवाज़ नहीं, उन्हें खाना खिलाना या उनके प्राकृतिक व्यवहार में दखल नहीं देना, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े मायने में काम आ सकती हैं।
0: और वन्य जीव संरक्षण की बात करते समय हमें सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि उन लोगों की भी बात करनी चाहिए जो जंगलों के आसपास रहते हैं।
1: कई ग्रामीण और स्थानीय समुदाय सीधे जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, इसलिए संरक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।
0: क्योंकि संरक्षण तभी लंबे समय तक सफल हो सकता है जब इंसान और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन बनाया जाए।
1: तो सवाल फिर वही है दोस्तों कि क्या आम युवा वन्य जीव को कैसे बचा सकता है, क्या कर सकता है उसके लिए?
0: शायद एक व्यक्ति अकेले पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक व्यक्ति अपनी आदत जरूर बदल सकता है
1: और एक बदली हुई आदत दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है,
0: फिर वो तीसरा व्यक्ति और धीरे धीरे एक छोटी सी सोच से बड़े बदलाव में वो बदल सकती है।
1: हम हर किसी को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि प्रकृति जो है वो हमारा अधिकार, उस पे हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति। वो प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है दोस्तों, जिससे हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, रहने को घर मिलता है, जमीन मिल रही है, सांस लेने को हवा मिल रही है, तो उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो एक माँ की तरह हमें सब कुछ दे रही है, तो माँ की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।
0: इसीलिए अगली बार जब आप किसी पक्षी को देखें, किसी पेड़ पर गिलहरी को दौड़ते देखें या किसी तितली को फूल पर बैठा देखें, तो कुछ सेकंड रुककर उसे देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, ये उस दुनिया की निशानी है जिसे हमने विरासत में पाया है और जिसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: हमारे आसपास मौजूद हर जीव इस खूबसूरत दुनिया की एक कहानी का हिस्सा है दोस्तों। बदलाव के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी शुरुआत सिर्फ इतनी सी होती है कि हम कचरा सही जगह पे डालें, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें, जंगलों में जिम्मेदारी से जाएं और दूसरों को भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएं।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति को बचाना किसी एक दिन का काम नहीं है बल्कि हर दिन की

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: दोस्तों, अब अगले सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण और जिसके वार्ताकार हैं आलोक शुक्ला। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
7: पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरण की सुरक्षा करना है। वृक्ष एवं वनस्पतियों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वृक्ष एवं वनस्पति मानव जीवन का आधार है, परंतु मानव आज इनके इस महत्व को न समझते हुए इनकी उपेक्षा कर रहा है। गौड़ लाभों को महत्व देते हुए लगातार इनका दोहन करता ही जा रहा है। जितने वृक्ष कटते हैं उतने ही वृक्ष लगने भी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है और इनकी संख्या लगातार घटती ही जा रही है। परिणाम स्वरूप अनेकों समस्याएं मनुष्य के सामने उपस्थित हो रही हैं। प्राणी अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर आश्रित है। मनुष्य हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वास द्वारा ग्रहण करके जीवित रहता है। पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह मनुष्य के जीवन का आधार पेड़ पौधे।

पौधे ही उसे प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणियों का आहार वनस्पति है, वनस्पति ही प्राणियों को पोषण प्रदान करती है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। वृक्ष वनस्पति से धरती हरी भरी बनी रहे तो उससे मनुष्य को अनेकों लाभ होते हैं। ईंधन वा इमारती लकड़ी से लेकर फल फूल, औषधियाँ, वायु शोधन, वर्षा का संतुलन, पत्तों से मिलने वाली खाद, धरती के कटाव का बचाव, बाढ़ रोकने आदि जैसी अनगिनत लाभ है। पिछले दिनों कल कारखानों की वृद्धि को ही विकास का आधार माना जाता रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए कृषि तथा सिंचाई पर जोर दिया जाता रहा है, परंतु वन संपदा की महत्ता को समझने की ओर जितना ध्यान देना आवश्यक था उतना दिया ही नहीं गया। वनों को जमीन घेरने वाला माना जाता रहा और इन्हें काट कर कृषि करने की बात सोची जाती रही है। वृक्षों को अंधाधुन काटा जाता रहा है और उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने की उपेक्षा बरती जाती रही। इसलिए आज हम वन संपदा की दृष्टि से निर्धन होते जा रहे हैं और उसके कितने ही परोक्ष दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष हानि के रूप में सामने देख रहे हैं। वन विनाश का अभिशाप जिन पांच प्रेतों की भयंकर विभीषिका बनाकर खड़ा कर देगा वे हैं बाढ़, सूखा, गर्मी, अकाल और अनगिनत बीमारियां। हम जाने अनजाने वन संपदा को नष्ट करते हैं और उससे जो पाते हैं उसकी तुलना में कहीं अधिक गंवाते हैं। वृक्षों की कमी को देखकर कवि का हृदय विह्वल होता है और कवि धरती से पूछता है, पत्तों के समान ही जिनमें पुष्प होते थे और पुष्पों के समान ही जिनमें प्रचुर फल लगते थे और फलों से लदे होने पर भी जो सरलता से चढ़ने योग्य होते थे, हे माता पृथ्वी, बतावे वृक्ष कहाँ हैं, बतावे वृक्ष कहाँ हैं। पर्यावरण मनुष्य के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, फिर चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। इस प्रकार मानव की पूरी जीवन शैली ही पर्यावरण के अनुरूप विकसित होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक संस्कृति पर्यावरण अनुकूलन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देती है। मनुष्य अपने पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों को संरक्षित करने के साथ ही उन्हें रीति रिवाज, परंपरा, उत्सव, मिथक आदि के माध्यम से जोड़कर जीवन शैली का अंग बना देती है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही महत्व दिया जा रहा है। सच तो यह है कि हमारी संपूर्ण जीवन पद्धति व दर्शन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जितना समृद्ध है उतना किसी अन्य देश का नहीं। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में पर्यावरण को देवतुल्य स्थान दिया गया है। यही कारण है कि पर्यावरण के सभी अंगों को जैसे जल, वायु, भूमि को देवताओं से जोड़ा गया है। हिंदू दर्शन में मूल इकाई जीव में मनुष्य में पंच तत्वों का समावेश माना गया है। मनुष्य पांच तत्वों जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है। यजुर्वेद में कहा गया है, वनानाम पतये नमः, वृक्षाणाम पतये नमः, औषधीनाम पतये नमः, अरण्यानाम पतये नमः। अर्थात राष्ट्र की तरफ से इसमें अरण्यों, वृक्षों, औषधियों के रक्षक नियुक्त करने और उन रक्षकों को उचित सम्मान देने का निर्देश दिया गया है। माँ जगदम्बा ने स्वयं कहा है, अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम् जगत शून्यम च शून्यम च। इसका अर्थ है, प्रकृति पुरुषमय विश्व मुझी में है, मैं हूँ शून्य अशून्य, मैं हूँ ब्रह्मस्वरूपिणी सर्वमयी, मुझको जो जाने वही मनुज है धन्य। भारतीय पौराणिक ग्रंथों, ज्योतिष ग्रंथों व आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार ग्रहों को नक्षत्रों को पौधों से संबंधित बताया गया है और यह बताया गया है कि उन पौधों के रोपण व पूजन करने से मानव का कल्याण होता है। आम लोगों को इन वृक्षों के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय व आयुर्वेदिक महत्व के बारे में पता होना चाहिए जिससे प्रकृति पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। भारतीय सनातन धर्म में वृक्षों से संबंधित कुछ ग्रह जैसे सूर्य, मंदार, चंद्र, पलाश, मंगल, खैर, बुध, लटजीरा, गुरु, पारस या पीपल, शुक्र, गुलर, शनि, समी, राहु केतु, धूप, चंदन।

0: आदि तरह से बताया गया है। भारतीय संस्कृति में जैव विविधता के भी संरक्षण का प्रावधान विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति में नागपंचमी, आंवला एकादशी, वट पूर्णिमा, तुलसी पूजन आदि त्यौहार इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भारत में पीपल के वृक्ष का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, अतः इस वृक्ष को काटने वाला पाप का भागी होता है। आज विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन पर्यावरण में मुक्त करता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस वैज्ञानिक तथ्य से पहले ही परिचित थे, तभी उन्होंने ऐसे विधान बनाए। नीम, महुआ, हल्दी, चंदन इत्यादि पौधों का भी औषधीय महत्व है, अतः इनका प्रयोग भी विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता है। प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधों को प्रत्येक व्यक्ति के आवास में अपरिहार्य माना गया है। तुलसी के पत्ते का प्रयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों के साथ साथ दैनिक जीवन में भी प्रयोग किया जाता रहा है। अरे, हिंदू संस्कृति में वृक्ष की तुलना मनुष्य के 10 पुत्रों से की गई है। 10 कूपा समवापी, 10 वापी समूहदा, 10 हदा समःपुत्रो, 10 पत्रा समुद्रुमः। अतएव हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज सभी लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण, और जो हमारे वार्ताकार थे वो थे आलोक शुक्ला, और प्रस्तुति थी अभिनव प्रज्ञा पांडे की। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले सैटरडे की थोड़ी सी वाइब सेट कर लेनी चाहिए और आपको सुनाना चाहिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।
2: Go home. I experience it too. I experience

0: जिस समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचती है, वही समाज वास्तव में आगे बढ़ता है।
1: दोस्तों, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, यानी कि प्रेरणा पुंज का।
0: आज के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका जीवन सादगी, विचार और समाज के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
1: 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रबान गांव में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा। बचपन में ही माता पिता को खो दिया, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा कभी कम नहीं हुई।
0: उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया और अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा।
1: दीनदयाल उपाध्याय का नाम अक्सर एकात्म मानववाद के विचार के साथ लिया जाता है। उनका मानना था कि विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं कर देना चाहिए, इंसान का जीवन, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी का संतुलित विकास इसके साथ जरूरी है।
0: और दोस्तों, अगर आज के युवाओं के संदर्भ में इसे देखें तो ये बात काफी प्रासंगिक लगती है। आज हम सफलता को अक्सर नौकरी, सैलरी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स या लाइफस्टाइल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या सफलता सिर्फ इतनी ही है?
1: क्या हमारे पास अच्छी नौकरी होने के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने की भावना भी है? क्या हमारे तरक्की के साथ हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है?
0: यही सोच हमें दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की ओर ले जाती है। उनका जोर समाज के उस व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने पर था जो सबसे पीछे छूट गया है। इसे अंत्योदय की भावना के रूप में समझा जाता है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। और अगर हम इसे आज की युवा पीढ़ी से जोड़े तो इसका मतलब बहुत ही सरल हो सकता है।
1: अगर हमारे पास कोई अच्छी स्किल है तो उससे किसी को सीखना चाहिए, किसी और को भी सिखाना चाहिए। हम खुद तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ दो चार लोगों तक इसे और बढ़ाना चाहिए। अगर हम किसी की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर हमारे पास किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर है, हमारे पास वो सारे संसाधन हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़े मंच या बड़े पर्दे की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बदलाव की शुरुआत हमारे आसपास से ही होती है। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन हमें एक और बात सिखाता है, सादगी और विचारों की ताकत।
1: उन्नति आज जब दुनिया हमें लगातार ये बताती है कि हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, हम उतने ही सफल होंगे। ऐसे समय में हमें ये समझना भी ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी होगा ये समझना कि व्यक्ति

0: व्यक्ति की असली पहचान सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं होती, उसकी पहचान उसके विचारों, उसके व्यवहार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से बनती है।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या, और यही बात युवाओं के लिए एक खूबसूरत संदेश बन सकती है। अपने सपने बड़े रखिए, आगे बढ़िए, सफलता हासिल कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों और अपने समाज से जुड़े रहिए,
0: क्योंकि तरक्की तब और खूबसूरत हो जाती है जब उसमें सिर्फ मैं नहीं हम शामिल हो जाता है।
1: बिल्कुल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने ज्ञान और अपनी क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कैसे कर सकते हैं।
0: आज हम जिस दौर में जी रहे हैं दोस्तों, वहाँ तकनीकी तेजी से बदल रहा है, करियर के नए नए विकल्प आ रहे हैं और दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है और नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। ऐसे समय में हमारे विचारों में मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी बनी रहे, ये भी इतनी जरूरी चीज है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज के प्रेरणापुंज से शायद हम अपने साथ एक छोटी सी बात लेकर जा सकते हैं।
0: और वो बात ये है कि सफल होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सफलता को किसी के जीवन में उम्मीद की वजह बना लेना ये ज़रूरी नहीं है। हमें उसको एक उम्मीद देनी चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, और यही हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सिखाता है। तो दोस्तों अब हमारा जो प्रोग्राम है वो अंतिम पड़ाव में आ गया है, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को एक म्यूजिकल यू टर्न दे देना चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। आप अपना रिव्यू हमें जरूर दें yuvvaniald@gmail.com और 8004926250 पर।
1: इसी के साथ मुझे यानी उन्नति
0: और मुझे यानी दिव्या को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026

0: किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने

0: पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आप सुनेंगे 6:50 पर। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे वर्तिका दुबे की वार्ता, स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां। शाम 7:31 पर डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता सुनवाई जाएगी, भारतीय ज्ञान में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर पंकज श्रीवास्तव के गाए गीत प्रसारित किए जाएंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रविवार से ये अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा 10:00। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर मुकेश पी मसीह से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत, फूलों की खेती में जेब्रेलिक अम्ल का महत्व। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर वी बी निघोसकर की वार्ता होगी, कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:30 पर, पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन दोपहर 12:15। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सचिन कुमार के गाए गीत प्रसारित होंगे सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर। लोकमाधुरी कार्यक्रम में शोभा लाल और साथी और शैल सिंह के गाए लोकगीत सुनिए सुबह 10:05 पर। वृषभान यादव और साथी, सुशीला देवी और सुभाष चंद्र यादव और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ दिन में 11:15 होगा। इसमें बच्चे सुनेंगे रूपक डाकिया डाकलाया, स्वर हेम श्रीवास्तव और शैल श्रीवास्तव का। 1:15 पर श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो अनुरोध कार्यक्रम में। इसे प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। बाल गोपाल कार्यक्रम शाम 5:00 होगा। इसमें बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता, बच्चों में कलात्मक अभिरुचि के विकास द्वारा व्यक्तित्व का संवर्धन। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 होगा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 ग्रामीण भाई सुनेंगे मनोज कुमार सिंह से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत, मिट्टी की जांच क्यों और कैसे। रात 8:00 श्रोताओं के पत्रों और संदेशों का उत्तर देंगी नेहा गुप्ता, चिट्ठी आई है कार्यक्रम में और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। आज इतवार है, इस कार्यक्रम में रात 8:30 सुनिएगा राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी, जादुई चिराग का डुप्लीकेट जिन और गजलों पर आधारित कहकशां का प्रसारण होगा रात 9:30। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। सत्ती धुरिया मीरापुर अतरसुईया प्रयागराज से सूचित करती हैं कि उनके पुत्र कृष्णा धुरिया दिनांक 21 फरवरी 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 22 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। तो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर है 6388740834। मोबाइल नंबर एक बार फिर से

लीजिए 6388740834। इसी क्रम में मुस्कान सोनी पत्नी सुजीत सोनी सूचित करती हैं कि मीरा सोनी दिनांक 7 जुलाई 2026 से शाम 7:39 से लापता हैं। इनकी आयु है 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9336291831। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9336291831। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सर्वकारः गोपालन आधारितं सम्पूर्ण पारिस्थितिकतन्त्रं विकसयन् अस्ति।

0: एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: राम राम पंच भैया। अरे हम हैं आपके राधा बहनी, और आज अपनी पंचायती में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करब एक महत्वपूर्ण विषय पे। कहे से न कि पंच भैया अपने जौन खेती किसानी के काम बा ओमा सबसे जरूरी है जौन पूरे खेती किसानी निर्भर रहत है वो है मौसम और पानी। तो किसान भैया सबसे महत्वपूर्ण जौन पानी है ओके जरूरत बाटे अपने सिंचाई में अपने खेतन में हम सभी अच्छा बीज कह ले अच्छी तैयारी कह ले अच्छा रासायनिक खाद डाल दे। लेकिन ओकरे साथे साथे अगर सिंचाई के समुचित व्यवस्था न हो पानी के तनिको कमी हो जाए तो हमार सभी के फसल पर असर पड़त है। तो भैया आज हम सभी बात करब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। कहे से ना कि भैया देखा अपने जौन सरकार यह है वो अपने किसान भैया लोगन के लिए तरह तरह के उनके किसानी के बढ़ावे के लिए तरह तरह की योजना लावत है। वही में एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भैया देखा जौन किसी हम आपका बताए ना कृषि सिंचाई योजना, तो उकर सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हर खेत के पानी मिले और सिंचाई के पानी का बेहतर इस्तेमाल होए। पंच भैया अरे आप अगर हमारा सुनत हुई हैं तो ये बात के गुण लें कि जितना हमार खेतन में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होए उतने इस्तेमाल करें पानी के बर्बादी के बचावे। काहे से कि यही हमार आने वाले कल के लिए बचत है। और जौन भी भैया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़त हुई हैं या जुड़े चाहत हुई उसे जुड़ जाएं, कृषि आपके आसपास जौन भी कृषि विभाग हो उसे जाकर के जुड़ जाएं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और इसे जुड़ करके लाभ लें अपन जौन भी खेती है उसका बेहतर बनावे। और इमा सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की बचत वाले सिंचाई के जौन तरीके हैं ओका अपनावे के कहा जाते हैं योजना के अंतर्गत, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई होता है जैसे कि पौधे के जड़ तक पहुंच जाए और हमार सभी के फसल भी अच्छी हो जाए, कम पानी में कम लागत में बेहतर फसल हम सभी का प्राप्त हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए। काहे से कि ना भैया देखा अपन फसल लहरात है ना तबे अपन घरे में अपने गांव में खुशहाली होते हैं। और जब भैया खुशहाली के बात होते तो अपने पंचायती में जब तक ढोल नगाड़ा ना बाजे कुछ नीक नहीं लागत है। तो आज अपने पंचायती में कमला प्रसाद पाल और संघातिन के गमना है विकास गीत। अब पंच बने हम सभी सुना जाए।
1: अरे किसनवा

0: तो पंच भैया देखा गवनाई सुना गवा, कमला प्रसाद पाल और संघातिन से विकास गीत। तो भैया आप सभी से आज हम एक और खास बात करब, वो है स्वच्छता ही सेवा। भैया देखा स्वच्छता खाली घर द्वार साफ करे के नाम नहीं, बल्कि अपने गांव और आसपास के वातावरण के साफ सुथरा रखे के भी जिम्मेदारी है। हम सब मिल के ये जिम्मेदारी निभाई तो हमार गांव और सुंदर और स्वस्थ बनी। तो भैया जब स्वच्छता के बात होते ना, तो आपने पंचायती में आज एक खास वार्ता है, वो है स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियाँ, और ये पर वार्ता किए हैं आज हम सब जिनका सुनब, वो है वर्तिका चौबे। तो वर्तिका चौबे जी से आवाज सुना जाए स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियाँ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आज आपके साथ भारत के इतिहास के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय पर चर्चा करने जा रही हूँ जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बुनियादी रूप से बदल दिया है। स्वच्छ भारत मिशन। सज्जनों, 2 अक्टूबर 2014 को जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मीकि बस्ती से स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की

थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सरकारी फाइलों से सिमट जाने वाली योजनाएं किस तरह एक दिन 140 करोड़ भारतीयों की साझी प्रतिज्ञा और जन आंदोलन बन जाएगी। बापू हमेशा कहा करते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसी अमर विचार को ध्येय वाक्य बनाकर शुरू किया गया यह मिशन केवल शौचालय बनाने या सड़कें साफ करने की कोई प्रशासनिक योजना भर नहीं थी। यह स्वाभिमान, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक पुनर्जागरण की एक अभूतपूर्व महाक्रांति थी। श्रोताओं, इस कहानी का सबसे भावुक और खूबसूरत मोड़ आया हमारे ग्रामीण भारत में। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में जब यह मिशन शुरू हुआ था, तब हमारे देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। हमारी ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषकर हमारी माएं, बहनें और बेटियां, हर रोज भोर होने से पहले या रात के अंधेरे का इंतजार करने को विवश थीं। यह केवल सफाई या बुनियादी ढांचे का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा, उनकी सेहत, निजता और उनके स्वाभिमान का सीधा सवाल था। और फिर शुरू हुआ एक मौन सामाजिक परिवर्तन। गांव गांव में ईंटें जुड़ने लगी, राजमिस्त्री दिन रात कार्य करने लगे और देखते ही देखते 11.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनकर तैयार हो गए। लोगों ने इन्हें केवल टॉयलेट या शौचालय नहीं कहा, बल्कि श्रद्धा और सम्मान से नाम दिया इज्जत घर। जब किसी भौतिक निर्माण से इज्जत का भाव जुड़ जाता है, तो वह केवल एक ढांचा नहीं रहता, वह परिवार के गौरव और नारी सम्मान का प्रतीक बन जाता है। इस जन भागीदारी का ऐतिहासिक परिणाम था कि 2 अक्टूबर 2019 को बापू की 150वीं जयंती पर भारत ने दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खुद को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया। आज हम स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां देश के 5.8 लाख से अधिक गांव ODF प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि जब हम केवल खुले में शौच से मुक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि गांव में ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, जैविक कचरे का निस्तारण और गंदे पानी का उपचार भी पूरी निष्ठा से किया जा रहा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी केवल शौचालय के आंकड़े तक सीमित नहीं, इसका असली जादू तो तब दिखा जब देश में बीमारियों का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर के हालिया शोध बताते हैं कि स्वच्छता अपनाने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से भारत में हर साल डायरिया, हैजा और कुपोषण जैसे घातक बीमारियों से लगभग 3 लाख मासूम बच्चों की आजकल मृत्यु को रोका जा सका है। यूनिसेफ अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता एवं सुरक्षित सैनिटेशन व्यवस्था अपनाने के कारण ग्रामीण भारत के प्रत्येक गरीब परिवार को बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च में कमी से सालाना औसतन 50,000 की सीधी बचत हो रही। जो पैसे पहले डॉक्टर, दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर में खर्च हो जाते थे, वे अब बच्चों की बेहतर परवरिश, पोषण और शिक्षा में लग रहे हैं। यानी स्वच्छता ने केवल सेहत नहीं सुधारी, बल्कि हमारे ग्रामीण अर्थशास्त्र को भी नई मजबूती दी है। और जरा अपने बेटियों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचिए। जब सरकारी और निजी विद्यालयों में बालिकाओं ने पृथक और स्वच्छ शौचालय पाया, अर्थात निर्माण हुआ, तो जो बेटियां केवल झिझक और असुविधा के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ देती, उनके ड्रॉप आउट रेट में अभूतपूर्व कमी आई। आज हमारी बेटियां बिना किसी संकोच के नियमित स्कूल जा रही और देश के विकास में अपना योगदान दे रही। अब यदि हम अपने शहरों की ओर रुख करें, तो वहाँ स्वच्छता ने एक नया मोड़ लिया, प्रतिस्पर्धा आधुनिक तकनीकी और नवाचार का। शहरी भारत में 63 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 6 लाख से ज्यादा आधुनिक सामुदायिक व सार्वजनिक स्वच्छता परिसर निर्मित किए गए। शहरों के बीच सफाई और सौंदर्य को लेकर एक स्वास्थ्य होड़ शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता मूल्यांकन अभियान बन चुका है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि नगर निगम प्रशासन और जनता एक हो जाएं, तो स्वच्छता में लगातार शीर्ष पर बना रहना संभव है। आज का भारत केवल गंदगी साफ नहीं कर रहा, बल्कि कचरे

0: तरह से कंचन यानी सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट के सिद्धांत पर काम कर रहा। गोबरधन योजना के माध्यम से पशुओं से गोबर और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस और सीबीजी बनाई जा रही। शहरों में शिविर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मानवीय जोखिम को समाप्त करने के लिए रोबोटिक्स और मशीनीकरण का उपयोग किया जा रहा। यहाँ तक कि रिसाइकल किए गए प्लास्टिक कचरों का प्रयोग आज देश के हजारों किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से हो रही है। लेकिन श्रोताओं, इस पूरे जन आंदोलन का सबसे बड़ा नायक कौन है? कोई सरकार, कोई नीति या कोई नेता? नहीं, इसके असली नायक हैं आप और हम, इस देश के 140 करोड़ नागरिक। सबसे बड़ा और अस्थायी बदलाव आया है हमारी मानसिकता में, हमारे दैनिक व्यवहार में। जब घर का एक छोटा बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़कर टोकता है, दादाजी टॉफी का छिलका सड़क पर मत फेंकिए, इसे डस्टबिन में डालिए, तो समझ लीजिए कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति पूर्णतः सफल हो चुकी है। जब गांव-गांव की महिलाएं, समितियों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं ने स्वच्छता रैलियां निकाली और जब हमारे सफाई कर्मचारी को समाज में स्वच्छग्राही और स्वच्छता योद्धा कहकर सम्मान दिया, तब जाकर सोच की दीवारें ढही हैं। आज जब हम बीते एक दशक के इस अभूतपूर्व सफल को देखते हैं तो गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। अब हमें इस स्वच्छता को एक अस्थायी संस्कार बनाना है। हमें क्लीन इंडिया से आगे बढ़कर ग्रीन इंडिया और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। सज्जनों, स्वच्छता कोई एक दिन का उत्सव या केवल सरकारी अभियान नहीं, यह तो हमारी प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। आइए आकाशवाणी के इस पवित्र मंच से आज हम पुनः यह सामूहिक संकल्प लें, न गंदगी करेंगे, न किसी को करने देंगे, स्वच्छ भारत तभी स्वस्थ रहेगा भारत और तभी समृद्ध व विकसित बनेगा हमारा भारत। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो पंच भैया, हम सभी सुने वर्तिका चौबे बहिनी से स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियाँ। कहे का मतलब इतना बाटे भैया कि लोगन में स्वच्छता बनावे की भावना मजबूत हो गई है, स्वच्छता के प्रति हम सब जागरूक हो गए हैं, बढ़त हैं। तो भैया देखा, आप घड़ी की सुई कहत है पंच भैया हरे से विदा लेके, और उनके से विदा लेके पहले हम आप सबसे यही कहा कि पंचायत घर कार्यक्रम आप सबे के हैं। अपन सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर पर दे दें, 800-4926-250। इन नंबर पर आप अपन सुझाव और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो पंच भैया, आप सबसे विदा लेके समय हो गया है। पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो जय हिंद। अभिषेक भैया।
1: हाँ पुनीता भाई।
0: हम पन जोन खेती किसानी के लिए काम से जुड़े हैं, तो हमारी आय के यहाँ बढ़ावे में है। हम जो पशु होते हैं अपन, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हैं, या यूं कही कि बहुत महत्वपूर्ण आधार होते हैं।
1: बिल्कुल पुनीता बहिनी, जो नराहा गोरु होते हैं मार, वे खाली जानवर ना होते हैं, वे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, द्वारे के मुखिया होते हैं, उनकी पूरी तरह से देख रेख करके हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल भैया। तो ये जो न अपन पशु होते ना, इन्हों के यहाँ हमारे सब कितना तमाम तन की बीमारी घेर लेती हैं, और उमा कुछ संक्रामक बीमारी होती है और कुछ गंभीर बीमारी हो जाती हैं। अगर इनका समय रहते इलाज ना करावा जाए तो बड़ी परेशानी में यहाँ पड़ जावा जाते
1: बिल्कुल बहनी, इलाज तो देखो जब अगर भी बीमार पड़ते हैं तो होते हैं, मोला उससे पहले अगर हम टीकाकरण उनका करा ले तो वह बीमारी उनके होते न है और पहले उनका निवारण हो सकत है। जैसे हमरे सब हराहा गुरुन पर टीकाकरण जरूरी है, वह तना हमरे किसानन पर जरूरी है कि वे समय समय पर उनका खबरें मिल जाए तो उनके लिए बहुत उपयोगी होती है।
0: तो भैया सुना जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज को अब बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए खेती के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के प्रगतिशील किसानों ने किसान मेले में हिस्सा लिया। किसानों को बदलती बाजार जरूरतों और उपज को बड़े खरीदारों तक पहुंचाने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO के माध्यम से उपज एकत्र करने और उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर बाजार तक पहुंच बनाने पर जोर दिया। साथ ही बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्र की सामूहिक खरीद से लागत कम करने तथा सामूहिक बिक्री से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के उपाय बताए गए। किसानों को ऑनलाइन बाजार के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाने, डिजिटल भुगतान और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। इससे किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
0: अभिषेक भैया।
1: हाँ बहनी।
0: भैया देखो, अभी हम पंच बात करित रहे पशु वगैरह टीकाकरण के बारे में यहाँ। तो जहाँ संक्रामक बीमारी के यहाँ, कुछ गंभीर बीमारी के यहाँ हमारा टीकाकरण राकत है, उसके अलावा अपने पशुओं में यहाँ कुछ परजीवी के समस्या हो जाते, उनका प्रबंधन कैसे किन जाए, यह विषय में यहाँ सुन ले आज की बातें के अंतर्गत भेंट वार्ता पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनका प्रबंधन डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी से।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पशुओं में प्रमुख परजीवी कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक नियोजन डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पशुओं के प्रमुख परजीवी कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन।
4: सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार करता हूँ। परजीवी सामान्यतः वह जीव है जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास करते हैं। ये विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं, जैसे शरीर के बाहर चमड़ी पे या उस पशु के बाल पे, और शरीर के अंदर आंत में, फेफड़े में और लीवर में ये पैरासाइट या परजीवी पाए जा सकते हैं। और इनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं या नुकसान जो होता है वो जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर भी निर्भर करता है। मानिए कि अगर ये चमड़ी पे हैं तो चमड़ी के गुणवत्ता को खराब करेंगे, चमड़े पे खुजली या बाल गिरने का प्रकोप शुरू हो जाएगा और अंत में तरह तरह के बीमारियों के आमंत्रण देते हैं ये।
3: यानी ये चाहे अंतः परजीवी हो या बाह्य परजीवी, ये बीमारियों के वाहक भी हैं।
4: खास तौर पर बाह्य परजीवी, जैसे कि हम किलनी बोलते हैं, वो पशुओं के बाह्य परजीवी के मुख्य बाह्य परजीवी है। उसका अपना अलग नुकसान है, जैसे सर्वप्रथम ये पशुओं का खून चूसता है, खून चूसने के वजह से पशुओं में एनीमिया होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान जो ये करता है, ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों का वाहक होता है। ऐसे बीमारियाँ जिन्हें हम प्रोटोजोअल बीमारियाँ कहते हैं, उस बीमारी में थिलेरियोसिस जैसा बीमारी होता है और बाबेसियोसिस जैसा बीमारी प्रमुख होता है। बाबेसियोसिस रोग इतना खतरनाक है कि खास तौर पर संकर नस्ल के पशु को अगर बाबेसियोसिस बीमारी का प्रकोप हो जाए तो पशु का सामान्य भाषा में खून फटने लगता है और पशु घातक अवस्था में पहुंच जाता है और अंत में मर भी जाता है।

0: सब जैसे आपने किलनी का नाम लिया, इसके अलावा मक्खी और मच्छर भी हैं?
1: निश्चित तौर पे मक्खी दो प्रकार की श्रेणियों में है। पहला एक टमानास करके एक बड़ी मक्खी होती है, उसका जो मुख काटने वाला पार्ट होता है वो चाकू की तरह से होता है। खास तौर पे ये भैंस को बहुत ज़्यादा अटैक करता है, और ऐसा देखते हैं कि अटैक करने के बाद कई बार भैंस के चमड़े से हल्का रक्त स्राव भी हो जाता है
0: जी।
1: घाव के अलावा बहुत एक खतरनाक बीमारी होती है पशुओं में सर्रा, उस बीमारी का ये वाहक होता है। और कहा जाता है कि अगर टवानास न काटे या वो बड़ी मक्खी न काटे तो पशुओं को सर्रा बीमारी नहीं होगा।
0: डॉक्टर साहब, अंतः परजीवियों की बात करें तो अंतः परजीवियों को भी कई श्रेणियों में बांट सकते हैं?
1: अंतः परजीवी सामान्यतः पशुओं के आंत में, पशुओं के फेफड़े में भी पाए जाते हैं, और कई विशेष परजीवी होते हैं जो पशुओं के लीवर में भी पाए जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कुछ जानवर जो चराई पर रहते हैं तो उनमें भी कभी कभी लीवर फ्लू की समस्या आती है?
1: लीवर फ्लू जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आमतौर पे चरने वाले पशुओं को ये बीमारी होता है। उसका कारण यह है कि इसके जो वाहक होते हैं, एक विशेष प्रकार का सीप कह सकते हैं, घोंघा जैसा सीप होता है,
0: छोटी वाली
1: सीप जो होती है वो इसका वाहक होती है, और इसके छोटे स्वरूप सीप के माध्यम से पशुओं के मुख द्वार से होते हुए लीवर तक पहुँचते हैं, और लीवर पर पहुँचने के दौरान और लीवर में ये बहुत ही गंभीर क्षति पहुँचाते हैं, जिससे पशु का पाचन के साथ साथ न्यूट्रिशन का लेवल भी खराब हो जाता है, और उसको उसका पाचन सही नहीं होने के वजह से न उसमें उत्पादन की क्षमता बची रहती है, न कोई कार्य करने की शक्ति रहती है। धीरे धीरे पशु मरणासन को प्राप्त हो जाता है अगर समय से उसकी समुचित दवाई न की गई हो।
0: डॉक्टर साहब, जो गाभिन या गर्भित जानवर हैं उनमें इन परजीवियों का प्रबंधन कुछ विशेष होगा?
1: कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो गाभिन पशु हैं उनको दिया जाता है खास तौर पे, और ये दवाइयाँ आमतौर पे अपने पशु चिकित्साविद से सलाह लेने के उपरांत ही दें, क्योंकि पशु चिकित्साविद गाभिन पशु की अवस्था के आधार पर दवाइयों का चयन करके आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपके लिए रिकमेंड करेगा।
0: जैसे
1: आमतौर पे सबसे सुरक्षित दवाई जो मानी जाती है फेनबेंडाजॉल नाम की जो दवाई होती है, खास तौर पे जो गोल कृमि होते हैं इसके लिए दवाई होती है। लेकिन मेरा आप लोगों को, किसान भाइयों बहनों को गंभीर सलाह है कि कोई भी कीड़ी की दवा आप बिना पशु चिकित्साविद या उचित व्यक्ति के परामर्श के बिना न दें, क्योंकि आने वाले समय में ये गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकती है, और इसका डोज का गुणा या डोज का कैलकुलेशन बहुत विशिष्ट होता है।
0: यानी वजन के हिसाब से जानवर के,
1: वजन के हिसाब से जानवर के और उसके अवस्था के हिसाब से।
0: डॉक्टर साहब, जो बछड़े हैं या पड़िया हैं उनमें भी इन परजीवियों के प्रबंधन के लिए कुछ खास दवा देनी पड़ेगी?
1: खास तौर पे देखा गया है कि जो भैंस के पड़िया या पड़वा होते हैं और या गाय के अल्प दिनों के नवजात बछड़े होते हैं या बछिया होती है, इसमें एस्केरियसिस का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसे गोल कृमि बोलते हैं। ये बहुत आम बीमारी है, इसके लिए भी दवाई उपलब्ध है, दवा इसको समुचित रूप से देना चाहिए। इसमें एक विशिष्ट बात और बता दें, कई बार ऐसा देखा गया है या ऐसा पाया जाता है कि अगर गाभिन की दशा में पशुओं को या कीड़ी की दवा प्रॉपर तरीके से दिया जाता है तो जो गोल कृमि है उनके बच्चों में आने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन अगर बिना कीड़ी की दवा दिए गाभिन पशु से कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी डॉक्टर से परामर्श करके जन्म के 10-15 दिन के अंदर कीड़ी की दवा दी जा सकती है।
0: डॉक्टर साहब, जो पशुओं के प्रमुख परजीवी हैं उनके प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं जो पशुपालक भाई बहन रोज की जिंदगी में अपनाएं?
1: सबसे पहली बात है कि पशुओं को स्वच्छ और ताज़ा जल पिलाएं, एक बात। दूसरी बात, जब पशु चरने जाता है तो ऐसे फील्ड में न भेजें, ऐसे घास वाले इलाके में न भेजें जहां शीघ्र ही बाढ़ का प्रकोप या पानी का जमा हुआ है और पानी खत्म हुआ है। तीसरा चीज कि राशन जहां से भी खरीदें या तो स्वयं बनाएं या बना बनाए रेडीमेड विश्वसनीय कंपनियों से खरीद के ही उसको खिलाएं। तीसरी बात यह है कि कुछ दवाइयाँ पशुओं की ऐसी होती हैं कीड़े की खास तौर की, कि एक बार इंजेक्शन के फार्म में ले लेने से 1-2 महीने 2.5 महीने तक का भी लाभ हो सकता है और कीड़े के प्रकोप से बचे रहते हैं।
0: जो सामान्य जानवर हैं उनको कितने दिन के अंतराल पर अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी की दवा देनी चाहिए?
1: सामान्यतः 3-4 महीने के अंतराल पर पशुओं को दवाई देना चाहिए, लेकिन अगर पशु चरने वाला है तो थोड़ा अवधि 15 दिन कम हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क

0: आना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 94153-84454 94153-84454 94153-84454।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का, पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनके प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
1: दो प्रमुख सावधानियां मैं आपको

0: इसे पानी न पिए, दूसरा उनका शरीर साफ करके और सुखा लीजिए, और तीसरा आपके बाड़े में अगर 5 पशु हैं तो 5ों को एक साथ एक्टोपैरासाइट एंड बाह्य परजीवी विनाशक ट्रीटमेंट दें।
1: डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं के प्रमुख परजीवी कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी जानकारी की बातें हुई गयी, अब चलो पंचन के सुनाई दिन जाए एक लोकगीत जौन है नकटा।

0: पुनीता बेनी, अब बारी है अपने बीज के किसान की बात सुने के। कहते ने जब नई नई तकनीकन का इस्तेमाल कई के उई कोनो मुकाम पर पहुँचते हैं तो अपने बीच में आए के और किसानन का जागरूक करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वह नई नई तकनीकें अपनाएं।
1: अभिषेक भैया, जो तुम नई नई तकनीक के बारे में यहाँ बात कर रहे हो ना, तो अगर कुछ समय पहले तक यह बात कही जाते कि बिना माटी के फसलें उगाई जा सकती हैं, तो भैया कत्ता ताजुब लगते और कोई मान नहीं सकत रहा है। मुला देखो, अपने विज्ञान के लिए खोज में यहाँ यूँ संभव हो सका है कि अब बिना माटी के भी कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनसे फसलें उगाई जा सकती हैं, जिनका कहते हैं हाइड्रोपोनिक खेती। और ईमा होते कि जो पौधे के लिए जड़ें होती हैं वो सीधे पानी में यहाँ डाल दी जाती हैं और वो पानी से नहीं पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करते हैं। तो भैया आओ सुना जाए हाइड्रोपोनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन। और भैया आज के किसान हैं हरिश्चंद चौरसिया भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, आज के किसान क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं अयोध्या जनपद के हरिंटीनगंज ब्लॉक के बसावर खुर्द गांव, जहां सब्जी उत्पादन से जुड़े हरिश्चंद्र चौरसिया भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। हरिश्चंद्र भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: हरिश्चंद्र भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और वो भी मौसम के पहले और मौसम के बाद, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ा हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब, कम से कम मान के चलिए कि 45-46 साल उम्र हमारी हो गई है
2: जी।
3: 35-80 साल हो गया, हम शुरू से लास्ट तक आज तक मैंने खेती किया है।
2: और पढ़ाई?
3: पढ़ाई हम कक्षा 9 में फेल हो गए थे, कक्षा 8 तक हमारी फुल पढ़ाई हुई है
2: और उसके बाद खेती से जुड़ गए
3: जी। आप
2: ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारे पास सर जी मान के चलिए कि 9 बीघा 22 एकड़ है हमारे पास मौके पर।
2: एकड़ में 2 एकड़?
3: दो, हाँ 2 एकड़, 20 बिसवा है सर।
2: कौन कौन सी सब्जियां इस समय आपके खेत में हैं?
3: हमारे खेत में सर जी मान के चलिए कि 1.5 एकड़ हमारे पास तो ये गोभी लगी है, बंधा और फूल गोभी
2: जी।
3: और 20 में 20 टमाटर लगा है, बाकी केला है, प्याज लगी हुई है। ऐसे ऐसे मिला करके हम सब पूरा अपना खेत पैक किए हैं।
2: आप हाइड्रोपोनिक्स में भी सब्जी उत्पादन करते हैं?
3: जी हाँ, को डॉक्टर साहब ये 3 साल हो गया हाइड्रोपोनिक चलाते।
2: तो इसकी शुरुआत कब से हुई?
3: 3 साल हो गया सर।
2: लेकिन कहीं से प्रेरणा मिली होगी आपको?
3: जी हाँ, प्रेरणा हमको नाबार्ड ने दिया है।
2: तो कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक से?
3: अब वो इसमें हम स्ट्रॉबेरी भी किए हैं, 2 साल हो गया। उसके बाद लाल पीली शिमला मिर्च, उसके बाद में धनिया और पालक, और जो चाहता हूँ उसको उसमें लगा करके बिना मिट्टी की खेती है मैं पैदा कर रहे हैं।
2: ये बताएं कि इस समय जो गोभी वर्गी सब्जियां खेत में हैं, उनकी रोपाई कब की?
3: रोपाई ये मान के चलिए कि 2 महीना हो गया है।
2: यानी आपने अगस्त में रोपाई कर दी थी?
3: हाँ सर जी।
2: नर्सरी आपने जुलाई में डाला होगा?
3: हाँ, जुलाई में मैंने छोड़ दिया था।
2: तो अभी बाजार जाना शुरू हुआ कि नहीं?
3: बाजार जा रहा है।
2: यानी भाव आपको अच्छा मिल रहा है गोभी वर्गी सब्जियों का?
3: गोभी का रेट शायद 50 रुपए किलो जा रहा है।
2: और अभी केवल फूल गोभी है कि पत्ता गोभी तैयार हो गई?
3: नहीं, मौके पर हमारे पास सिर्फ फूल गोभी तैयार है।
2: अब पत्ता गोभी में क्या दे रही है?
3: पत्ता गोभी में अभी 1 महीना वो लेगा।
2: कौन कौन सी बारीकी करते हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी तैयार करने में?
3: बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कीटाणु इसमें लगते हैं, गदहले, गदहले से आप बता ले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है।
2: कोई खास वैरायटी लगाते हैं?
3: हाँ, वैरायटी वो जक्स का लगाते हैं।
2: आप अरबी उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं, तो इस साल कैसा रहा अरबी उत्पादन?
3: इस वक्त बढ़िया रहा, नंबर 1 का डॉक्टर साहब।
2: कब बुआई आपने किया था?

0: भाई हम नवंबर में किए थे
1: पिछले साल,
0: हाँ पिछले साल नवंबर में किए थे, उसके बाद में नवंबर में बुआई करके हमने उसमें मटर और धनिया और नीचे अरुई मेड़ पर हम पूरा टोटल लगवाए थे
1: जी।
0: एक एकड़ लगवा करके हमारी भी धनिया जाम आई, एक एकड़ में पूरी धनिया जाम आई, मटर भी जाम आई, जैसे एक एक बीटा का हुआ मैंने कटवा दिया धनिया पूरा एकदम खत्म करवा दिया
1: और सीधे बाजार बेच दिए
0: सीधा मंडी।
1: और अरवी की खुदाई कब से चालू किया आपने?
0: अरवी हमार ये मान के चलिए कि ये 3 महीना में ये मटर वटर रेडी हो गया।
1: हाँ।
0: नवंबर दिसंबर जनवरी,
1: हाँ
0: जनवरी में फरवरी तक हमारी अरवी जामनेशन आई और मटर हमारी टूट के खत्म हो गई
1: जी।
0: तब उसमें फरवरी में जाम नेशन आई तो उसको फिर सगरो खत्म करके पूरा खेत की सफाई करवा दिए।
1: हाँ।
0: खर खुदुर जो था उसको सफाई करवा करके फिर मिट्टी चढ़वा दिए, मिट्टी चढ़वा के उधर घुया सगरो जाम आई, फिर इसको 6 महीना 4 महीना के इंतजार किए मैंने।
1: और खुदाई कब से चालू किए?
0: खुदाई जून उन से हमने खुदवा दिए थे सर जी।
1: और उस समय बाजार भाव अच्छा मिला होगा?
0: जून में हाँ थोड़ा कम पैदावारी थी, जैसे मान के चलिए पैदावारी हमको एक पेड़े में 400 ग्राम 500 ग्राम 300 ग्राम ऐसे ऐसे पैदावारी मिली थी, लेकिन इधर जो मैंने रेट थोड़ा बढ़ा था उधर हमको वो पूरा कर दिया।
1: तो सब्जी उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी करते हैं हरिश्चंद्र भैया?
0: बारीकी तो अब जैसे ये खेत में हम दो दो तीन तीन फसल लेना चाहते हैं ले लेते हैं कभी कभी। प्याज हम इधर लगा दिए हैं, 1 किलो दाना प्याज भी लगवा दिए हैं मौके पर।
1: खरीफ प्याज?
0: हाँ खरीफ प्याज नर्सरी डाले थे, नर्सरी डाल करके उसके बाद लगवा दिए मेड़ पर
1: हमारे। फसल कैसी चल रही है आपकी?
0: फसल बढ़िया है।
1: जैसा आपने कहा कि 2 एकड़ आपकी खेती की जमीन है और उसमें पूरे साल आप रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक साथ एक ही खेत में कई सब्जियां पैदा कर रहे हैं, तो पूरे साल में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: उत्पादन तो मान के चलिए डॉक्टर साहब कभी कभी तो मान के चलिए 2 लाख 3 लाख पहुंच जाता है, और कभी कभी तो जैसे प्राकृतिक का दिन रहा था तो उसी में जो पैसा लगा रहता है पैसा हम सब लोग 2 लाख 2.5 लाख तक लगा देते हैं खेत में
1: जी। और आमदनी कितनी होती है आपकी?
0: आमदनी मान के चलिए कि पूरे साल में 2 लाख 3 लाख।
1: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: जी हाँ खुशहाल यही है कि जेब में पैसा हमेशा रहता है, खेती कर रहा हूँ, अनेकों प्रकार की सब्जियाँ भी खा रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास हर एक चीज है, हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल रहा है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: सलाह तो हम पर डे 4-6 आदमी हमारे यहाँ तो वैसे निजी है कि हाइड्रोपोनिक देखने आते हैं
1: जी।
0: हाइड्रोपोनिक देखते हैं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम काफी सलाह किसान को, कम से कम हमारे पास 70-80 किसान ऐसे हैं कि जुड़े हुए हैं, वो मौके पर हमसे बातचीत चलती है।
1: लेकिन रेडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और किसान भाई बहन जो कार्यक्रम सुन रहे हैं?
0: हाथ जोड़ के हमारा ये कहना है कि हम हमेशा बहुत से किसान को बहुत आगे बढ़ा दिए हैं, बहुत से किसान थोड़ा डर खा रहे हैं, पैसा नहीं है, बहुत चीज की मजबूरियां हैं उनके पास, खेत नहीं है, बहुत चीज की दिक्कत है उनको, तो वो नहीं कर पा रहे हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे हाँ। बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर 94-52-52-46-70 94-52-52-46-70।
1: हरिश्चंद्र चौरसिया भैया आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि 2 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है जिसमें पूरे साल आप सब्जी उत्पादन करते हैं, एक साथ एक ही खेत में 2-3-4 सब्जियां पैदा करते हैं और हाइड्रोपोनिक तकनीक से भी बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज

0: से सेहतमंद होगी।
1: अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रीता भाईनी चलत चलत अब पंचन का बता दिन जाए पता, जीते हुए हमसे कह सकते हैं बातचीत।
5: तो भैया पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
4: अपन जो हमारे ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
5: भैया आज अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो अपने पंचन से लीन जाए आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति, बच्चों से की विकसित भारत 2047 का भागीदार बनने की अपील। मुख्यमंत्री ने 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो की तैयारियों को परखा। सेक्टरवार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज पूरे किए 12 वर्ष। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी पहली कड़ी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में युवा सम्मेलन को किया संबोधित, कहा सरकार की योजनाएं युवाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्व

0: दशम, नौ दस तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की और 11 विद्यार्थियों को अपने हाथ से छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर श्री योगी ने आश्वस्त किया कि छात्रों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर पात्र बच्चे तक छात्रवृत्ति पहुंचाएंगे। श्री योगी ने कहा कि गत वर्ष 69 लाख बच्चों को 6,200 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 9 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सही दिशा में आगे बढ़ा है, युवा यूनानिहाल यूपी के सारथी हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप जब 36-37 साल के होंगे तब 2047 तक आपको खुशहाल व समृद्ध भारत मिलेगा, इसके लिए आपको भी योगदान देना होगा।
1: आप इस यूपी के सारथी हैं, यूपी का भविष्य कैसे होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 यानी 15 से 18 वर्ष के जो छात्र आज हैं, अगले 21 वर्ष में आपकी आयु क्या होगी, 36 से लेके 38-39 के बीच जब आपकी उम्र होगी, तब भारत 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के बढ़ रहा होगा, उसको पूरा कर रहा होगा, और उसके के लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए, आपको भी लग करके काम करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वाराणसी के नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित भव्य एयर शो की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति संभावित है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एयर शो की तैयारियों और संपूर्ण कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ प्रत्येक सेक्टर के लिए मजिस्ट्रेट की सुनियोजित तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देशभर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया है। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश भर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ 6 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच के बाद ही प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को प्रवेश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए डॉ शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
3: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद

0: केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वाराणसी के अमित कुमार ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार सीधे जनता के खातों में पैसा हस्तांतरित कर योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी और केंद्र के ही पैरामीटर पर राज्य सरकारों ने भी, डीबीटी के जरिए ही अब ज्यादातर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत अब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो लाभ है वो पहुँचाते हैं।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
3: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि युवाओं को सरकार स्वरोजगार योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर बना रही है और रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री प्रसाद आज पीलीभीत जिले के पूरनपुर में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूरनपुर के अलावा कई अन्य गांवों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश ने अभियान के विभिन्न प्रमुख घटकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा ने अभियान की सफलता पर प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुई बिजली और सड़क व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने बारिश से क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों और तारों को जल्द दुरुस्त कराने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जलभराव और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराने को कहा है, ताकि लोगों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न हो। श्री योगी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और व्यवस्थाओं की बहाली के कार्यों में किसी तरह की देरी न होने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संबंधित अधिकारी प्राथमिकता तय करें और प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: वाराणसी सहित कई जिलों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज महिलाओं ने अपने संतानों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से निर्जला जीवित पुत्र का जीवितिया व्रत रखा है। व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने भोर में सरगही ग्रहण करने के बाद निर्जला उपवास शुरू किया। कल सुबह उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। बच्चों से की विकसित भारत 2047 का भागीदार बनने की अपील। मुख्यमंत्री ने 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो की तैयारियों को परखा। सेक्टरवार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज पूरे किए 12 वर्ष। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी पहली कड़ी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार की योजनाएं युवाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व।
6: भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक मूल्य की महत्ता विषय पर परिचर्चा में भारत की जो ज्ञान की वैदिक परंपरा रही है उसमें हमारे यहाँ बचपन से लेकर के अंतिम समय तक के जीवन के आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रम बताए गए हैं। और इन आश्रमों में अलग अलग आश्रमों के आयु और उम्र के अनुसार जीवन के जो मूल्य है वो निर्धारित किए गए हैं। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम

उसमें प्रथमेन कहा गया, प्रथमेन अर्जिते विद्या, द्वितीय न अर्जिते धनम, तृतीय न अर्जिते धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यसि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के जो आश्रम है वो हमारे जीवन मूल्य तय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अगर हम जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। वो ज्ञान लौकिक है, अलौकिक है, शास्त्र का है, शास्त्र का है, और अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव है। शिक्षा की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पात्रता के लिए विनम्रता का होना जरूरी है। हमारे यहाँ सूक्त वाक्यों में है, विद्या ददात विनयम, विनयात याच पात्रता। तो विनय जो होती, विनम्रता जो होती है, वो ज्ञान के उद्भव का प्रमुख कारण है। और ये विनम्रता आती कैसे है? विनम्रता हमारी आती है अपने से बड़ों के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति आदर का भाव विकसित करने पर। और ये आदर का जो भाव है उसको विकसित करने के लिए सूक्ति का वाक्य है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो सेविनः तस्य चत्वारि वन्दन्ते आयुर्विद्य सुबलम्। तो जो हमारे मन में एक श्रेष्ठ विचार आते हैं अपने गुरुओं के प्रति, अपनी माता के प्रति, पिता के प्रति, तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। तो ये जो भाव है ये नैतिकता का, जीवन मूल्य का उद्भव करते हैं। और ये हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में, इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा में, भारत की ज्ञान परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में शिष्यों को गुरुओं के आश्रम में रखा जाता था। और जहाँ पर हमारी ज्ञान परंपरा में ये बात आती है कि अगर अर्जुन का परिचय उदाहरण के तौर पर है, तो परिचय इस तरीके से होता था, द्रोण शिष्य अर्जुन, पिता का नाम बाद में आता था, गुरु का नाम पहले आता था। अर्थात ज्ञान की महत्ता, नैतिक मूल्यों की महत्ता ये तय करती थी कि ये छात्र किस आश्रम का है। संदीपनी मुनि के आश्रम के, चाहे भगवान कृष्ण रहे लीलाधारी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के शिष्य राम जी रहे हों, श्री राम भगवान जी, या अर्जुन जी रहे द्रोण के शिष्य, ऐसे जितने भी हमारे प्राचीन काल के योद्धा या उत्कृष्ट शिष्य रहे, उनकी परंपरा में ब्रह्मचर्य आश्रम को सब लोगों ने जिया। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो अतिथियों के प्रति सत्कार का भाव, देव ऋण, पितृ ऋण, यज्ञ ऋण, इन सब का सद्भाव करते हुए आगे जीवन की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जीवन का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट मूल्य है वो है संतोष। जीवन के जितने भी प्रतिमान है, जितने भी मूल्य हैं, उनमें अगर हम लौकिक जीवन में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है संतुष्टि का भाव। संतोषम परमम धर्म हमारे यहाँ कहा गया है। अगर आपके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं है तो बहुत सी संपदा हो, वैभव हो, समृद्धि हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है आपके जीवन के लिए, आपकी ज्ञान परंपरा के लिए। जब हम दूसरे में जाते हैं गृहस्थ जीवन में, फिर तीसरे में हम वानप्रस्थ जीवन में जाते हैं, चतुर्थ जो आश्रम हमारा है वो संन्यास का है, अर्थात हम अपने व्यक्तिगत कार्य ना करके, गृहस्थ के कार्य ना करके, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कार्य हैं उनमें हम अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। हमारे जो ज्ञान परंपरा है उसमें जो नैतिक मूल्य हैं, निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। सूक्ति वाक्य हमारा चरैवेति चरैवेति, अर्थात प्रतिक्षण जीवन में आगे बढ़ना है, कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने कहा, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फले स्वदाचन, मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात बिना कर्म के हमें आगे नहीं बढ़ना है, बिना कर्म करते हुए जीवन को व्यतीत नहीं करना है, कर्म को करते हुए जीवन के पथ पर अग्रसर होना है। और जीवेत वर्षा सर्दम सतम, माने हमें अपने जीवन में 100 साल की जीवन यात्रा, 100 साल का कालखंड कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, उद्यम करना है, परिश्रम करना है। योग क्षेम वहां में हम, हमारे यहाँ योग करता जो, योग क्षेम क्या तात्पर्य है, योग का कार्य हमें मनसा वाचा कर्मणा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, और क्षेम तात्पर्य है जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है, जो चीजें हमने उपलब्धि हासिल कर लिया है उसका संरक्षण करना, उसको बचाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, योग क्षेम। यहाँ तक कि हमारे भारतीय जीवन बीमा का वाक्य है, योग क्षेम वहाम्य हम। हम कर्म करते हुए आगे बढ़े, एक श्लोक है नीति शास्त्र का, उद्यमे नहि सिंह मुपैत लक्ष्मी। हम जब उद्यम करते हैं, कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमारे श्री की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। किसी भी, एक उदाहरण है, किसी भी सोते हुए शेर के या सिंह के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता, उसको भी शिकार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन जीने की जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें हमारे यहाँ 6 शत्रु बताए गए हैं। वो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य और ईर्ष्या। इसे हम संस्कृत में षड् अरि कहते हैं, खड् अरि कहा जाता है, कि अर्थात ये जो 6 शत्रु हैं, यदि हम इनसे दूर रहेंगे तो नकारात्मक प्रभाव से जीवन हमेशा दूर रहेगा और सकारात्मक कार्यों के प्रति हम उन्मुख हो जाएंगे। तो काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। विभीषण जी ने रामचरितमानस में रावण से यही शिक्षा उनको दी।

या काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिरे राम ही भजो जे संत। माने सबका परित्याग करके हमें ईश्वर का अपने परमात्मा के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सुख धर्मी है, मानव जीवन सर्व कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, क्योंकि हम लोग उस अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, आत्मा हैं, जो निरंतर पूरे समाज के विश्व के कल्याण की बात करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माने हमें जीवन का, हमारे जो आत्मा का जो स्वरूप है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है कि प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना है, प्रसन्न होकर। भगवान शंकर के बारे में कहते हैं प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। तो हम लोग अपने देवताओं का, अपने गुरुओं का अनुकरण करते हैं, उसी के आधार पर जीवन शैली का निर्माण करते हैं, सुनिश्चय करते हैं। तो हमें प्रसन्न भाव से कार्य करना है, और जब प्रसन्न रहेंगे तो हमारे कार्य की सफलता में कोई संदेह नहीं होता है, और कम समय में कम कालखंड में हम अधिक सफलता हासिल करते हैं जीवन के लक्ष्य पर। और देश की जो ज्ञान परंपरा है उसमें ये भी है कि हम समाज के कल्याण की बात करें, सर्व सुख की बात करें। केवल अपने व्यक्तिगत सुख से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना समाज के, बिना राष्ट्र के, बिना देश के हम अपने सुख की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का भाव हमें रखना चाहिए, और अब मन में एक ऐसा विकास करना चाहिए कि सबका हित हो, समाज का हित हो, देश का हित हो, राष्ट्र का हित हो। इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जिस देश में, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए हमें अपना समर्पण, अपने समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने उस जन्मभूमि के प्रति। हमें कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिव गरीसी। तो जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी के ऋण को अदा करना है, कर्ज को चुकाना है, और पूरे विश्व में विश्व मंगल के भाव से, विश्व मंगल की कामना से, सर्व समाज के मंगल कामना के भाव से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अर्थात जहाँ पर वो मूल्य हमें जीवन का तय करना है, जहाँ पर सबके कल्याण की बात की जाए, पूरे विश्व की कल्याण की बात की जाए, और उससे मानवता हमारी सारगर्भित होती है, मानवता हमारी गौरव महसूस करती है जब हम सबके प्रसन्नता की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो जीवन का क्रम है, भारतीय जो मूल्य हमारे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, जब हम नैतिक शिक्षा की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो एक मल्टी डायमेंशनल सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। जीवन के एक पक्ष की बात ना की जाए, सुबह से शाम तक जितने भी हमारे आयाम है जीवन के, चाहे उपासना पद्धति हो, चाहे ज्ञान का अर्जन हो, या कोई शारीरिक क्रम हो, योग का कार्य हो, हर कार्य को हम लोग तन्मयता से, जो हमारे मूल्य है उसके अनुसार सुनिश्चित करना है, आगे बढ़ना है। और जब हम इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले, जैसे हमने भी पूर्व में बताया कि किसके द्वारा, किसके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव है, और जब आप ज्ञान की प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा को होना आवश्यक है। इंटरेस्ट इज मदर ऑफ अटेंशन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता है, ज्ञान का संवर्धन नहीं हो सकता है। ज्ञान संवर्धन का आधार भी श्रद्धा है, हमारी रुचि है। जब हम श्रद्धा से कार्य करते हैं, श्रद्धा से ज्ञान को सीखते हैं, चाहे वो शारीरिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, नैतिक ज्ञान हो, या कोई वैज्ञानिक ज्ञान हो, आज चाहे आयुर्वेद की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो हमारा भारत देश विश्व को शिक्षा प्रदान किया है, चाहे गणित का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चरक जी हो। तो ये जो ये कहाँ से आई, ये हमें अपने गुरुओं प्रति श्रद्धा के भाव से उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकंड में मंगलाचरण में लिखा है कि बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। गुरु की महिमा, गुरु का जो आचरण है, गुरुओं की जो जीवन शैली है, उनका अनुकरण करके, उनका अनुसरण करके हम निरंतर आगे बढ़ते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हुए, और उनके ज्ञान की जो परंपरा है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, सदाचार, दया, धर्म, परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात हमें परोपकारी भी होना है। केवल अगर आप स्वार्थी होंगे तो स्वार्थमयता से संकीर्णता का उदय होता है, और संकीर्णता से नकारात्मकता जन्म लेती है, और नकारात्मकता विचार से अवसाद उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आज समाज में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसका उन्मूलन केवल इस तरीके से कर सकते हैं कि हम तनाव मुक्त जीवन जिए। ये भारतीय जीवन शैली है, कैसे हम अपने जीवन का प्रबंधन करें, तनाव से दूर रहें, प्रसन्न रहें, उसके लिए है समाज की सहभागिता प्राप्त करना और समाज के दुख में सहभागी होना। और जब आप मानवीय दृष्टिकोण को अपनाएंगे, दया, ममता, करुणा, परोपकार, अभिवादन, ज्ञान, इनका जब आप आत्मसात करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से परिपूर्ण होगा, और विश्व मंगल का भाव आपके व्यक्तित्व में उदय होगा। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बड़ी उपाधियता है कि हम जीवन में कुछ भी ना रखते हुए भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं,

0: जब हम लोग मंगल भाव से कार्य
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ब्रह्मानंद की लिखी ये भक्ति रचना।

पंकज श्रीवास्तव के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। नमस्कार श्रोताओं, सुधांशु पांडे का आपको प्यार भरा नमस्कार। शाम ढलते ही जब हवाओं में एक नमी सी घुल जाती है तो दिल चाहता है कि कुछ पुराने किस्से कहें, कुछ मीठे गीत सुने। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा गानों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें यादें हैं, इंतजार भी है और अनकहा सा रिश्ता भी है। आइए इस संगीत के सफर की शुरुआत करते हैं इसी सुरीले अंदाज में।

वाह, धड़कनों को थाम देने वाला संगीत। और जब बात किसी अनजाने से जुड़ाव की हो, किसी पुराने राफ्ता की, तो अरिजीत सिंह की ये आवाज़ सीधे रूह में उतर आती है। फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। आइए थोड़ा सुनते हैं और महसूस करते हैं इस गीत को।

मित्रों, इस सुहानी शाम में अगर कोई खास सामने बैठा हो तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। दिल बस यही कहता है, अभी न जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में कि जिनसे मिलिए तो तन्हाई ख़त्म होती है। और अक्सर हमारे जीवन में अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो कुछ लोगों का स्थान वाकई बहुत ऊंचा होता है। जिनसे मिलिए तो लगता है कि दुनिया की जितनी झंझटें हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो कहीं खो सी गई हैं। जब तक हम उनके साथ रहते हैं लगता है कि हमारा जीवन बहुत गुलजार है। कभी कभी हम बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या जीवन जितना जटिल हमें दिख रहा है इतना ही जटिल है। कभी कभी हमारा सोचना सही होता है, कभी कभी हमारा सोचना गलत होता है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी जीवन में दुख आता है, कभी जीवन में सुख आता है, पर हमें किसी भी एक पहलू को पकड़ के इतना नहीं आराम से बैठना चाहिए कि अगर

परिवर्तन हो तो हमें वो चीज़ परेशानी दे, हमें हम उस परिवर्तन को स्वीकार न कर सकें। तो हमें हमेशा तटस्थ होकर रहना चाहिए, हर मामले में नहीं पर बहुत सारे मामलों में तटस्थता की बहुत ज़रूरत होती है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम कितनी जल्दी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई दोस्त है, कोई मित्र है, तो आप उसके साथ अगर हैं तो समय बिताइए, उसके साथ होते हुए भी फ़ोन पे मत लग जाइए, क्योंकि ये आज के समय में बहुत बुरी आदत हो गई है कि हम कहीं होते हुए भी नहीं होते हैं। कारण उसका क्या है कि हम फ़ोन में लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं उस दौरान जो छूट सी जाती हैं। मित्रों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की सदाबहार आवाज़ में साहिर के अल्फाज, आइए हम आपको डुबोते हैं एक ऐसे नगमे में जिस नगमे का जो कायनात है वो बहुत ही हसीन है।

दोस्तों, और भी सुरीले कारवां को हम एक मुकम्मल मोड़ पर लाने का ये जो वक्त है आ चला है। लेकिन उससे पहले एक जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आपको अपने किसी बहुत चहेते इंसान की याद आ जाए। वो कहते हैं ना कि दीपक में अगर नूर न होता, तन्हा दिल यूं मजबूर न होता, हम खुद आपको मुबारक कहने आते, अगर आपका यूं यहाँ आना मंजूर न होता। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ इंसान हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनके बिना लगता है कि हमारा जीवन खाली खाली सा है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके लिए लगता है कि ठीक है। तो आपको इस ज़माने में जहाँ लोग व्यस्त बहुत हैं, जहाँ लोग अपने काम को लेके सजग बहुत हैं, अपने काम को लेके परेशान भी बहुत हैं, ऐसे ज़माने में एक सच्चे साथी, एक सच्चे हमसफ़र को खोजना भी एक बहुत बड़ा काम है। और इसलिए भी ये बहुत बड़ा काम है कि आप उस व्यक्ति को लेके, उस एक अच्छे इंसान को लेके जो आपके जीवन में आपको लगता है कि वो आएगा तो कुछ बहुत अच्छा करेगा, उसके लिए कम से कम आप ये गीत गुनगुना तो सकें कि तेरे बिना जिंदगी से कोई सिखवा नहीं। यकीनन, और अगर हमें कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, अगर हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं, तो पूरी की पूरी कायनात हमें उस चीज़ से मिलवाने में लग जाती है। जब दिल में कोई अनकहा सा गीत गूंज रहा हो तो रास्ते खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगते हैं। और दोस्तों, ये जो जीवन है ना, इस जीवन के बहुत सारे रंग हैं, इस जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, हमें उन सारे रंगों को समझना चाहिए, उन सारे रंगों को जीना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, और अक्सर जब हम किसी बाग बगीचे में जाते हैं और खिले हुए फूलों को देखते हैं, तो हम एक ही फूल को देखने के लिए बहुत तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि बाग में जितने भी फूल हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं, जितने भी रंग के फूल हैं, हम उन सब को देख डालें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जीवन की इस विविधता में भी एकता बनी रहे, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, जिन चीज़ों से हमें परेशानी है, उनको हमें इग्नोर करने आना चाहिए। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पे ध्यान जाते हुए भी हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर लोड नहीं लेते हैं, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, इस चीज़ पर गौर करते हैं कि ऐसा आने वाला जो हमारा क्षण है, जो आने वाला हमारा टाइम है, जो समय है, उसको हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं। और उसको अच्छा बनाने में, कहते हैं ना कि जीवन जो है कभी बहुत लंबा है, कभी बहुत छोटा है, पर जीवन जो बहुत लंबा है, उस बहुत लंबे सफ़र में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिसके सहारे आप रास्ते पर बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से, बिना किसी भार के आगे चल सकें।

और अब इस सुरेले कारवां को एक मुकम्मल मोड़ पर लाने का वक्त हो चला है। दोस्तों, समय बहुत सीमित होता है और कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, पर जब दिल में भी कोई अनकहा सा गीत गूंज रहा हो तो रास्ते खुद ब खुद खूबसूरत नजर आने लगते हैं। फिल्म जिस फिल्म का हम आपको गाना सुनवा रहे हैं, ये गीत एक तारा आपकी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी है। आइए पहले इस गीत को महसूस करते हैं।

तो दोस्तों, गीतों और यादों का सफ़र यहीं तक, पर इसकी महक आपके जहन में यूं ही बनी रहेगी। दिन भर भाग दौड़ से थोड़ा वक्त निकाल कर खुद से मिलने का और अपने अपनों के करीब आने का नाम ही तो ज़िंदगी है। शाम की यह चादर धीरे धीरे गहरी हो रही है और हम विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर किसी नई शाम कुछ और मीठे नगमे लेकर आपकी खिड़की पर दस्तक देंगे। तब तक के लिए हवाओं में संगीत बनाए रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

और इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। लीजिए सबसे पहले सुनिए आमिर मिनाई की लिखी गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

और इसी कव्वाली के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत

0: ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब

0: सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
1: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
1: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
3: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
1: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें। ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मामले में 2026 में 83.4% से कम होकर 2031 में 77.7% रहने का इम्कान है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मवेशी परवरी के शोबे के लिए एक मुकम्मल इको निज़ाम तैयार कर रही है। इसके तहत गोबर से बायोगैस और नामियाती खाद तैयार करने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उन्हें मंडी तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की जा रही है, ताकि देही मईशत को नई रफ्तार फराहम की जा सके। भोपाल में रियासती सतह के गौपालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। मुल्क में फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में इसलाहात का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के मुकम्मल नफाज के बाद भारत का फौजदारी इंसाफ का निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BNS के मुकम्मल निफास के बाद FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात का फैसला 3 साल के अंदर किया जा सकेगा।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की नई इमारत और सेंट्रल विस्टा के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: सेंट्रल विस्टा जदीद तरक्याती प्रोजेक्ट नई दिल्ली में मरकजी इंतजामिया और शहरी इलाके को नए सिरे से तैयार करने का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे का मकसद सरकारी कामकाज को ज़्यादा मौसर और आसान बनाना है। इसके लिए सरकारी दफातर को जदीद, बेहतर और ज़रूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तमाम 51 वजारतों, 10 कामन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में यकजा किया जाएगा। इससे अफसरान और मुलाजमीन सरकारी दस्तावेजात और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकेंगे। नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। नई पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए गए सामान और मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नज़रिए की अक्कासी करता है। इस इमारत में अब सेंगुअल है, जिसे इक्तदार की मुंतकली की अलामत समझा जाता है। इस इमारत के 6 दाखिली दरवाजे हैं, जिनके नाम कदीम रिवायती मखलूक़ात के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें गच, अशु, ग्रोन, मकर, शार्दुल और हंस शामिल हैं। नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों की उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी करती है।
3: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
2: माहौलियात के लिए साजगार होना इस मरकजी मंसूबे का अहम जुज है। इस मंसूबे के आसपास के पूरे माहौल को सरसब्ज व शादाब रखने में काफ़ी मुआवनत हासिल होगी। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी के सत्यवेदु मंडल में एक बॉयलर के फटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 को शदीद जख्मी हालत में करीब के अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिनमें से 2 दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दीगर मजदूरों को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर इंतहाई गम का इजहार किया है। उन्होंने सीनियर हुकाम को मुतासर अफराद के अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। गवर्नर SS अब्दुल नज़ीर ने महलूकिन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी

भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक़िदा होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने T20 फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम के जुमरे में शुमाली कोरिया के आलमी चैंपियन चुंग सॉन्ग हान को फाइनल में 11-7 से शिकस्त दी। खवातीन के इनफरादी तीरंदाजी मुकाबले में कुमकुम महोद ने सोने का तमगा जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने खवातीन के इनफरादी खिताब में एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंगल ने खवातीन के 53 किलो

ग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन कुआंग बतार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलाक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अलाक़वामी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 31 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी में एक निजी सनअती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञेय और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध कर

0: करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती, इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहाँ पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहाँ बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
1: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके

0: भी साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
1: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
2: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत हमें गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
3: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
2: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़ कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखला कर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
3: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
2: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
3: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर।

0: बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: इस्मत फहश निगार है। हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा, कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है, कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
0: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
1: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
0: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
1: तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं,
0: अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे,
1: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
2: अभी आपने सुनी इस्मत चगताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहाँ चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में जहाँ चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हमसफर में।
3: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही, मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
4: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त कर

0: जुड़ने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
1: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि, उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम भक्तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है, कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहू पास, नित प्रति पुण्य रहे आनन हो पुजास, मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है, क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देखे। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है। ये केशव ने रामचंद्र काम में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
0: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाथ पुरोहित को।
3: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। अज्ञे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है, अंजुली भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने, लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
1: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
0: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
1: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं हूँ प्रांजल।
4: चांद कविताओं का हमसफर।

अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफीक खान का वायलिन वादन। देवास घराने की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा और उस्ताद रजब अली खान की शिष्य परंपरा से जुड़े श्री रफीक खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को गहराई और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल वायलिन वादक के रूप में वे अपनी उत्कृष्ट बोइंग तकनीक, स्वर की शुद्धता और राग विधान की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके संगीत में तकनीकी सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रत्येक प्रस्तुति आत्मीय और प्रभावशाली बन जाती है। श्री रफीक खान एकलवादन और संगत में भी समान रूप से दक्ष है। लहरा और लयकारी पर उनकी विशेष पकड़ है। वे सपाट तान, छूटकी तान और गमक जैसी तानों को अत्यंत कुशलता और सहजता से अपनी प्रस्तुतियों में पिरोते हैं। वर्ष 1994 से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टाफ आर्टिस्ट रहे श्री रफीक खान अगस्त 2026 में ए ग्रेड वायलिन वादक के रूप में आकाशवाणी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए। देश के अनेक प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके रफीक खान अपनी भावपूर्ण और नवोन्मेषी वायलिन प्रस्तुतियों के माध्यम से देवास घराने की संगीत परंपरा को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की इस प्रस्तुति में श्री रफीक खान के साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत जोशी। श्री रफीक खान अपने वादन का आरंभ करेंगे राग मारू बिहाग से। इसकी विलंबित रचना विलंबित एक ताल में तथा द्रुत रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय श्री रफीक खान। Hailing from the distinguished Devas Gharana in the lineage of Ustad Rajab Ali Khan, Rafiq Khan carries forward a rich legacy of Hindustani classical music with depth and authenticity. A virtuoso violinist, he is acclaimed for his mastery of bowing technique, tonal purity and deep understanding of raga grammar. His music beautifully balances technical precision with

0: आपने अभी सुना राग मारू बिहाग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard Raag Maru Bihag. Continuing the program, Shri Rafiq Khan will now present Raag Jog. The composition is set to Vilambit Ek Taal, Drut Ek Taal and Drut Teen Taal respectively.

आपने अभी सुना राग जोग। इसी के साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं

0: संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी।
1: इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई।
0: इसके साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
2: You just heard Raag Jog. With that, we conclude the violin recital by Shri Rafiq Khan in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. This program was produced by Akashwani Ahmedabad. With this, we come to the end of the National Program of Music. This broadcast came to you from Delhi Station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों

के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम